मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 28 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिसे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के

0: सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथेन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। पानी के अभाव के कारण कुछ किसान भाई धान की रोपाई न करके सीधे बुआई कर दिए होंगे। वह इस समय दूसरी निकाई अवश्य कर दें ताकि खरपतवारों की मार का प्रभाव पौधों पर कम पड़े। समय से रोपाई किए गए धान में दूसरी निकाई गुड़ाई भी किसान भाई कर दें। यदि खेत में नमी का अभाव हो तो उसमें पानी अवश्य दें। ध्यान रहे कि खेत में ज़्यादा पानी न लगने पाए। लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर पानी खेत में रहना चाहिए। दाने होने तक खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए सिंचाई करते रहने की आवश्यकता है। रोपे गए धान की उम्र 2 माह की होने पर नतजनी उर्वरकों की दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। 12 किलोग्राम नत्रजन यानी लगभग 24 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करना चाहिए। यदि जल भराव वाले क्षेत्र हैं तो यूरिया के साथ 2-3 गुना मिट्टी मिला करके फिर टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। धान की फसल में खैरा रोग का भी प्रकोप हो जाता है। अगर इस तरह की समस्या आती है तो 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 किलोग्राम यूरिया को लगभग 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय मक्का की फसल में नत्रजन की दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। अगर संकर मक्का है तो 12 किलोग्राम नत्रजन प्रति एकड़, कहने का मतलब ये कि लगभग 24 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होती है। यह देसी मक्का है तो 8 किलोग्राम नत्रजन प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि खेत में कभी भी पानी न लगने पाए। दाना पड़ने की अवस्था में सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है, अतः यदि वर्षा का अभाव हो तो सिंचाई अवश्य करें। अब कुछ चर्चा दलहनी फसलों की। अरहर की फसल में यदि निकाई न किए हों तो 1 निकाई कर दें और खरपतवारों को निकाल दें। साथ ही यह भी ध्यान देना है कि दलहनी फसलों के खेतों में पानी न लगने पाए। अतः अगर ज़्यादा बारिश होती है, खेत में ज़्यादा पानी लग जाता है तो उसके निकासी की व्यवस्था अवश्य करें। जो किसान भाई धान की बुआई या रोपाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें चाहिए कि उनका खेत खाली है तो तोरिया की बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी करके अच्छी प्रजाति की तोरिया की बुआई करें। अगर असिंचित क्षेत्र हैं तो 16 किलोग्राम नत्रजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होती है। अगर सिंचित क्षेत्र हैं तो 24 किलोग्राम नत्रजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होती है। असिंचित क्षेत्र में उर्वरक की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय प्रयोग करना चाहिए। और यदि सिंचित क्षेत्र हैं तो 12 किलोग्राम नत्रजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस अंतिम जुताई के समय खेत में प्रयोग करते हैं और बाकी जो यूरिया बचती है उसे फिर खड़ी फसल में बुरकाव किया जाता है। टाइप 9, PT 303, नरेंद्र अगेतीराई, ये सब ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी आप इस माह में खेती कर सकते हैं। 4 किलोग्राम बीज तोरिया का प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। कुछ किसान भाई गेहूँ बोने के लिए पलियर खेत भी रखे होंगे। वह खेत में जैसे ही ओट आ जाए उसकी जुताई अवश्य कर दें। जुताई के 2 फायदे हैं। जहाँ एक ओर खरपतवार नियंत्रित होता है, वहीं दूसरी तरफ खेत में नमी का संरक्षण भी हो जाता है। कुछ खेत ज़्यादा ऊंचे नीचे होते हैं, उन्हें समतल करने का कार्य भी इस समय कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

जीवन के हर क्षण बस राम नाम हमारे भीतर होना चाहिए। राम नाम का जाप, राम में अटूट विश्वास हमारे जीवन को सरल और सहज

कृष्ण जो गोपियों के आराध्य हैं, उनसे वियोग की तड़प गोपियों और उनकी भक्ति को अमर कर देती है।

हे शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, तुम ही सृष्टि का आधार हो। हे संपूर्ण जगत की जननी, भक्तों का जीवन भयमुक्त कर खुशियों का संचार करो।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे हरिहरन, शेखर सेन और नरेंद्र चंचल। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र

0: है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु, विषय है विश्व बंधुत्व।
1: भारतीय मनीषा की अनुभूति है कि अपने से अलग बाहर दिखने वाला यह विश्व वास्तव में अपने अंदर ही है, पर संभवतः बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण अपने से पृथक बाहर दिखाई पड़ता है। यही बहिर्मुखी सहज प्रवृत्ति ही माया है। यह व्यक्ति को अपने आप में स्थिर नहीं रहने देती और आनंद की आकांक्षा में बाहर दौड़ाती है। दर्पण में प्रतिफलित चित्र के समान अपनी अंतरात्मा में ही संपूर्ण विश्व प्रतिफलित होता है, पर माया के कारण बाहर दिखता है। दक्षिणा मूर्ति स्रोत में उल्लेख है कि निद्रा में जो जगत अंदर दिखता है वही जागने पर बाहर दिखता है। अतः जो जगत या विश्व बाहर है वह हमसे पृथक नहीं है। जैसे स्वप्न में दिखने वाला संसार हमारी चेतना से पृथक नहीं है। अनेक भिन्नताओं को समेटे हुए अकल्पनीय दृश्यों को देखकर उससे प्रभावित होते हुए भी जागने पर हम यह समझते हैं कि वास्तव में यह हमारे मानस का ही प्रक्षेपण था। उसी प्रकार यह जगत हमारी ही चेतना का प्रक्षेपण है। दिखने में चाहे कितनी ही विभिन्नताएं हों, अकल्पनीय घटनाएं घटती हों, प्रकृति की गुत्थियां हों, जीवन के गंभीर रहस्य हों, कुछ भी हमसे पृथक नहीं। इस अनुभूति के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति कभी भी विश्व की अनेक विभिन्नताओं से भीतर से प्रभावित नहीं होता। बाहर से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए भी अंदर से अकंपित रहता है। इसी दृष्टि के कारण भारतीय चिंतन विश्व स्तर का हुआ। जो कुछ कहा गया विधान दिया गया। शाश्वत सत्य के परिप्रेक्ष्य में जीवन विधान या व्यवस्था दी गई। धर्म का तात्पर्य इसी शाश्वत सत्य के परिप्रेक्ष्य में रचित विधान का आदर करना और तदनुकूल जीवन निर्माण करना है। इसीलिए भारतीय मनीषा के जीवन विधान को सनातन धर्म कहा जाता है। धर्म की परिभाषा भी हमारी संस्कृति में इसी परिप्रेक्ष्य में दी गई है, जिससे इस जगत में कल्याण हो और उसके बाद भी कल्याण हो वही धर्म है, या स्वभाव ही धर्म है। अपने मौलिक स्वभाव को धारण करना, तदनुकूल कार्य करना या स्वभाव की रक्षा करना यही धर्म है, या मानवीय मूल्यों व सद्गुणों की स्थापना, इसे भी धर्म कहा गया है। बुद्धि में धारण की क्षमता, क्षमा, इंद्रिय लोलुपता का निग्रह, चोरी न करना, मन सहित समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखना, बुद्धि मेधा, विवेक, सत्य और अक्रोध, शांति, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ऋषि ने किसी को बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा या किसी तरह से हीन नहीं समझा, बल्कि अमृत पुत्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि सभी तो उसी अमृत से आते हैं। या तो व्यक्ति स्वयं खोज करे या खोजी व्यक्तियों के निष्कर्षों को मानकर चले, तभी जीवन निर्माण हो सकता है। इस सत्य के आधार पर यदि जीवन जिया जाए जो असंभव सा दिखते हुए भी बुद्धिग्राह्य है, तो संपूर्ण विश्व अपना ही रूप नजर आएगा। अपनापन प्रेम ही वह आधारशिला है जिस पर विश्व बंधुत्व की स्थापना साकार होती है।
0: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, विषय था विश्व बंधुत्व। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: लीजिए सुनिए, जन्मजात हृदय रोग, कारण और बचाव के उपाय विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतिभा राय।
1: हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट तीनों अलग चीज है। सडन डेथ मतलब किसी भी इंसान की सडनली डेथ हो जाए, वो बहुत सारे कॉजेज से हो सकती है। हार्ट अटैक उसमें से एक हो सकता है और अनेक प्रकार के कॉजेज हो सकते हैं। हार्ट अटैक को समझने के लिए ये जरूरी है, जैसे हमारी बॉडी को ब्लड की जरूरत होती है काम करने के लिए, हार्ट को भी जरूरत होती है ब्लड सप्लाई की काम करने के लिए। अगर किसी इंसान की हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएं, तो उससे जो बीमारी होती है और जो उसके सिम्टम होते हैं और डेथ होती है, उसको हार्ट अटैक बोला जाता है। हार्ट अटैक का मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान की डेथ हो जाएगी। हार्ट अटैक एक सिचुएशन है जिसमें आपकी ब्लड फ्लो रुक गई और आपके सिम्टम्स आना चालू हो गए, और अगर वो एक्सट्रीम हुआ तो आपकी सडन डेथ हो सकती है। समय हो सकता है, समय नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपकी कौन सी आर्टरी ब्लॉक है और कितना डिग्री का ब्लॉकेज है। तीसरी, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब वो हार्ट अटैक उसका एक पार्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट में किसी को अरिदमिया इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो किसी को जन्मजात पहले से प्रॉब्लम थी जो उसे पता नहीं तो उसका हार्ट फेल हो गया, और तीसरा हार्ट अटैक, और भी बहुत सारे इसके रीजन हैं। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं, हार्ट अटैक का सिंपल मतलब ये है कि हार्ट को जो फूड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल है उनमें ब्लॉकेज आ जाए, और ये डेथ हो भी सकती है और डेथ नहीं भी हो सकती है। बट कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, और इसके कॉजेज बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है मरीजों को समझने में, उन्हें ये लगता है कि अगर बच्चे के दिल में छेद है और उनको दवा दी जाए तो वो छेद भर जाएगा। अभी तक कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी है जो हार्ट के छेद को बंद कर सके। हार्ट छेद बंद होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर नेचुरली क्लोज हुआ तो हुआ, नहीं तो उसकी ओपन हार्ट सर्जरी लगेगी या तो दूरबीन द्वारा बटन डाली जाएगी। जो मेडिसिन का काम होता है हार्ट के होल पे, उसका सिर्फ एक ही काम है कि होल की वजह से जो बॉडी पे आपके साइड इफेक्ट है, मेडिसिन उस चीज को कम करेगी। मेडिसिन कभी भी होल को नहीं बंद कर सकती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ऐसी बीमारी है जो बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकती है। जब भी हम लोग मरीजों को बोलते हैं कि आपको इलाज करवा लेनी चाहिए और बटन डलवानी चाहिए, तो उनका क्वेश्चन इमीडिएट होता है, अगर मेल है तो वो ये पूछते हैं कि फादर बनने में कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर फीमेल है तो ये पूछते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करना या ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। तो अमूमन ये है कि अगर सही टाइम में आपने बटन डलवा ली तो फ्यूचर में ये मेल हो या फीमेल हो, ये टोटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और शायद बटन डलवाने के एक डेढ़ साल बाद इनकी इकोकार्डियोग्राफी की जाए तो बटन दिखाई भी नहीं पड़ती है, वो एक शरीर का नॉर्मल हिस्सा हो जाता है। तो उनके फैमिली लाइफ में आगे बटन की वजह से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और तीसरी, जब कभी भी मोस्टली आपकी जब वाल्व की सिकुड़न डायग्नोस होती है, उसमें पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चा हमारा नॉर्मल देखने में है, हम इलाज क्यों करवाएं। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की दो मेजर वाल्व होती हैं। अगर इन दोनों की वाल्व सिकुड़न बहुत सीवियर है, तो बहुत बार आपने देखा होगा टीवी में दिखाते हुए कि कोई भी एथलीट खेल रहा है और सडन डेथ हो गई, तो ये वन ऑफ द कॉजेस होते हैं सडन डेथ का। तो अगर आपको कभी भी वाल्व की सिकुड़न डायग्नोस हो आपके बच्चों में और वो सीवियर हो, तो उसका इलाज इमीडिएटली करवाएं, वेट ना करें, क्योंकि अगर वो वाल्व की सिकुड़न सीवियर से बढ़ती गई तो आपका लेफ्ट साइड का चेम्बर सडनली फेल कर जाता है, और उस समय आप कोई भी इलाज करवाएं, इलाज काम नहीं करेगा। देखिए, एक सिंपल है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वो किसी के लिए भी जरूरी है, वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का पेशेंट हो या एक्वायर्ड हार्ट डिजीज का पेशेंट हो। हम जब भी बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल मींस तीन चार चीजें, आपका स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए, स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स की, आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज जरूर करें, हर दिन करने की जरूरत नहीं है बट वीक में एटलीस्ट 4 डेज करने की कोशिश करें, और अगर बच्चा है तो अपने बच्चों को जरूर शाम में बाहर खेलने भेजें। आजकल पेरेंट्स इतने ज्यादा स्टडी ओरिएंटेड है कि बच्चों को खेलने का टाइम नहीं मिलता है, उस बात की ध्यान रखिए कि आप आज बच्चे को पढ़ाई में अच्छा करेंगे बट फ्यूचर में उसको हेल्थ के रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। उससे ज्यादा शुगर इंटेक लिमिटेड होनी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड होनी चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ा मिथ है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि शुगर जो है वो कहीं भी ज्यादा डेंजरस है एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ घी खाने से। तो लोग ये समझते हैं कि घी ज्यादा डेंजरस है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सही मात्रा में या मॉडरेट अमाउंट में घी खा रहे हैं तो वो कहीं ज्यादा बेटर है ज्यादा देन ज्यादा शुगर इंटेक करने से। तो
0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें जन्मजात रोग, जन्मजात हृदय रोग, कारण और बचाव के

उपाय विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर प्रतिभा राय। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 6:30 से आप सुन सकेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर। सुबह 9:50 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे बच्चा लाल यादव और साथी। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। दिन 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। प्रस्तुति होगी अरुण पांडे एवं सना सलीम की। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश का समय होगा दिन 12 बजे। प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुनिएगा दिन 1:35 पर। दिन 2:30 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम, जिसमें गठिया रोग, सावधानियां और सही इलाज विषय पर डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय से बातचीत करेंगी शिखा श्रीवास्तव। नन्हे मुन्ने बच्चे कार्यक्रम बाल गोपाल सुनेंगे शाम 5 बजे, जिसमें सुषमा शर्मा की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे मोबाइल की लत और बच्चों का भविष्य। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, युववाणी क्विज, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र और रोजगार सूचना। सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम मधुरिमा। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर और शाम 6:10 पर। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग बनारस। मैं स्तुति लेकर आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। तो भाई रविवार की इस प्यारी सी सुबह में सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी संडे। उम्मीद है कि आज की सुबह आपके लिए सुकून, मुस्कान और नई ऊर्जा लेकर आई होगी। वैसे तो रविवार का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? देर तक सोना, गरम गरम नाश्ता, घर वालों के साथ समय बिताना या फिर बस पूरे दिन आज तो कुछ नहीं करने वाला मूड। लेकिन आपको पता है बनारस, कभी कभी ये रविवार ना हमें एक छोटी सी सीख भी दे जाता है। हाँ भाई, पूरे हफ्ते हम काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। ऐसे में रविवार सिर्फ आराम का दिन नहीं बल्कि खुद से मिलने का दिन भी हो सकता है। और हाँ, अगर आप फिलहाल घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा, इन दिनों धूप काफी तेज है और गर्मी भी लगातार अपना असर दिखा रही है। सुबह का मौसम भले ही थोड़ा सुहाना लगे लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप काफी तीखी होती जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। खैर, अब बात करते हैं इस रविवार को थोड़ा खास बनाने की। हर रविवार वही रूटीन क्यों भाई, जरा कुछ नया करके देखा जाए। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। किसी नई किताब का पहला अध्याय पढ़ लीजिए। या आज तक आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी तो इस दिन शुरुआत कर लीजिए। कोई नई रेसिपी ट्राई कर लीजिए। मम्मी पापा या दादा दादी के साथ बिना मोबाइल यूज किए आधा या एक घंटा बैठकर बातें कर लीजिए। घर में बच्चे हैं तो उनके साथ आउटडोर एक्टिविटीज या पार्क में खेल सकते हैं। और फिर भाई, हम बनारसियों की तो सुबह ही फेमस है। ये सब कुछ नहीं तो गंगा किनारे बैठकर सुकून के कुछ पल बिता लीजिए। गंगा की ठंडी हवा और घाटों की शांति मन को एक अलग ही सुकून देती है। यकीन मानिए बनारस, जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते। कई बार छोटी छोटी नई आदतें ही सबसे बड़ा फर्क लेकर आती हैं। एक और काम की बात, रविवार को अक्सर हम सोचते हैं कि आज तो चीट डे है और फिर नाश्ते से लेकर रात तक जो मिला वो सब खा लिया। थोड़ा स्वाद जरूरी है लेकिन भाई संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। फल, सलाद, मौसमी सब्जियां और पर्याप्त पानी, ये छोटी सी बातें पूरे हफ्ते आपकी ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। और अगर पूरे हफ्ते व्यायाम का समय नहीं मिल पाया है तो भाई टुडे इज द डे। आज सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक या भाई हल्की सी स्ट्रेचिंग ही कर लीजिए। शरीर भी आपको सैल्यूट मार के थैंक यू बोलेगा और मन भी हल्का महसूस करेगा। खैर, इसी तरह करेंगे और भी बहुत सारी बातें। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी

वेलकम बैक बनारस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में मेरी यानी स्तुति के साथ। तो बनारस, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी मंडल शैलेंद्र कुमार ने शनिवार को विकास खंड आराजी लाइन क्षेत्र का दौरा कर किसानों को हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ढैंचा की फसल न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है बल्कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर खेती की लागत घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दौरे के दौरान संयुक्त कृषि निदेशक ने राजकीय बीज गोदाम जनसा और बहुउद्देशीय सहकारी समिति हाथी का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को निर्धारित दरों पर समय से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि खरीफ सीजन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके बाद उन्होंने विश्व बैंक के सहयोग से संचालित यूपी एग्रीज परियोजना के तहत चयनित ग्राम हरसोस में किसानों को निशुल्क वितरित ढैंचा के प्रदर्शन प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को बताया कि ढैंचा की जड़ों में बनने वाली गांठों में लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसे प्राकृतिक रूप से मिट्टी में संचित करते हैं। इससे भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और फसल को आवश्यक पोषण तत्व आसानी से उपलब्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि ढैंचा की हरी खाद मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है और मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है और किसानों को कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन भी प्राप्त होता है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। संयुक्त कृषि निदेशक ने किसानों से अपील की कि जिन खेतों में ढैंचा की फसल 40 से 45 दिन की हो चुकी है वो समय रहते उसकी पलटाई कर धान की रोपाई करें ताकि हरी खाद का अधिकतम लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान किसान मनोज कुमार, राजकुमार, सुरेश कुमार सहित अन्य कृषक उपस्थित रहे। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को आयोजित जनता दर्शन में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जनता दर्शन के दौरान प्राप्त शिकायतों पर जिलाधिकारी ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए। विशेष रूप से भूमि विवाद से जुड़े मामलों में उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जन की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान के लिए स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और केवल अधीनस्थ कर्मचारी

कर्मचारियों के भरोसे कार्य ना छोड़ें, प्रत्येक मामले का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर आमजन की शिकायतें सुने और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपेक्षा भी जताई। आगे आपको बता दें, बनारस की जिले में निरक्षर वयस्कों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से व्यापक साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत वर्ष 2026 में 10,000 निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग गांव और शहरी क्षेत्रों में विशेष सर्वे कर ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो अब तक पढ़ना लिखना और सामान्य गणना करने में सक्षम नहीं है। अभियान का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को दैनिक जीवन में उपयोगी शैक्षणिक दक्षता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। शिक्षा विभाग के अनुसार अब तक लगभग 6,600 निरक्षर वयस्कों का नामांकन किया जा चुका है। शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभागीय टीमें लगातार सर्वेक्षण में जुटी हुई हैं। सर्वे पूरा होने के बाद नए लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें नियमित रूप से शिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, ताकि वे सितंबर में आयोजित होने वाले साक्षरता परीक्षा में भाग ले सकें। अभियान के अंतर्गत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जो पढ़ने लिखने और सामान्य अंक गणित करने में सक्षम नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान भाषा, लेखन, गणित और दैनिक जीवन से जुड़े व्यवहारिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं, डिजिटल भुगतान और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जाएगा, ताकि वो बदलते समय के साथ आत्मविश्वास से जुड़ सकें। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी शिक्षकों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया है। पंजीकृत लाभार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण देंगे और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। प्रशासन का मानना है कि समाज की भागीदारी से अभियान अधिक प्रभावी और सफल बनाया जा सकता है। अभियान के तहत प्रशिक्षित सभी लाभार्थियों को सितंबर माह में साक्षरता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नव साक्षर घोषित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें आगे की शिक्षा, कौशल विकास और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सर्वे का कार्य तेजी से प्रगति पर है। उन्होंने ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले निरक्षर लोगों की जानकारी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस अभियान से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि साक्षरता केवल शिक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव भी है। इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बनारस उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद और GI टैग पहल का सकारात्मक प्रभाव बनारस की पारंपरिक मिठाई लौंगलता के कारोबार पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया है। जी हां, GI टैग मिलने के बाद इस पारंपरिक मिठाई को नई पहचान मिली है, जिससे इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी इजाफा हुआ है। लौंगलता व्यवसाय से जुड़े अमोद कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की पहल से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि ODOP योजना के तहत प्रत्येक जिले की पारंपरिक और विशिष्ट पहचान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें वाराणसी की प्रसिद्ध लौंगलता भी शामिल है। इससे छोटे व्यापारियों को और कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन समय समय पर प्रशिक्षण शिविर और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग में निरंतर सुधार हो रहा है। एक उत्कृष्ट गुणवत्ता की लौंगलता तैयार करने में लगभग 7 से 8 कारीगरों की मेहनत लगती है। वर्तमान में उनकी दुकान पर प्रतिदिन
करीब 100 से 150 किलोग्राम लौंगलता की बिक्री हो रही है, जिससे कई परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। साथ ही बनारस, अब बात करें अगर बनारस के मौसम की, तो इस बार मॉनसून लेट होने की वजह से वाराणसी में भीषण गर्मी और तपिश का दौर जारी है। शुक्रवार को वाराणसी का तापमान

41.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून से वाराणसी में बारिश का दौर शुरू हो सकता है, वहीं 30 जून को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जून तक जिले में केवल 6.9 मिमी बारिश हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य रूप से 63.4 मिमी वर्षा होनी चाहिए थी, यानी अब तक जिले को अपेक्षित बारिश का करीब 10% ही मिल सका है। हालांकि मौसम विभाग ने अब राहत की संभावना जताई है। शुक्रवार को काशी और आसपास के क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज चमक और जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच जिले में भीषण उमस और गर्मी का असर बना रहा। अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक रहा। वहीं हवाओं की गति करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके चलते वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो बनारस, ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति। मिलूंगी आप सबसे फिर एक नए दिन एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2000

0: 478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 2478 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहले PCB सर्किट आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
3: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके।
0: कार्यक्रम को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
4: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां

0: उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और XHandle AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान में दी गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्माकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कुशीनगर में कल दोपहर एक तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कसिया क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह हादसा अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हाटा पिपराइच मार्ग पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, बांदा, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा समेत आसपास के जनपदों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धीमेह से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन। राग है गुणकली।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। राग था गुणकली। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा

0: करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा

0: और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुराने

0: पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम

0: बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स पैट्रिक हर्मिनी टुडे टू ऑल्सो एड्रेस सेशेल्स नेशनल असेंबली एंड इंटरैक्ट विद मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescue

0: 30 हो गई है। बचाव टीमें अब भी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकत दारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मुफादात के इलाकाई व बैन अल-अक़वामी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोश कैमन में कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत ने बताया कि भारतीय दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ इन तकरीबात में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के तीन रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवियत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरका अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जायंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के अपने तीन रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हुए नेपाल में फंसे हुए भारतीय यात्रियों की मदद की दरखास्तें मौसूल होने के बाद जारी की हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत खारजा ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो चीन में दाखिल होने के लिए लाजमी वीजा और एंट्री परमिट हासिल किए बगैर नेपाल पहुंच गए। इसके नतीजे में कई यात्री नेपाल में फंस गए और उन्होंने वजारत खारजा से मदद तलब की। वजारत ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो तमाम सफरी दस्तावेजात और इजाजतनामों की तस्दीक के बगैर सफर शुरू न करें, क्योंकि जरूरी इजाजतनामे हासिल होने से पहले रवानगी सफर के दौरान मुश्किलात का बायस बन सकती है। वजारत ने यह भी कहा कि यात्री रवानगी से कबल इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर बाकायदा रजिस्टर्ड और मजाज है। वजारत खारजा की इस हिदायत का मकसद यात्रियों के लिए महफूज, आसान और बिला रुकावट रूहानी सफर को यकीनी बनाना और उन्हें गैर जरूरी परेशानी से महफूज रखना है। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज शाम गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रेकर आजमाइशी प्रोजेक्ट का बाजाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस नए इकदाम का मकसद खानदानों के लिए सेहत की निगरानी के निजाम को बेहतर बनाना, नीज सेहत और फलाही खिदमत तक उनकी रसाई को मजीद आसान बनाना है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद में बूथ सुदूर और शक्ति केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक्कदा खसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो जमीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 वर्षों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वह हर शहरी के लिए काबिले रसाई, किफायती और मेयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसी तर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के नौवे एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मरकज में रोकथाम के साथ अपनी सेहत के

0: नुक्ते नजर की बीमारी की देखभाल से तंदुरुस्ती और मुकम्मल तौर पर इलाज मुआलजे से जामी सेहत की देखभाल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले 6 जांबाज फौजियों की अजीम कुर्बानी का सरकारी तौर पर पहली बार हाल ही में एतराफ किए जाने से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया के बाज हलकों में गर्दिश करने वाली खबरों पर वजारत दिफा ने अपनी वजाहत पेश की है। वजारत ने इन खबरों को हकायक के मुनाफी करार दिया। वजारत के मुताबिक मुल्क ने शहीदों को अव्वलीन मौके पर खराज अकीदत पेश किया था। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO ने गुज़श्ता बरस 11 मई को मुनक़िदा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 6 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया था। वजारत ने मजीद बताया कि इन शहीदों को बहादुरी के एजाजात भी अता किए गए थे, जिनका ऐलान गुज़श्ता बरस 14 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में किया गया था। वजारत ने मजीद कहा कि भारतीय फौज के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया था। वजारत दिफा ने कहा कि शहीदों के नाम तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नेशनल वार मेमोरियल पर कुंदा किए जाते हैं और ये कहना कि मुकर्रा प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया हकाइक के खिलाफ है। उसने मजीद कहा कि इस तरह की गुमराहकुन इतलात न सिर्फ हकाइक को मस्ख करती हैं बल्कि शहीदों के अहले खाना के लिए गैर जरूरी तकलीफ का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वालों के वक़ार को भी मुतासिर करती हैं। वजारत ने तमाम शराकतदारों से अपील की है कि शहीदों से मुतालिक खबरों की शात में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करें और गैर मुसद्दका मालूमात की तशहीर से गुरेज करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर उसने लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान नाजुक जंगबंदी एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फौजी तैयारों ने ईरान के फौजी निगरानी के निजाम, मौसलाती निजाम, फिजाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन मराकज और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई जुमे के रोज एक तजारती बहरी जहाज पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी फोर्सेज ने कीकुनामी तेल बरदार जहाज पर यकतरफा ड्रोन से हमला किया। ये जहाज आबनए हुरमुज से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से ज्यादा खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान के पास जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी फोर्सेज ने कीकु ऑयल टैंकर पर हमला किया। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि आबनए हुरमुज के शुमाल में वाकई एक इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। इमदादी टीमें अब भी मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। यहां बुध के रोज 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो ताकतवर जलजलों ने जनूबी अमरीका के इस मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही मचाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि जलजलों के 3 दिन बाद भी 68,900 लोग लापता हैं। इनकी गुमशुदगी की इतला उनके अहले खाना ने दी है। कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिग्ज ने कहा कि हजारों इमदादी कारकुन रात दिन मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वेनेजुएला की जलजले से मुतालिक मुतालियात की फाउंडेशन फुनविसिस ने इतला दी है कि वेनेजुएला के वस्ती इलाकों में 4.1 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। सरकारी इदारे ने बताया कि इस जलजले का मरकज मुल्क के अहम वस्ती साहली शहर लागुएरा से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब में था। बुध के रोज आने वाले दो ताकतवर जलजलों से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद इस इलाके को आफतजदा जोन करार दिया गया है। इदारे के मुताबिक जलजला सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा शिद्दत से लरस गई और ढांचा जाति नुकसान भी ज्यादा हुआ। जलजले के माहरीन मुतासरा इलाके पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि फुनविसिस भी दिन रात निगरानी का काम जारी रखे हुए है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने खबरदार किया है कि जो कोचिंग सेंटर लाजमी हिफाजती उसूलों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत जाब्ता जाति कानून मुतारिफ कराएगी ताकि कोचिंग सेंटरों की सख्त निगरानी, ज्यादा जवाबदेही और तलबा की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आला ने तलबा से अपील की कि अगर उनकी कोचिंग

0: में हिफाजती इंतजामात में कोई कोताही या लापरवाही हो तो वो इसकी इत्तला ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए हुकूमत को दें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत मकानात की फेरिस्त साजी और गिनती का काम 100% मुकम्मल कर लिया है। ऐसा करने वाला ये मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पहले अजला में से एक बन गया है। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई वुकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद अम्मार।
5: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वजीर आजम मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहायश के लिए जरूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतजाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफ़े पर एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8-लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतादिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेंजवेला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
6: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा इस छोटे से अंतराल के बाद।
7: पुलिस?
8: मिस सीमा
7: जी,
8: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
7: क्यों? लेकिन मैं
8: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
7: डिजिटल अरेस्ट?
8: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
7: इतने पैसे?
8: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
7: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है।

0: इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मधुरिमा में। और आज मधुरिमा में सुरीले गानों का सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव के साथ। हम सभी हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के गानों को पसंद करते हैं, है ना? उस गोल्डन एरा के गानों की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ नाम सबसे पहले आते हैं, लेकिन संगीत के उस विशाल सागर में कुछ मड़ियाँ ऐसी भी हैं जो नायाब हैं, जिनकी चमक बेहद खूबसूरत थी, जिन्होंने सिर्फ चंद धुने हवा में बिखेरी, लेकिन उनकी वो चंद कशिश हमारे कानों में आज भी गूंजती है। तो आज की मधुरिमा समर्पित है उन्हें कुछ गुमनाम मगर अमर आवाजों के नाम। मधुरिमा के सफर में सबसे पहला नाम है मुबारक बेगम का, जिनकी आवाज़ में राजस्थान की मिट्टी की खनक और एक अजीब सा दर्द था। मुबारक बेगम ने फिल्म तानसेन जो 1943 में आई थी उससे अपना सफ़र शुरू किया। उनकी आवाज़ में वो कशिश थी जो सीधे रूह में उतर जाती थी।

मुबारक बेगम के बाद दूसरी गायिका वो हैं जिनकी आवाज़ का स्टाइल बेहद अलग और वेस्टर्न था। महान संगीतकार शंकर जयकिशन की खोज शारदा राजन अयंगर। 1960 के दशक में जहां हर कोई शास्त्रीय गायकी की तरफ था, तो शारदा जी ने अपनी लीक से हटकर आवाज़ से भी एक ख़ास जगह बनाई। सुनिए अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से ये गाना शारदा अयंगर जी की आवाज़ में।

पाते हैं एक और आवाज़ की जिसमें गज़ब का ठहराव और सादगी थी। संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम साहब की जीवन संगिनी जगजीत कौर। जगजीत कौर जी ने बहुत कम गाने गाए, लेकिन जो भी गाए वो इतिहास का हिस्सा बन गए। उनकी आवाज़ में पंजाब की सोंधी खुशबू और संजीदगी थी। फिल्म उमराव जान से उनकी आवाज़ में ये गाना।

अगली आवाज है एक ऐसी गायिका की जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हुए भी संगीत की दुनिया में एक अलग और अमिट मुकाम बनाया, और वो गायिका हैं छाया गांगुली। साल 1989 में आई गमन, जो उनकी पहली फिल्म थी, उसके गाने आपकी याद आती रही के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनकी आवाज का वो भारीपन और वो ठहराव सीधे दिल को छूता है। आइए सुनते हैं उनका ये गाना।

और अब बात आरती मुखर्जी की, एक ऐसी गायिका जिन्होंने बंगाल के सुगम संगीत और रविंद्र संगीत में राज किया और जब बॉलीवुड की तरफ कदम रखा तो वहां भी अपनी मिठास खोल दी। आइए सुनते हैं आरती मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाजों में तपस्या फिल्म से ये गाना।

लोगों का दिल जीता। वो आवाज़ हैं सुधा मल्होत्रा, जिन्होंने बचपन में ही गुलाम हैदर साहब के निर्देशन में गाना शुरू कर दिया था। सुधा जी की आवाज़ में एक अलग ही पवित्रता और मिठास थी। सुनिए फिल्म काला बाजार से ये गाना सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त की आवाज़ों में।

0: दोस्तों, आज मधुरिमा में हमने याद किया उन गायिकाओं को जिनकी आवाज़ ने हिंदी सिनेमा के कैनवास पर ऐसे रंग बिखेरे जो कभी फीके नहीं पड़ सकते। मुबारक बेगम का दर्द, शारदा जी का चुलबुलापन, जगजीत कौर का ठहराव, आरती मुखर्जी की मिठास, छाया गांगुली की मखमली गज़लें और सुधा मल्होत्रा का संजीदगी, इन सब से मिलकर बनता है हमारे भारतीय संगीत का सुनहरा इतिहास। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आरती मुखर्जी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गाना।
1: सुनिए।
2: यस सर। 2 वेजिटेबल अलग ही। ओके।

आज का ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अब दीजिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव को अनुमति। सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए इन खूबसूरत नगमों को।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में मॉनसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को बेसब्री से मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मॉनसून अपने अनुमानित आगमन से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्या है मॉनसून के पिछड़ने के कारण और कब से प्रदेश में शुरू होगा बारिश का दौर, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह।
3: अतुल जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत इस वक्त तेज गर्मी से जूझ रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान और लू देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में सभी को इंतजार था, ये उम्मीद थी कि मॉनसून के आने का समय हो गया है और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कहीं कोई ज्यादा बारिश या इस तरह का तापमान में कोई कमी। तो ये जो मॉनसून है, अभी इसकी क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये उत्तर प्रदेश में आ सकता है?
4: देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि एक

0: पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती प्रसंचरण के रूप में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। यद्यपि छिटपुट बारिश कुछ एक जगहों पर हो रही है, परंतु कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही है, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई है। और जहां तक मानसून की बात है, जो वर्षा है वो 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा, और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर जो है वो मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसी समय जो है मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो अभी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी दिनों में जो है वो प्रदेश में मानसून आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वो 28 जून के बाद किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।
1: सर, मानसून में देरी की वजह क्या मानते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने अभी तक रीड करा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बन पा रही थी, इसका कारण क्या है?
0: देखिए, मानसून की जो परिस्थिति है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रीय कारक होते हैं और कुछ सेमी परमानेंट फीचर होते हैं। तो जो सेमी परमानेंट फीचर थे वो सारे के सारे जो हैं इस समय अनुकूल नहीं थे, चाहे वो जो भी हो। मैस्करन हाई दक्षिणी हिंद महासागर में होता है, वो फेवरेबल पोजीशन में नहीं था। इसके अतिरिक्त हीट लोक जो पाकिस्तान के जैकोबाबाद के आसपास बनता है, उसका भी पोटेंशियल कम था, मतलब वो कमजोर था, जिसके कारण की जो मौसमी द्रोणी है वो भी बहुत ही कमजोर थी। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ बनती है और वहां पे भी जो है द्राब प्रवणता न होने के कारण वो भी अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तिब्बतन एंटी साइक्लोन या तिब्बतियन चक्रवात वो भी अपनी सामान्य स्थिति से खिसका हुआ था। तो ये सारी ही परिस्थितियां थी जिसके कारण की जो मानसून का फ्लो था वो 10 दिनों के आसपास तक स्टेग्नेंट रहा। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में और उसकी वजह से ये पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों ही शाखाएं आगे बढ़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की। और आने वाले दिनों में एक और सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके कारण कि इसके फिर से आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।
1: अतुल जी, एक ये इस तरह की भी खबर है कि इस बार कम वर्षा होगी हर बार की तुलना में, और इस तरह के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं, और इसको लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है कि कहीं सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई बात है कि क्या इस बार नॉर्मल से कम बारिश होगी?
0: जी बिल्कुल। देखिए, जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है मानसून के लिए दो चरण में जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण में जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि इस साल कुल समेकित वर्षा अखिल भारतीय समेकित वर्षा सामान्य की तुलना में 92% होने की संभावना है, और उसको फिर मई के आखिर में 29 मई को फिर से अपडेट किया गया और ये आंकड़ा जो है अब 92 से 90% पर आ गया। लेकिन ये अखिल भारतीय वर्षा है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ज्यादातर मॉडल्स जो हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर के दौरान होती है वो सामान्य की तुलना में कम रहेगी, और इसके लिए पहले ही संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जा चुका है, जिससे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इस हिसाब से निर्धारित कर सकें और उसके अनुसार योजनाओं पर अमल किया जा सके। तो कुल मिला के इस साल जो है वो बारिश सामान्य की तुलना में कम होने की संभावना है। हर साल की तुलना में कम ऐसा हम नहीं कह सकते, पहले भी सामान्य से कम बारिश हुई है कई बार।
1: जी
0: तो लेकिन ये है कि जो दीर्घावधि औसत है उसकी तुलना में कम होने की संभावना है।
1: सर, अलिनो का भी क्या इसमें कोई योगदान है?
0: एलिनो का भी योगदान है। एलिनो एक्चुअली एक रिमोट फोर्सिंग है और एक मेजर ड्राइवर है इंडियन समर मानसून का। और एलिनो का जब भी वार्म फेज होता है, वार्म फेज का मतलब जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में नीनो 3.4 रीजन में जो है वो समुद्री सतह का तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को हम वार्म फेज ऑफ इंसो या एलिनो बोलते हैं। और इसका सीधा तौर पर प्रभाव प्रशांत महासागर का नहीं होता है, लेकिन ये दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, इसका जो एलिनो सदर्न ऑसिलेशन का जो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है सदर्न ऑसिलेशन, उसके थ्रू भारत के ऊपर एक एनोमलस एंटीसाइक्लोन बनता है, और जिसके कारण की जो कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो उसको सप्रेस करता है और यहाँ पे गर्म हवाओं का दोगमन कराता है, मौसम जो है वो बिगड़ने से रोकता है। और दूसरी चीज जो होती है वो ये जो है मानसून

0: फ्लो को कमजोर करता है, तो उस मानसूनी हवाओं के कमजोर पड़ने से भी जो वर्षा की तीव्रता और उसका कुल परिमाण है उस पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एल्निनो सिर्फ अकेला एक ड्राइवर नहीं है, कई और फैक्टर होते हैं एल्निनो के साथ जो कि इसको प्रभावित करते हैं। ये भी एक कारण है के कारण कि सामान्य से कम वर्षा होने की प्रायिकता जो है वो सर्वाधिक प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्रीय कारक भी होते हैं जो कि समय समय पर इन चीजों को निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर आगे का हम निर्णय ले।
1: सर, अगर हीट वेव पैटर्न की बात करें तो हमने देखा कि लगातार यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे, तो क्या ये गर्मी और हीट वेव पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, या एक सामान्य तौर पर चल रहा है अभी?
0: तराई इलाकों को छोड़ दें तो बाकी सारी जगहों पर फ्रीक्वेंसी और अवधि उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ी है, लेकिन जो प्रदेश के दक्षिणी जिले सर्वाधिक गर्म रहे इसके पीछे एक भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण भी है। वो ये है कि इस समय मतलब समर सॉल्स्टिस होती है 21-22 जून में, उस समय सूर्य जो है वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है और कर्क रेखा जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के पास से होकर गुजरती है, तो मतलब सूरज जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के सीधा ऊपर होता है। इस वजह से सर्वाधिक गर्मी इस समय वहां पर वो देता है। और इसके अतिरिक्त वहां का जो भूभौतिकी स्थिति है उसके कारण भी वहां पर हीट जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और उसका हीटिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये कई सारे कारक हैं जो कि उसको वैज्ञानिक तौर पर परिभाषित करते हैं कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में तापमान जो है वो बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा हो।
1: पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले बड़ी है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप लोग?
0: देखिए, जिस भी चीज की फ्रिक्वेंसी बढ़ना या घटना ये तो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और ये अभी बढ़ी या घटी है ऐसा नहीं है। जैसे हमने बताया तराई इलाकों में घटी है, तो कुल मिला के जो जलवायु परिवर्तन ये एक्सेलरेट हो गया है और इस कारण जो उसके प्रभाव पहले काफी दिनों के बाद या एक जनरेशन के बाद दिखाई देते थे, अब वो जल्दी सेम जनरेशन में उसी पीढ़ी में दिखाई देने लगे हैं और वो लोगों को महसूस भी हो रहा है।
1: जिस तरह आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है, उसके कारण ये सारी चीजें एक्सिलरेट हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि जो सीजन है हम उसमें एक्सट्रीम वर्षा देखते हैं, या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, या फिर सर्दियों का मौसम बीत जाता है, सर्दी नहीं पड़ती, या एक न्यू नॉर्मल के तौर पर आगे बना
0: जी
1: रहेगा?
0: जी बिल्कुल। देखिए, इस समय की जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो ज्यादातर समय ये स्थितियां रही हैं कि जब भी तापमान जो है, चाहे वो वर्षा हो चाहे तापमान हो, जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ गई हैं और जो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज होती थी वो घट गई हैं। तो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है उसमें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है और ये एक न्यू नॉर्मल है।
1: अतुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना, उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
5: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें, और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। मेजबानी की है सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान ने, पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: लफ्ज जब कागज पर उतरते हैं तो महज स्याही नहीं रहते, एहसास बन जाते हैं। कभी किसी मुस्कुराहट का पैगाम, कभी किसी याद की खुशबू, और कभी किसी कीमती आरा की तर्जुमान।
2: और जब यही एहसास खत की शक्ल में हम तक पहुंचते हैं तो यूं लगता है जैसे दूर बैठे हमारे सामाईन हमारे रूबरू आ बैठे हों।
1: आपके खतूत, आपकी मोहब्बत, आपकी राय और उर्दू जबान से आपकी वाबस्तगी को सलाम पेश करते हुए हम हाजिर हैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम
2: खत के लिए शुक्रिया। एक ऐसा प्रोग्राम जहां गुफ्तगू का आगाज आपकी खतूत से होता है और इख्तिताम आपकी मोहब्बतों पर।
1: मैं हूं शाजिया खान
2: और मैं हूं सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: आइए खोलते हैं आज के खतूत का दरीचा और मिलते हैं अपने सामईन से। हमारा पहला खत आया है खदरा लखनऊ से और लिखने वाली हैं सना खातून। लिखती हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और आज के उर्दू प्रोग्राम से हमको बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि वाकई आज के दौर में वालिदैन अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं जिससे उनकी परवरिश अच्छी नहीं हो रही है, जबकि आज के दौर में वालिदैन को बच्चों को

0: पूरा वक्त देना चाहिए और उनकी हर बात को समझना चाहिए और उनके एहसासात को भी समझना चाहिए। आज के प्रोग्राम से बहुत ही अच्छे से इस बारे में गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम।
1: सना खातून साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया कि जो मुबाहिसा आपने सुना है हिद्दे हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ। शाहजी, वाकई इस वक्त ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे जितने सामीन हैं उनके घर में जो बच्चे खासतौर से तालिबे इल्म हैं उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है कि वालिदैन जो बात हम तक पहुंचाते हैं, वालिदैन की जो कही बातें हैं वो हमारे मुस्तकबिल को बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। इसलिए वालिदैन की भी जिम्मेदारियां हैं और जो उनके घर में बच्चे हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि मुस्तकबिल को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। और हमारी कोशिश भी ये थी कि आप तक वो बातें पहुंचे कि वालिदैन किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। सना खातून साहिबा, आपने प्रोग्राम सुना और हम अच्छा लगा कि और भी कुछ तफसील से लिखें ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकें। बहरहाल आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।
0: इसी खत की मुनासिबत से हमारे पास अगला खत है उर्फी वसीम साहब का, जो लखनऊ से हैं और लिखते हैं कि सैयद मोहम्मद उमर साहब, आपका आज का उर्दू प्रोग्राम वालिदैन को लेकर सुना, बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। इसी मुनासिबत से हमारे पास एक और खत है नजमी हसन साहब का। नजमी हसन साहब जो कि रुदौली शरीफ से लिखते हैं, शुक्रिया आकाशवाणी उर्दू प्रोग्राम, आपके इस प्रोग्राम का आने वाली नस्लों पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा, मौलाना साहब और जो इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे थे और इतने अच्छे अंदाज में पेश किया, वो काबिले तारीफ हैं। इसी खत की मुनासिबत से हमारे पास एक और खत है मंतशा खातून का और ये लखनऊ से ही हैं। ये लिखती हैं, उर्दू प्रोग्राम दिल को छू जाने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। कल का प्रोग्राम अहद हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिला, बहुत शुक्रिया।
1: उर्फी वसीम साहब, नजमी हसन साहब और मंतशा खातून साहिबा, बहुत शुक्रिया आप सबका कि ये मुबाहिसा आपको इस कदर पसंद आया है। अहद हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ, ये जो दौर इस वक्त चल रहा है, टेक्निकल एरा में हम लोग चल रहे हैं शाहजिया खान
0: जी,
1: सोशल मीडिया का जमाना है और इस दौर में कैसे वालिदैन अपने बच्चों की तालीम तरबियत करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। और आपने ये मुबाहिसा सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: तौर पर आपके लिए तैयार किया गया था, और आपकी जो मुबारकबाद है वो हम जनाब आसिफ इकबाल साहब को इस माइक्रोफोन के जरिए भी, और जब मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह आपकी मुबारकबाद हम तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए।
1: हमारे एक बेहद प्यारे सामीन हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, इन्होंने आज हमारे चार प्रोग्राम के तहत खतूत अपने भेजे हैं।
0: अच्छा,
1: तो क्या ख्याल है आपका?
0: मैं इनके बहुत खुशामदीद और बहुत इस्तकबाल है इनका।
1: जी, तो मैं इनके सारे खत एक एक करके एक साथ शामिल करती हूँ, जिनका मैं नाम एक बार पूरी तरह ले दूं। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। हमें आपका उर्दू प्रोग्राम काफी अच्छा लगता है। हमें दिनांक 30 मई 2026 का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में उर्दू अदब में जदीद अफसाना निगारी विषय पर मेहमान अतिया बी से सैयद मोहम्मद उमैर जी की गुफ्तगु बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ इनका अगला खत आया है हमारे प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज, बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियां के मुतालिक, और ये लिखते हैं, हमें आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें आपका उर्दू कार्यक्रम बेहद पसंद है। दिनांक 5 जून 2026 का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में क्लाइमेट चेंज, बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर जगदम्बा दुबे, डॉक्टर मोहम्मद अहमद जी, सैयद मोहम्मद उमैर जी की उनसे गुफ्तगू बहुत अच्छी और लाभदायक लगी। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए आसिफ इकबाल साहब को हार्दिक बधाई। इसी तरह से इन्होंने हमारे 6 जून के कार्यक्रम उजाले अपनी यादों के मुतालिक भी लिखा है, और लिखते हैं कि इस प्रोग्राम में उजाले अपनी यादों के विषय पर डॉक्टर बशीर बद्र की चुनिंदा शायरियां शम्सुल आरफीन और आसिफ इकबाल जी की आवाज में बहुत अच्छी लगी। आसिफ इकबाल जी को हार्दिक बधाइयां। इसी के साथ इनका एक और खत है, हमारा 12 जून का प्रोग्राम बचपन की दिलचस्प यादें के मुतालिक, और ये लिखते हैं, इस कार्यक्रम में बचपन की दिलचस्प यादें, पुरानी बातें, हसीन यादें विषय पर नुज़हत फातिमा हुसैन अफसार जी से मोहम्मद उमैर जी की गुफ्तगु बहुत अच्छी लगी।
0: मैशा जी खान साहिबा कमाल करते हैं दुर्गेश जी।
1: जी,
0: आप देखें कि कितने शिद्दत से तमाम प्रोग्राम का जिक्र इन्होंने किया है, खासतौर से जो बातचीत जदीद उर्दू अदब में अफसाना निगारी, जिसमें आतिया भी हमारी मेहमान थी और सैयद मोहम्मद उमैर साहब ने बातचीत की थी, अच्छा लगा। क्लाइमेट चेंज के जहाँ तक जिक्र किया आपने, बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियों पर आपने ये प्रोग्राम सुना, हम आपकी मुबारकबाद डॉक्टर जगदम्बा दुबे, डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब को, सैयद मोहम्मद उमैर जी को, उजाले अपनी यादों के। शाह जी, ये प्रोग्राम तो वाकई बहुत ही खूबसूरत था। डॉक्टर बशीर बद्री की चुनिंदा शायरी पर मबनी ये प्रोग्राम, शम्सुल आरफीन भाई ने बहुत अच्छी कोशिश की, बचपन की दिलचस्प यादें, क्या मौजू आपने इंतखाब किया था, और नुज़हत फातिमा साहिबा और हुसैन अफसार साहब और मोहम्मद उमैर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। दुर्गेश जी, आप सबका, क्योंकि पूरे फैमिली के साथ आप प्रोग्राम को सुनते हैं, शाह जी ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से सुबह का वक्त होता है, 9:30 से उर्दू प्रोग्राम आप तक पहुंचता है, और ये वक्त बड़ा मसरूफियात का होता है, क्योंकि ऑफिस वाले ऑफिस को तैयार हो रहे होते हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप वक्त निकालते हैं उर्दू प्रोग्राम के लिए। शाजिया
1: जी,
0: कैसे शुक्रिया अदा करें इनका, रिवायतन करना तो पड़ेगा।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, ये हकदार हैं।
0: दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खत लिखने के लिए।
1: और हमारे हाफिज मसूद महमूदाबादी, खैराबाद, सीतापुर, अगर हम इनका खत शामिल ना करें राजेश्वरी जी, तो क्या लगता है आपको?
0: आपने खैराबाद कहा तो मैं समझ गया था
1: जी,
0: ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत प्यारे हमारे सुनने वाले हैं
1: जी,
0: और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कहते भी हैं।
1: वाकई इनके बगैर मुझे लगता है कि हमारा प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया अधूरा रह जाएगा।
0: बेशक।
1: तो इनका पहला खत जो हमें मिला है।
0: अच्छा, कई खत आए हैं
1: जी, इनके भी कई खतूत हैं।
0: अच्छा,
1: तो पहला खत हमारे प्रोग्राम अहद हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियों के मुतालिक है, और ये लिखते हैं, मोहतरम, बड़ी खुशी के साथ मैं इस बात का इजहार करता हूँ कि आकाशवाणी लखनऊ से नश्र उर्दू प्रोग्राम 31 मई 2026 बरोज इतवार खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम सुनकर मैं ही क्या, मेरे दोस्त अहबाब, खुसूसन बेहतरीन शायर महमूद खैराबादी, मेरे उस्ताद सईदुल हसन खान गुहर खैराबादी और गुलशन खैराबादी बेहद खुश हुए, और मोहतरमा शाजिया खान साहिबा और मोहतरम सुरेंद्र राजेश्वरी साहब की जमकर तारीफें की। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहतरम आसिफ इकबाल साहब और मोहतरम सुरेंद्र राजेश्वरी साहब, मोहतरमा शाजिया खान साहिबा का, कि मेरे खतूत को खुसूसी जीनत बख्शी और जितने भी खतूत मौसूल हुए सबको बेहतरीन अंदाज में पेश किया, इसलिए भाई सुरेंद्र राजेश्वरी साहब, मोहतरमा शाजिया खान साहिबा और आकाशवाणी लखनऊ की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद। इसी तरह से हमारे हाफिज मसूद साहब का एक और खत हमें मौसूल हुआ है, वो हमारे प्रोग्राम उजाले अपनी यादों के डॉक्टर बशीर बद्र इस मुतालिक है, और ये लिखते हैं, आकाशवाणी लखनऊ से नशर उर्दू प्रोग्राम मोहतरम आसिफ इकबाल साहब और शम्सुल आरफीन साहब की मेजबानी में बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी लखनऊ की जानिब से मोहतरम डॉक्टर बशीर बद्र साहब को बेहतरीन खराज अकीदत पेश की गई। यकीनन डॉक्टर बशीर बद्र साहब उर्दू अदब के वो मायनाज शायर थे जिन्हें भुलाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मैं भी दिल की अमीख गहराइयों से उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। आज का प्रोग्राम

0: क्या बात है, बहुत उम्दा।
1: ये पप्पू राजा भाई बड़ा आजमाइश में डाल दिया आपने। खैर चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।
0: सामीन, लम्हाते रुख्सती पाएगीर हो चली है, लेकिन आपके खतूत का इंतजार बदस्तूर रहेगा।
1: क्योंकि ये खतूत महज अल्फाज नहीं होते, बल्कि आपके दिल की आवाज, आपकी सोच का अक्स और हमारे दरमियान कायम एक खूबसूरत रिश्ता होते हैं।
0: अपनी मोहब्बतों, दुआओं, कीमती आरा और तजावीज से हमें यूं ही नवाजते रहिए,
1: ताकि अल्फाज और एहसास का ये सफर इसी तरह जारी रहे।
0: अगर आप भी अपने ख्यालात, तासुरात, मशवरे या किसी खास प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है kklsurdu@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 7991778157।
1: आपके ख्यालात, आपके तासुरात और उर्दू से आपकी मोहब्बत के नाम
0: खत के लिए
1: शुक्रिया।
0: शाजिया खान
1: और सुरेंद्र राजेश्वरी को
0: अब इजाजत दीजिए। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम आप सुन रहे थे। मेजबानी की थी सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान ने, और पेशकश आसिफ इकबाल की थी। आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जा रहा था।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लोक संगीत आप सुनेंगे इस संदेश के पश्चात।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 0542227658।
3: लोक संगीत में आज के कलाकार हैं बच्चालाल यादव और साथी। पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

0: बच्चालाल यादव और साथी की गाय छपरैया के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।
1: इस कार्यक्रम में हम सीख रहे हैं कन्नड़ भाषा में एक गीत। गीतकार श्री दोड्डरंगी गौड़ा, संगीत निर्देशिका श्रीमती इंदु विश्वनाथ। इसे गा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु के विद्यार्थी। गीत का भाव इस प्रकार है। भावात्मक एकता को सीखने के लिए महाविद्यालय है प्रकृति। सूर्य और चंद्र उदयास्त में कभी अपना क्रम नहीं तोड़ते, ऋतु परिवर्तन क्रमानुसार चलते हैं। पेड़ पौधे मानव से न कुछ मांगते और न आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पशु पक्षी आश्रितों को धोखा नहीं देते। इस महान प्रकृति को देखकर मानव ने कुछ नहीं सीखा। धरती आसमान को देखकर हम सब सीखें और सुखी जीवन बिताएं। इस गीत को गाने के लिए बच्चों आपको तो साहित्य चाहिए ना। चलिए पहले मैं आप सबको इसका साहित्य बताऊंगी, बाद में गाना शुरू करेंगे। तो सब लिखने के लिए तैयार है ना?
2: हाँ तैयार है।
1: इस गीत में एक पल्लवी, एक अनुपल्लवी और तीन चरण हैं।
3: बान सूर्य तड़वागेंदु हुट्टुवुदिल्ला, बेसरवेंदु मध्यान्हक्के मुळुगुवुदिल्ला।
1: अनुपल्लवी इस प्रकार है।
3: चौति चंद्र हुण्णिमेयन्नु तोरुवुदिल्ला, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೆಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೌತಿ ಚಂದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೆಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಮಾರಿ ಮನುಜ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತನು ಮರೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲೇ.

0: थोड़ी सी दिल्ला।
1: बच्चों आराम से गाइए, दौड़ना मत। और ये है तीसरा और अंतिम चरण। इसमें पहला और तीसरा चरण एक तरह के हैं।

0: चलिए अब हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। वाद्यों के साथ गाने में बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सितार बजाने के लिए यहाँ आए हैं जयंत कुमार दास, कीबोर्ड पी मोहनराज, गिटार बीए जय सिंह, श्रुति सहकार दे रहे हैं सीवी रामकृष्णा, तबला बजाकर भाई रविंद्र यावगल आपके दोस्त बन गए हैं ना? चलो अब तबले पर संगीत

0: अब आपने एक गीत।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहले सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में वक्त फिल्म से ये गाना। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

आप सुनिए दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना है शैलेंद्र की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में। फिल्म है रात और दिन। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में भाई भाई फिल्म का ये गाना। गीतकार थे राजेंद्र किशन और संगीतकार थे मदन मोहन। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजे से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ।

0: मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया ना गिड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान

मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो।
लोग

सम्मानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही

58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को

पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने

का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के

रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्ति

0: मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना,
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
5: आपकी कॉल
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
6: सबसे पहले आपको तमाम प्यारे प्यारे सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार, प्यार भरा हमारी ओर से भी।
6: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी, जिला चाकू वाले, रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश से।
0: जी जी, आप लोग का जो ये रामपुर का तारुफ है ना, ये बड़ा अलग होता है और बड़ा रुचिकर होता है। जैसे हम लोग भी बचपन से अलीगढ़ को तालों के जरिए, फिरोजाबाद की चूड़ियां, रामपुर का चाकू, और बड़ा प्रसिद्ध ये चाकू हुआ करता था एक समय में, और बहुत सारी फिल्मों में इसका
6: क्योंकि हमारे रामपुर में जब चाकू की मार्केट लगती है और चाकू लोग आते हैं अन्य क्षेत्र से खरीदने के लिए भी आते हैं, सर रामपुर चाकू के नाम से जाना जाता है।
0: बिल्कुल, श्रोताओं को ये बता दें कि चाकू का मतलब ये समझें कि साग सब्जी बहुत सारी चीजों में जो काम आता है, तो वहाँ जो मटेरियल है, जो कारीगर हैं, वो उम्दा किस्म के चाकू बनाते हैं और बहुत से ऑटोमेटिक जैसे भी होते हैं, तरह तरह की डिजाइन है, चूंकि वो पारंपरिक कारीगर हैं तो उनमें उसमें भी उनकी कारीगरी और शिल्पकारी झलकती है।
6: जी बिल्कुल सर, क्योंकि जब रामपुर चाकू के नाम से जाना जाता है तो ये चाकू वो जो

0: जी, उसी लिए हमने उतनी बातें बता दी कि लोग इसको भी सकारात्मक रूप से लें। कुछ भी घर में देखिए, काम काज हो, हर चीज की जरूरत होती है। अगर आपको गैस जलाना हो तो आपको आग और लाइटर चाहिए ही। उसी तरह से साग सब्जी भी काटनी हो, कुछ भी काट छांट करनी हो तो आपको चाकू की जरूरत पड़ती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही।
0: और ऐसे रामपुर अपनी तहजीब, अदब और शेरो शायरी और जो अदबी इदारे हैं बहुत सारे पढ़ने लिखने के, रजा लाइब्रेरी वहाँ की बड़ी मकबूल है जहाँ दुनिया भर से लोग रिसर्च करने आते हैं।
1: जी जी, रजा लाइब्रेरी भी है सर, और यहाँ के जो फिल्मों में राजा मुराद भी रहे हैं सर, तो वो भी रामपुर के हैं हमारे।
0: जी जी, और देखिए क्या उनकी खूबसूरत जबान रही है।
1: जी, काफी खूबसूरत सी आवाज है सर राजा मुराद जी की।
0: जी जी,
1: और उनको लोग पसंद भी करते हैं।
0: और कौन सा गीत आज इस कार्यक्रम में आप पसंद कर रहे हैं?
1: सर मैं गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम रहेगा जान तेरे नाम, और गीत के बोलेंगे जब कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओ।
0: अच्छा, ये स्कूल कॉलेज बंद होने का वक्त भी आ रहा है। नदीम श्रवण का संगीत है और उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ें।
1: सर मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा।
0: जी बताएं।
1: जैसे बक्सेना दातागंज से मेरे फ्रेंड लोग हैं, साथी लोग हैं, आपके प्रोग्राम को सुनते हैं, बिमल ठाकुर जी हैं, और ग्रामा पोस्ट हरहरतेपुर से सारनूर अंसारी रहेंगे, और रामपुर से मोहम्मद आदिल खान रहेंगे, और भाई रफत साहब रहेंगे, और जैसे मेरी फैमिली के लोग रहेंगे, भाई लोग जैसे बड़े भाई साहब जिससे पाल हैं, बड़े भाई साहब अमरपाल हैं, छोटा भाई शुक्लाल है, छोटा भाई सी एम है, साथ में प्यारे प्यारे सुनने वाले सभी साथी लोग हैं, साथ में अरुण सर जी आप हैं, अमरजीत में हैं।
0: बहुत शुक्रिया अमरजीत जी, अब गीत आप तक पहुँच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी
0: जी, जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी सर नमस्ते, मैं आशीष कुमार ग्राम महरे हूँ, जिला जौनपुर।
0: बढ़िया, आपके तो नाम आते हैं आज, आपका फोन भी एक बार फिर से आ गया। और थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, कई बार लाइनों की खराबी होती है, हम लोग भी समझते हैं। क्या हाल चाल है आशीष जी आपके?
1: जी सर हम अच्छे हैं, आप सर बताइए।
0: हम लोग भी बढ़िया हैं, और बारिश का इंतजार है, गर्मी बहुत तेज है, उमस भी अब हो रही है एक तरह से।
1: जी सर,
0: और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उसमें भाग ले रहे हैं, ये खुशी की बात है।
1: जी सर हम तो हमेशा सर सुनते हैं रेडियो जो है, हम सर नियम से सुनते हैं।
0: बिल्कुल, आप जैसे नियमानुसार जो हमारे श्रोता हैं, हम लोग उनको खासतौर से शुक्रिया कह रहे हैं।
1: जी सर।
0: और अब बता दें क्या हाल चाल है, क्या सुनाएंगे या क्या सुनेंगे आप?
1: सर आज फिल्म का नाम रहेगा जुड़वा। और सर मैं आपको एक गाना सुना दे रहा हूँ, उसके बाद
0: जी
1: बताऊंगा कौन गाना सुना है।
0: अच्छा, ये जुड़वा का सुना रहे हैं या सुनना है अलग है दूसरा है?
1: नहीं सर अभी दूसरा सुना रहा हूँ, जुड़वा का तो बाद में सुनूंगा।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ।

0: और सुनना है आपको जुड़वा का गाना, और चूंकि आप कुमार सानू के फैन हैं तो दुनिया में आए हो वाला गाना सुनना है क्या?
1: हाँ जी सर वही कविता कृष्णमूर्ति और
0: कुमार सानू की आवाज से। हमारे कई एक श्रोता हैं जो कुमार सानू के बड़े फैन हैं, एक आप हैं और एक देवजीत जी हैं जो आसाम से फोन करते हैं प्रोग्राम में।
1: सर हम नई काम लेने वाले थे।
0: बताएं।
1: और सर जो है जो हमारे गांव के हमारे दोस्त हैं, एक दिनेश कुमार पटेल और एक रवि सिद्धार्थ सर हैं।
0: यानी कुमार सानू के फैन फैन भाई भाई हो गए हैं।
1: जी।
0: गीत आपको सुनवा रहे हैं, अनु मलिक का संगीत है और गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो आरन पांडे जी,
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम थोड़ा बताएं आप।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे से हैं, नाम बता दीजिए। थोड़ा सा वक्त कम रहता है और इंटरनेट वगैरह मोबाइल का आवाज वगैरह में क्या होता है, कट जाता है।
1: मैं रईस खान अम्बे वाली फुले नगर महाराष्ट्र से बात कर रहा था।
0: हाँ, ये तरीका अच्छा है, होता ये है ना रईस जी, आप तो पुराने हमारे श्रोता हैं। कई बार ये नेटवर्किंग इतनी दिक्कत है और फोन लाइन वगैरह की कि कई बार वो उस शुरुआत में ही लाइन कट जाती है, आवाज ठीक नहीं आती, इसलिए शुरू से ही बिल्कुल सावधान विश्राम हो जाना है
1: जी। तो सिस्टम बहुत, हम खुश हैं, हमारे महाराष्ट्र में बारिश आ गई है सर।
0: हाँ हाँ हाँ, अच्छा वहाँ भी एक इंतजार हुआ एक समय तक बारिश का। मुंबई से कितनी दूरी है आपके इलाके की?
1: ये ज्यादा दूर नहीं है, कल्याण साइड में।
0: जी जी जी, उसके बाद ठाणे फिर मुंबई।
1: जी जी
0: हाँ,
1: और ये मौसम बहुत गर्म था, सिस्टम बहुत गर्मी थी यहाँ पे और बारिश का इंतजार था।
0: हाँ, ये है कि मुंबई और आपके इलाके में बारिश जब एक बार होती है तो वो भी बहुत अच्छी बारिश होती है।
1: जी जी हाँ, अभी तो हो रही दो दिन से बारिश।
0: और हम लोग के यहाँ तो इंतजार है, गर्मी बहुत तेज है। कभी इधर आपका उत्तर भारत में आना हुआ है, प्रयागराज वाराणसी?
1: हाँ, लखनऊ साइड और इलाहाबाद में आया था मैं।
0: जी जी,
1: मेरे रिश्तेदार हैं, आना जाना लगा रहता है।
0: यानी मूलतः अभी आप वहीं रह रहे हैं, वहीं के रहने वाले हैं?
1: अभी तो फिलहाल इधर ही हूँ सेटल।
0: जी जी,
1: फैमिली मिली सब इधर ही है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: धंधा पानी भी सब इधर।
0: हाँ हाँ हाँ, और वहाँ रह करके आप तमाम रेडियो स्टेशन है उनके प्रोग्राम सुनते रहते हैं?
1: सब सुनते हैं, अम्बे भारती ये वो सब।
0: जी जी, और देखिए सोशल मीडिया और इंटरनेट के चलते आज ये है कि श्रोता दूर दराज के, पहले जो स्थानीय केंद्र थे इस तरह के, वहाँ लोकल ही श्रोता जुड़ पाते थे, सुन पाते थे। आज का दौर ये है कि देश के कोने कोने से लोग फोन करते हैं।
1: अभी तो हम लखनऊ भी सुनते हैं, बरेली भी सुनते हैं, रामपुर भी सुनते हैं सर।
0: जी जी, और हमारे केंद्र के तो प्रोग्राम आप सुनते ही हैं,
1: सुनते ही रहते हैं।
0: तो कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
1: देखिए बारिश हो गई है तो एक बारिश का गाना सुनना चाहते हैं हम। मान गए उस्ताद का गाना सुना दीजिए, एक छतरी और हम हैं दो।
0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, वर्मा मलिक ने इसे लिखा है, सोनिक ओमी का संगीत है। तो गीत सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बारिश का आनंद लीजिए, और हम लोग के तरफ भी बारिश है ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं।
1: इंशाल्लाह जल्दी आएगी आपके तरफ भी।
0: जी बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम। हेलो, फोन इन, फरमाइश।
1: हमारा नाम निषाद है, रविंद्र निषाद।
0: रविंद्र निषाद जी, फोन लाइनों में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज ठीक नहीं आती। रविंद्र निषाद कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं आजमगढ़ बात कर रहा
0: हूँ। हाँ, हमारे कार्यक्रमों से आप जुड़े रहते हैं
1: बहुत दिन
0: है। जी जी, और क्या करते हैं निषाद जी?
1: बस राजनीति से काम करता हूँ।
0: जी जी, और कार्यक्रम कौन कौन से खास तौर से आपको पसंद आते हैं?
1: आपके कार्यक्रम सब मुझे पसंद आता है। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता
0: है। जी जी, रेडियो से जुड़ाव बचपन से है आपका?
1: बचपन से जी।
0: आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको प्रोग्राम में?
1: कर्मा धर्मा फिल्म का गाना सुनवा दीजिए सर।
0: कर्मा धर्मा ये फिल्म है कि धर्म कर्म फिल्म है कि?
1: कर्मा धर्मा वाला नहीं, जो गाना देशभक्ति वाला।
0: अच्छा, ये फिल्म का नाम है कर्मा, आए वतन तेरे लिए। हाँ, ये कर्मा फिल्म है और धर्म कर्म एक अलग फिल्म थी। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, देशभक्ति गीत है, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में। गीत सुनते हैं आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे संगीत। शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो सर नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: भगवान सिंह परमार जी, आपके फोन पे किसी का फोन आ रहा है लगता है।
1: नहीं सर, किसी का तो नहीं आ रहा सर अभी तो।
0: हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो टू टू की आवाज नहीं आती है, लेकिन अभी जब आप फोन कर रहे हैं तो वो आवाज बीप्स की आवाज आ रही है।
1: जी सर, हो सकता है, बाकी मेरे पास अभी आ नहीं रहा कॉल किसी का।
0: अच्छा अच्छा, तो अब बता दें कैसे हैं आप और आपके यहाँ मौसम कैसा है।
1: सर जी, हमारे इधर मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, और हम भी अच्छे हैं सर।
0: तो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी तो राहत है, वरना हम लोग के यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बारिश अभी हुई नहीं है, इस वजह से गर्मी बहुत तेज है।
1: जी सर, हमारे इधर 15 दिन से बारिश हो रही है और गर्मी से 15 दिन से राहत मिल चुकी है हमारे।
0: जी जी, और मुख्यतः आप खेती बाड़ी से भी जुड़े हैं क्या।
1: जी सर, हम खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसान है सर, खेती।
0: तो इसमें तो बारिश का बड़ा महत्व है, और अगर ठीक ठाक शुरुआत में बारिश हो जाए तो जो कामकाज है खेती बाड़ी का वो चल निकलता है।
1: जी सर,
0: और कार्यक्रम कैसे लगते हैं हम लोग के आपको।
1: जी सर, आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, शनिवार के दिन भी सुनते हैं सर, रविवार के दिन भी कार्यक्रम सुनते हैं, आपको डीटीएच के माध्यम से सुनते हैं सर।
0: बहुत बढ़िया, और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी।
1: सर फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा, और गाने के बोले वो हमसे खपाए हम उनसे खपाए, मगर बात करने को जी चाहता है।
0: गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश।
0: जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: अरुण भाई बोल रहे हैं ना?
0: जी बिल्कुल।
1: राजनारायण पटेल, ग्राम मन्नापुर, जिला चंदौली से।
0: बहुत बढ़िया, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं। चंदौली में भी धूप ही है, क्योंकि दूसरे इलाके के जो हमारे श्रोता हैं वो तो बता रहे हैं उनके यहाँ बारिश कुछ कुछ दूसरे इलाकों में शुरू हो गई है।
1: आज रात में थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भई रही।
0: जी जी, वो जो रात में हुई बारिश हम लोग की रिकॉर्डिंग के दिन, वो बनारस में भी छिटपुट बस बूंदाबांदी ही थी, उससे कोई राहत जैसी चीज अभी नहीं आई है।
1: नहीं नहीं।
0: और प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं?
1: हाँ हाँ, प्रोग्राम तो बहुत पसंद आ रहा।
0: आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: गाना है राजा और रंग। गाना वो लता जी की आवाज में।
0: मेरा नाम है चमेली।
1: मेरा नाम है चमेली।
0: बड़ा मशहूर गीत है।
1: और हालचाल बताइए।
0: हालचाल सब अच्छा है। गीत अब आप तक पहुंच रहा है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, बहुत ही मकबूल गीत, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली। नमस्कार, शुक्रिया, गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: प्रणाम गुरुदेव जी।
0: जी प्रणाम। और पहचान तो हम लोग गए, लेकिन ये आपकी आवाज अंदाजे बयां मुख्तलिफ है और खास है, तो आप अपना परिचय हमें दे दीजिए।
1: वाराणसी उत्तर प्रदेश पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज टू श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोन।
0: क्या कहने, आपका अंदाजे बयां बड़ा खास है अनिल जी, और आप हमारे कार्यक्रमों से इतने वर्षों से जो जुड़े तो फिर जुड़ ही गए, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पुराने श्रोता हैं वो आजकल उनसे थोड़ा सा पहले की तरह न तो उनके फोन आते हैं और न ही उनके पत्र वगैरह आते हैं।
1: सर एक गाना है कि दामन जो थामेंगे तो दामन न छोड़ेंगे हम।
0: कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, और दामन जो थामेंगे तो दामन न छोड़ेंगे हम।
1: जी, आप करेक्ट करेंगे ना गुरुदेव जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ करेक्ट करते रहा करिए।
0: नहीं नहीं ठीक है, अब क्या है कि आजकल हर कोई समझदार हो गया है, ये युग समझदारों का है।
1: समझदार हो जाने से अब वही है ना कि एक बार एक वरिष्ठ श्रोता ने पत्र लिखा था कि समझ समझ के भी जो ना समझे वो मेरी समझ में
0: ना समझे।
1: वरिष्ठ श्रोता
0: है
1: हमारे।
0: हाँ हाँ, वो वरिष्ठतम है।
1: तो आपका इशारा, अच्छा आवाज डबल आ रही है गुरुदेव जी, रिकॉर्डिंग
0: रिकॉर्डिंग ठीक हो, रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, बताइए अभी ठीक है?
1: हाँ, मजा खराब हो जाता है रिकॉर्डिंग।
0: हाँ वो, लेकिन आज अभी हम हैं तो हम सब टेक्नोलॉजी चेक करके बैठते हैं अपनी ओर से।
1: अनुभवी हैं आप, अनुभवी हैं। कार्यक्रम
0: तो कार्यक्रम आप देख और सुन दोनों रहे हैं?
1: बिल्कुल, और प्रतिक्रियाएं भी त्वरित जो है हम कर देते हैं, त्वरित लगा देते हैं कि थोड़ा मनोबल बढ़ा रहे लोगों।
0: हाँ हाँ हाँ, ये मनोबल बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कि चार बार मनोबल बढ़ाइए तो पांचवी बार कुछ चीजें बता दिया करिए किसी को भी।
1: नहीं, बहुत अच्छा, आप जैसा सारा करेंगे तो हम ध्यान देंगे, मतलब हम पोस्ट कर देते हैं, पसंद आता है लोगों का, आवाज क्लियर रहती है।
0: नहीं नहीं बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए वक्त के साथ साथ तो आदमी बदलता रहता है ना, हम लोग के समय था वो डायल, हम लोग फोन करते थे और एक उससे भी पहले ट्रंक कॉल लगाना पड़ता था।
1: जी।
0: और अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड की इतनी महत्ता थी कि बड़ी से बड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी डाक से ही हम लोग भेजते थे।
1: अच्छा गुरु जी, एक मेरा अनुरोध है कि मैंने एक पत्र डाला था, पोस्ट कार्ड तो नहीं मिला था, नहीं। पत्र के लिए जो फरमाइश आता है पहुंचा था कि नहीं पहुंचा, क्यों कभी नाम तो लिया नहीं गया, शायद कभी कभी लिया गया हो।
0: तो थोड़ा सा सामान्य डाक के प्रति, पहले जो डाकिया हुआ करते थे और लोग डाकिये की प्रतीक्षा करते थे, चूंकि गांव घर के लोगों के हजारों सैकड़ों लोग, कोई मुंबई कोई दिल्ली कलकत्ता जगहों में लोग रहते थे, तो चिट्ठी का इंतजार बड़ा तबीयत से लोग करते थे, टेलीफोन कहाँ सहज सुलभ था,
1: जिज्ञासा एक बनी रहती थी हाल चाल जानने के लिए बड़ा।
0: जी जी, और डाकिये का आना बड़ा एक बड़ा अच्छा अनुभव, खुशी का एक एहसास देता था। मनी ऑर्डर्स आते थे 30-40 रुपए के ही सही, लेकिन उनकी महत्ता और जो खुशी थी वो आज बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलती है।
1: जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको,

0: 51 की बात मुझे पापा बताते थे कि इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था। बाबूजी मेरे एयरफोर्स के सिविलियन सीजीओ थे, सिविलियन गजेट ऑफिसर, तो कह रहे थे कि मेरा रेलवे में गार्ड की नौकरी का हो गया था। तो जब मैं ज्वाइन करने के बाद गांव पहुंचा, तब एक थे बड़की अम्मा हमारी थी,
1: जी जी,
0: उन्होंने उनको पत्र दिया, उसमें गार्ड की इनकी नियुक्ति का लेटर था रेलवे में।
1: अच्छा,
0: 2 महीने बीत चुके थे।
1: हाँ,
0: पहले ऐसा भी होता था।
1: हाँ, बहुत सी चिट्ठियाँ हमारे भी पास, बहुत सी चिट्ठियाँ बहुत जरूरी जरूरी भी कई बार देर से पहुंची और तब तक वो समय बीत जाया करता था। लेकिन पहले ये चीजें होती थी, अब तो सामान्य डाक के बारे में हमने कहा कि श्रोता चिट्ठियाँ अगर एक आध भेजते हैं कम बेसी तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है।
0: अच्छा गुरु जी, एक मतलब आपके माध्यम से हेलो फोनिंग फरमाइश के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ मैं
1: जी,
0: जो पत्र के लिए आता है ना कि आपके पत्र आपके गीत, तो इसको भी अब ईमेल पे हैंडिंग यही कर दीजिए कि आपके पत्र ईमेल से आपके गीत, इसको चेंज करवा दीजिए आप लोग। मतलब अनुरोध करूंगा मैं कि क्योंकि अब तो वो समय रहा नहीं आपकी बातों से जो अंदाजा
1: जी
0: लगा।
1: बिल्कुल, चिट्ठियां नहीं आती हैं और कुछ ही श्रोताओं की चिट्ठियां हैं उसे ही छांट कर लोग मुश्किल से शामिल करते हैं, तो हम लोग भी वही देख रहे हैं कि चिट्ठी कम है।
0: टाइटल जो है ना चेंज,
1: और चूंकि हुआ ये कि हमारे पास बुधवार गुरुवार को मेल आधारित ऑलरेडी है, इस वजह से देखा जाता है और पूरी तरह से बंद भी हम लोग नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि चिट्ठी का प्रोग्राम। देखिए उधर विविध भारती ने मंचाई गीत फिर से शुरू किया है।
0: सर ऐसा है ना, मेरा मतलब ऐसा मानना व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि उस समय पोस्ट ऑफिस को बढ़ाना था।
1: जी जी जी जी जी, अभी तो ये है कि बहुत सारे जगहों पे श्रोता हमारे बोलते हैं, या आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने देखा होगा कि पोस्ट कार्ड तो अब मिलते ही नहीं है कहीं पर,
0: तो समय बदल गया ना। जैसे जी, हम लोग कहते हैं ना कि अब समय बदल गया
1: और अब कौन लिखे कौन इंतजार करे, लोग तुरंत व्हाट्सएप करते हैं, मेल भेजते हैं, गाना सुनते हैं।
0: हाँ, तो उसके लिए या तो कुछ सिस्टम चेंज हो जाए, या तो व्हाट्सएप भी हो जाए पत्र के लिए में और उसको पढ़ा जाए, या तो मेल ही हो जाए।
1: तो हम तो रहते हैं तो बहुत कुछ अपना इस तरह का प्रयोग करते हैं कि सभी लोगों के नाम शामिल हो जाएं, लेकिन अभी वो घोषित रूप से नहीं है। अब बता दें गाना कौन सा सुनवाया आपको।
0: 1955 की फिल्म है मुनीम जी, और इसमें हेमंत कुमार जी ने एक भजन मतलब कि वो गाना गया था जो बड़ा पॉपुलर हुआ था।
1: जी जी,
0: और उसी से हेमंत कुमार जी पॉपुलर भी हुए।
1: शिव जी ब्याह ने चले वाला गीत है क्या।
0: अरे आप गुरुदेव, मैं कहता हूँ बार बार। अच्छा,
1: ये जब शिवरात्रि वगैरह आती है तो लोग इस फिल्म को हम लोग याद करते हैं कि शिव जी बिहाने चले। अच्छा, बिहाना हम लोग के गांव घर का शब्द है।
0: जी जी,
1: और फिल्म में थोड़ा सा उसको लिखने वालों ने बिहाने चले बोल देते हैं। बिहान माने सुबह होता है और ब्याह, और बिहाना माने होता है ब्याह, मतलब शादी होता है, विवाह से बना है। हाँ,
0: भभूति लगाई के पालकी सजाई के भभूति लगाई के ना, मतलब दोनों ही मिश्रण है भोजपुरी हिंदी।
1: हाँ, इसमें जो शैलेंद्र थे वो थोड़ा सा चूंकि इस इलाके से इन चीजों से जुड़े हुए थे तो उन्होंने अच्छे गीत लिखे हैं ये वाले।
0: उनके जितने भी गीत हैं बहुत बढ़िया हैं और मतलब मार्मिक और संदेश देते हुए जो भी उन्होंने लिखे।
1: जी जी जी, तीसरी कसम ही देखिए, एक से एक गाने हैं जो जीवन की फिलॉसफी, हालांकि फिल्म नहीं चली और उनको बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन गाने उन्होंने एक से एक लिखे। तो इस तरह के गीत आपको सुनवा दे रहे हैं। बिल्कुल, शिव जी ब्याह ने चले, हेमंत कुमार की आवाज। बहुत शुक्रिया अनिल जी, नमस्कार।
2: बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला,

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50 के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और ये प्रोग्राम शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक प्रसारित होता है। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, आज इस कार्यक्रम में आपने फोन किया। अब अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। दिन के 1 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर

0: विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना और आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना दशाश्वमेघ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सविता देवी पत्नी उमा शंकर तिवारी ग्राम और पोस्ट करण छपरा थाना डोकटी जिला बलिया उत्तर प्रदेश से दिनांक 23 जून 2026 खिचड़ी वाले बाबा दशाश्वमेघ वाराणसी से सुबह 6 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 38 साल, लंबाई 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना दशाश्वमेघ कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त कैंट जिला वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुन्नालाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ निवासी गेट नंबर 5 वरुणापुरी कॉलोनी फुलवरिया वाराणसी से दिनांक 14 जून 2025 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 60 वर्ष, रंग गेहुआ, लंबाई 5 फुट 3 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या कैंट कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार वंदना सिंह पत्नी मुकेश सिंह सिर गोवर्धनपुर थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी से दिनांक 12 अप्रैल 2025 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 39 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज के शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:30 से आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। फरमाइसी लोकगीतों का कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित लोक रंग आप सुनेंगे 1:35 पर। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनेंगे 2:30 पर, जिसमें आज की बातचीत का विषय होगा गठिया रोग, सावधानियां और सही इलाज। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय से शिखा श्रीवास्तव। बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल आप सुनेंगे शाम 5 बजे।

इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय बिजली सुरक्षा दिवस पर, और वार्ता आप सुनेंगे मोबाइल की लत और बच्चों का भविष्य। वार्ताकार होंगे सुषमा शर्मा। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र और रोजगार सूचना।

पत्र के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। आज की प्रस्तुति होगी अरुण पांडे और सना सलीम की। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साई बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत, इत्तेहाद और मोहब्बत पर मबनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने यह भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम जिला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति है अरुण पांडे और सना सलीम की।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। सना जी हैं, नमस्ते आपको भी।
1: अरुण जी आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार।
0: और ये जो ताजगी दिख रही है, ये योग दिवस जिसे अंग्रेजी में योगा डे आजकल कहा जा रहा है, उसका असर है।
1: तो और मौसम का भी असर है,
0: थोड़ा सा बदलाव आया है। जो तेज गर्मी थी, उम्मीद करें कि अब हम लोगों ने जैसा पिछले प्रोग्राम में चर्चा की थी कि अब मानसून आ जाना चाहिए, उम्मीद है ये कार्यक्रम जब प्रसारित हो रहा है तो छिटपुट तो बारिश हो जानी चाहिए इस वक्त तक।
1: बिल्कुल। और अब जो है मेल जो है हम पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं अरुण जी। बहुत सारे मेल्स हमारे पास हैं। ये पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं बबलू यादव का
0: जी।
1: कहाँ से इन्होंने लिखा है, अपना एड्रेस मेंशन नहीं किया है।
0: ये अक्सर बबलू यादव जी, हालांकि हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि नियमित हैं और कभी कभी लिखते हैं लगातार, लेकिन जगह का नाम कई बार हम लोगों ने इन्हें कहा है कि आप निश्चित लिखा करें, उम्मीद है इस बार की गुजारिश आप स्वीकार करेंगे।
1: जी लिखते हैं कि 8 जून 2026 को कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल आकाशवाणी वाराणसी पर सुना आशुतोष जैन।
0: ये एक समाचार वाचक हुए आकाशवाणी के और लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, जैसे बहुत से लोग डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव यहाँ पर थे तो हमारे नाम को लोग वरुण समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। आशुतोष जी हैं हमारे यहाँ जो आरजे हैं और जो इस प्रोग्राम में थे।
1: जी आशुतोष जी और सना सलीम के साथ शाम को 7:30 बजे सुना, बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने इस कार्यक्रम को पेश किया जिसमें उन्होंने आकाशवाणी के पूरे इतिहास को बारी बारी से बताया। 9 जून 2020 को आकाशवाणी वाराणसी के प्राइमरी चैनल से फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना जिसे अरुण पांडे जी ने पेश किया था। बहुत ही शानदार लाजवाब गीत उन्होंने सुनाए, इसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। आकाशवाणी वाराणसी के सभी सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति और सांस्कृतिक योगदान हेतु हार्दिक धन्यवाद।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी का मुख्यतः सांस्कृतिक योगदान है और वो प्रोग्राम आकाशवाणी के जो 90 साल पर प्रसारित हुआ वो आपको पसंद आया। रूबरू हैं सना जी और आशुतोष जी और हमारे जो उस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता अशोक पांडे जी, उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है और जो प्रोग्राम आपने पसंद किया उसके लिए शुक्रिया। आइंदा मेल में बाकी प्रोग्राम का भी आप जिक्र करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं
1: जी। अब ये अगला मेल है मेहंदीगंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब वाराणसी से। भेजने वाले हैं रमेश कुमार विश्वकर्मा। लिखते हैं आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सप्रेम नमस्कार। मैं आपके केंद्र को ईमेल संदेश 5 महीने बाद लिख रहा हूँ।
0: लेकिन पूरे पते के साथ आपने लिखा है।
1: हाँ, इसका कारण है कि मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरी टीजीटी इंग्लिश की परीक्षा इस 4 जून को थी जिसका विज्ञापन जनवरी 2022 को निकला था। मैंने आकाशवाणी के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया है।
0: अच्छा, ये जो मेल में लिख रहे हैं इस बात को वो कह रहे हैं कि मैंने आकाशवाणी के माध्यम से
1: इसके जरिए वो

0: लोगों तक पहुंचाएं।
1: बहरहाल आप परीक्षा में शामिल हुए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जीवन में अपने रोजी रोजगार में सफल हों, हम यही आपको कहेंगे। बाकी प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखते हैं।
0: अब बात मेरे पसंदीदा आकाशवाणी केंद्र वाराणसी के कार्यक्रम के विषय में। दिनांक 8 जून 2026 दिन सोमवार, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, प्रस्तुति सना जी और आशुतोष जी की। अवसर था आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल। इसी विषय पर शाम 7:31 पर प्रस्तुतकर्ता ने लाजवाब प्रस्तुति दी। इस सफल प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाई। 9 जून को एक बार फिर से बनारसी बाबू आशुतोष जी ने गुड मॉर्निंग बनारस में आकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। उनके द्वारा प्रस्तुत सेगमेंट काशी कथा बहुत ही प्रशंसनीय होता है, बधाई। दोपहर में कार्यक्रम अंगनैया में मौसमी फल लीची के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी गई। लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार सुशील चंद्र यादव के स्वर में लचारी, निर्गुण और खेमटा काफी पसंद आया। आकाशवाणी वाराणसी ऐसे ही हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता रहे।
1: हमारा प्रयास यही होता है कि हम आपका मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करते रहें, और इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम आपने सुने और खासतौर से,
0: और बहुत अच्छा लिखा
1: जी, और संक्षेप में आपने तमाम बातें लिखी, इसके लिए शुक्रिया। और आपकी बधाई सना जी तक, आशुतोष जी तक और बाकी प्रोग्राम के लिए, बाकी अनुभाग तक पहुँच रही है।
0: अब ये अगला मेल हम पढ़ रहे हैं दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, हसीना दिलशाद, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। लिखते हैं कि सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। दिनांक 4 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सना सलीम द्वारा प्रस्तुत सुना, बहुत पसंद आया, शुक्रिया आपका। 5 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे। 6 जून को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस प्रियदर्शी द्वारा प्रस्तुत सुना। आकाशवाणी के 90 वर्ष पर पांडुरंग पुराणिक से आकाशवाणी की उपलब्धि जानने को मिली, अति सुंदर प्रस्तुति। सर कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स का स्तर गिरता जा रहा है।
1: ऐसा कैसे लगा जी?
0: केवल ना बोले,
1: अच्छा
0: वाराणसी वाइब्स का स्तर अच्छा, गिरता जा रहा है, केवल नाम बोले जाते हैं। विषय पर जो श्रोता लिखें उसी मैसेज को कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आप खुश होते हैं कि हमारे इतने श्रोता हमसे बने हुए हैं,
1: जुड़े हुए हैं जी।
0: ऐसा कुछ नहीं है, श्रोता का नाम कार्यक्रम में शामिल हो जाता है वो रेडियो बंद कर देते हैं।
1: बहुत सी चीजें हम लोग भी समझते हैं और लगता है देखा है, यानी कुछ श्रोताओं के बीच जाकर के इन्होंने देखा है,
0: देखा है।
1: ये हम भी जानते हैं कि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं वो प्रोफेशनल हैं, वो तमाम केंद्रों के या सोशल मीडिया पेजेस के हर जगह विजिट करते हैं, हर जगह फरमाइशें भेजते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि रेडियो के प्रोग्राम से इतने सारे लोग जुड़ते हैं, कुछ देर के लिए ही सही, वरना आज के समय में इतनी मसरूफियत है कि कहाँ इन चीजों के लिए वक्त आदमी निकाल पाता है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर वो टॉपिक बेस्ड प्रोग्राम है तो उसके बारे में जो लोग राय लिखें, और श्रोताओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो लिखेंगे ही, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए
0: जी। आगे लिखते हैं कि 7 जून को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत अशोक कुमार की लिखी झलकी गए काम से सुनी, अच्छी लगी। 7 जून को लोक रंग का कार्यक्रम अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी लोकगीत पसंद आए। 8 जून को गुड मॉर्निंग बनारस के अंतर्गत आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष प्रस्तुति सना सलीम और आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना, मालूमात से लबरेज रहा, अति सुंदर प्रस्तुति। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र की हमारी तरफ से हार्दिक बधाई।
1: दिलशाद जी का मालूमात जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है। खासतौर से 90 वर्ष से जुड़े जो प्रोग्राम थे आप सबने उसके बारे में जिक्र किया है, बहुत अच्छी बात है। और रेडियो का ये सफर आप सबके सहयोग से और आप लोगों की सहभागिता से ही कई हम शतक मनाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो शुभकामनाएं आपको, रेडियो से जुड़े रहें और अगले मेल में जरूर बाकी बातें भी लिखें
0: जी। अब देखते हैं कि ये अगला मैसेज किसका है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतन माला का
1: जी।
0: लिखते हैं आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर होते हैं। आकाशवाणी वाराणसी को केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो संपूर्ण भारतवर्ष में ऑनलाइन के माध्यम से सुना जाता है
1: जी। जब से ये इंटरनेट हो गया, ऐप और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, तो हमारे पूरे देश में श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और विदेशों में भी बहुत सारी जगहों पर हमसे जुड़े हुए कई एक श्रोता हैं जो प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। ये रेडियो की महत्ता और उसकी शक्ति को दर्शाता है।
0: आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने पर आप जो विशेष मान्यवरों से भेंट वार्ताएं सुनवा रहे हैं वो बहुत अच्छी लग रही है, और हमारी भी आकाशवाणी और बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। हम बचपन से रेडियो सुन रहे हैं, लगता है इन्होंने उसी दिन सुन के ही मेल किया है।
1: जी
0: जी। 7 जून को अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत लोकरंग कार्यक्रम सुनकर मजा आ गया। लोकगीत कलाकार बुल्लू यादव जी, शारदा सिन्हा जी, हीरा लाल यादव जी के बहुत ही शानदार लोकगीत सुनने को मिले, और उनके बारे में

0: अरुण पांडे जी द्वारा जानकारी भी हमें बेहद पसंद आई। इसके अलावा गुड मॉर्निंग बनारस, हेलो फोन इन फरमाइश और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, ये कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं
1: जी। खासतौर से जिन कलाकारों का, लोकगीत के कलाकारों का आपने नाम लिया, आकाशवाणी को एक तरह से ये श्रेय है कि तमाम कलाकारों की शुरुआत में रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के ही विभिन्न केंद्रों से होती थी और खासतौर से लोकगीत, सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत के जो आर्टिस्ट हुए उनकी प्रस्तुतियों को आकाशवाणी ने अपने केंद्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। ये विधाएं समृद्ध हुई, ये परंपरा अभी भी चल रही है और आपने 90 वर्ष पर बहुत सारे प्रोग्राम सुने और उनका जिक्र किया, आपको प्रोग्राम पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही साथ बनाए रखें और मेल लिखते रहें।
0: ये मेल हमें कर रहे हैं, लिखते हैं, मेरा नाम रामा शंकर यादव है
1: जी।
0: मैं रासीपुर, बहादुरपुर, सिरकोनी, कबूलपुर, जौनपुर से हूँ।
1: पता पर्याप्त है लेकिन ये सारी जगहें पहली बार सुनने को मिल
0: हाँ।
1: रही हैं।
0: कई बार मेरे द्वारा किए गए मैसेज को पढ़ा नहीं गया, मुझे इस बात का बहुत दुख है।
1: मैसेज या फिर ये ईमेल इस प्रोग्राम में, हो सकता है उस प्रोग्राम की बात कर रहे हूँ।
0: कई सारे श्रोता वाराणसी वाइब से जुड़े हैं
1: जी
0: जी, कृपया ध्यान दें और गांव में रहता हूँ, मुझे जो है आकाशवाणी,
1: अच्छा जो है वाले ये भी हैं
0: आकाशवाणी मुझे बहुत पसंद है। मैं वाराणसी केंद्र के ज्यादातर जो है कार्यक्रम सुनता हूँ।
1: अच्छा हाँ, तो बधाई आपको।
0: वैसे तो मैं किसी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ और आप लोगों से उम्मीद रहती है कि आप लोग मेरे मैसेज को रीड करेंगे।
1: किसी के साथ साथ पढ़ते हैं
0: और मेरा नाम आएगा,
1: स्कूल में पढ़ते हैं यानी दस ऐसे हमें लगता है पढ़ाते होंगे या कुछ और लिखना चाह रहे हैं और गूगल या चैट जीपीटी ने कुछ और लिख दिया।
0: चैट जीपीटी, कृपया आप लोगों से अनुग्रह है कि आप लोग मेरे द्वारा किए गए मैसेज को अवश्य पढ़ें। अच्छा,
1: तो हम लोग
0: मेल तो हमने पढ़ लिया
1: जी,
0: और मैसेजेस अगर
1: मैसेज वहाँ वाराणसी वाइब्स में आते
0: हाँ।
1: हैं और वहाँ पर जो विषय बताए जाते हैं निर्धारित समय पर उसी वक्त, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो व्हाट्सएप पे या
0: फरमाइश करते हैं,
1: बाकी जो है वहाँ 24 घंटे मैसेज करते
0: हाँ।
1: रहते हैं। आपको ये बता दें कि जो भी इस तरह के लाइव प्रोग्राम है वहाँ पर उसी वक्त आपको फरमाइश भेजनी होती है, तो दिन भर आप भेजेंगे तो उस समय कैसे कोई पढ़ेगा जब वो प्रोग्राम का वक्त ही नहीं रहता है। तो आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा जिसमें आप बताएंगे कि आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं और थोड़ा अपना लिखा हुआ खुद चेक कर लेंगे ताकि आपका जो मजमून है वो सही तरीके से शामिल हो सके। इस मेल के लिए शुक्रिया
0: जी। अहमदनगर बजरडीहा से लिख रहे हैं बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी। नमस्ते, आदाब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 7 जून की तारीख को हेलो फोन इन फरमाइश बहुत ही अच्छा लगा। सर, हमारी ये गुजारिश है कि आप थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें, प्लीज प्लीज। आपका श्रोता बदरुद्दीन अंसारी।
1: इस समय साउंड कैसे बढ़ाया जा सकता है, लगता है आजकल जैसे पिछला भी मेल था, श्रोता उसी समय सुनते हैं और उसी प्रोग्राम के बारे में तुरंत इस वाले पे मेल लिख देते हैं। पूरा हफ्तेवार प्रोग्राम सुने, प्रोग्राम के बारे में तफसील से हमें लिखे, हमें खुशी होगी। और ये जो बात है, हम लोग लेवल का ध्यान रखते हैं हमारे यहाँ जब प्रसारण होता है और रिकॉर्डिंग में भी खासतौर से हम तो देखते रहते हैं कि हमारा प्रसारण है वो ठीक ठाक आए। कई बार फोन लाइन के चलते श्रोताओं की आवाज या तो कट जाती है, धीमे आती है, ये दिक्कतें नेटवर्क के चलते होती हैं। आप सभी हमारे पुराने श्रोता हैं, कार्यक्रम सुनते रहिए और बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र करिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं
0: जी। रैदा आजमगढ़ से लिख रहे हैं विजय कुमार यादव, रेडियो के 90 साल बेमिसाल।
1: ये भी जो है थोड़ा सा नए श्रोता है लगता है
0: जी। बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं, उस समय देवकी नंदन पांडे
1: जी,
0: रामानंद प्रसाद सिंह जैसे न्यूज रीडर को सुना है। आपके कृषि जगत कार्यक्रम में हरिराम द्विवेदी और अन्य प्रस्तुतकर्ता उसमें जान फूंक देते थे। ज्ञान विज्ञान, सामाजिक शिष्टाचार, मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुनने को मिलते थे। आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की ढेर सारी बधाई।
1: आपने तमाम कुछ एक पुराने ब्रॉडकास्टर्स का जिक्र किया, उनको हम लोगों ने भी बचपन में सुना है, हरिराम जी से तो बड़ा परिचय रहा, हाल तक वो थे भी, तो रेडियो के ये सभी आइकन रहे, इनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आकाशवाणी की वो जो परंपरा है, हम लोग भी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी श्रोताओं के सहयोग से वो जो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की एक समृद्ध सुदीर्घ परंपरा है इतने वर्षों की, वो आइंदा वक्त में भी जारी रहे और इसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। कार्यक्रम सुनते रहें, प्रतिक्रियाएं यूं ही भेजते रहें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका।
0: ये अगला मेल हमें मिला है अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से, बैंजो मास्टर
1: ये
0: सुनील
1: बैंजो
0: यादव
1: बजाते हैं जी, लेकिन
0: और
1: हमारे
0: शिव कुमार
1: प्रोग्राम में मेल
0: यादव
1: पर वो बैंजो भेज नहीं सकते बजा करके।
0: जी लिख रहे हैं, पांडे सर और मैम को सर स्नेह नमस्कार, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। बहुत दिन बाद हम इस कार्यक्रम में पत्र लिख रहे हैं क्योंकि

0: कि मैं खुद एक बैंजो कलाकार हूं तो शादियों में व्यस्त था, 46 शादी में बुक था।
1: क्या कहने, बहुत
0: वाह
1: बधाई, मुबारकबाद, नजर न लगे आप अगले बार 460
0: जानकारी में इजाफा हो
1: शादियों
0: गया।
1: में बुक हो जाए। हाँ, सना जी को जानकारी में इजाफा हुआ,
0: हाँ,
1: तो आप इंतजार कीजिए।
0: जी, तो समय थोड़ा सा मिल नहीं पा रहा था। अब हम घर में थोड़ा बहुत काम के साथ फ्री रहते हैं तो लगातार कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और रहेंगे भी। कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं। शनिवार 6 जून को कार्यक्रम लेकर आए अरुण पांडे, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा। रविवार को 12 बजे से 1 बजे के बीच पुनः सुने, खेतों में काम करते हुए कैसे समय खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और कार्यक्रम लोक रंग में पारंपरिक गीत मन को भा गए। प्रस्तुतिकरण हेतु आदरणीय अरुण पांडे सर जी को सहस्नेह
1: बहुत बहुत शुक्रिया। गीत संगीत से जुड़े रहे, बैंजो बजाते रहे, आजकल इतना व्यस्त है कि क्रिएटिविटी में लोगों के लिए इंटरनेट और मोबाइल के चलते वक्त नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, कला से भी जुड़े हैं, रेडियो से भी जुड़े हैं, ये खुशी की बात है। जब भी वक्त मिले लिखते रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए।
0: जी, ये हमारे नियमित श्रोता हैं रतिना त्रिपाठी, कोटवां कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से लिख रहे हैं, 20 मई को कानून और हम में डिजिटल अरेस्ट पर दी गई जानकारी अच्छी लगी। 19 मई को खेल पत्रिका में नन्हे सिंह से अशोक पांडे जी की वार्ता, साथ में चंदन सिंह कबड्डी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिली।
1: जी,
0: 18 मई को गुड मॉर्निंग बनारस में सना द्वारा अन्य जानकारियों के साथ बात जरूरत की सेगमेंट में चश्मा के प्रयोग और सावधानियों पर दी गई जानकारी अच्छी लगी। इसी कार्यक्रम में पूजा ने 19 मई को अन्य जानकारियों के साथ जेम्स ऑफ काशी में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जो जानकारी दी वो भी बहुत अच्छी लगी। इसी कार्यक्रम में 21 मई को शुचि उपाध्याय का कार्यक्रम भी अच्छा लगा। इनका घाटों वाला सेगमेंट बहुत जानकारी भरा होता है, इस बार निवानी घाट और इससे पहले चेत सिंह घाट पर दी गई जानकारी अच्छी लगी। 24 मई को एक बार फिर सना द्वारा दी गई जानकारी, गाड़ी में हीटिंग से होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, ये बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक था। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 24 मई को पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का गायन सुनकर दिल्ली वाराणसी की रेल यात्रा बहुत ही सुगद हो गई।
1: यानी ये पूरे अपनी यात्रा के दौरान रेडियो के प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने और खुशी हुई कि इतने,
0: और अब तो बनारस प्रोग्राम में भी ये मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है। इसी कार्यक्रम में 19 मई को कमल कुमार का बांसुरी वादन, तबला संगत श्याम किशोर मिश्र जी की, और 20 मई को रविंद्र नारायण का सितार वादन, संगत डॉक्टर आशीष कुमार मिश्र जी की, बहुत अच्छा लगा। 24 मई को, आज इतवार है, कार्यक्रम में हकीम की पतलून एक बार फिर सुनकर परिवार सहित आनंद लिया, और उसी दिन एक ही फिल्म से मैं दिल चाहता है की जानकारी सना द्वारा एक बार फिर सुनना अच्छा लगा।
1: बहुत सारे प्रोग्राम आपने सुने, उनका जिक्र किया, आपकी बधाई तमाम प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं।
0: और ये आज का हमारा आखिरी मेल जो है वो हम शामिल कर रहे हैं, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। लिखते हैं, 21 अप्रैल को नैना वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत सुहाने तराने सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। प्रस्तुत करने का खूबसूरत अंदाज,
1: क्या कहने,
0: और गाने बहुत शानदार थे
1: जी।
0: अच्छी प्रस्तुति के लिए नैना वाल्मीकि को बहुत बहुत बधाई। 3 मई को चित्रा दुबे द्वारा प्रस्तुत लोकरंग सुना, बहुत प्यारे लोकगीत सुनने को मिले, इसके लिए चित्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी दिन विविध भारती पर सीधी साधी मंजूषा द्वारा प्रस्तुत वाराणसी वाइब सुना जो बहुत प्यारा लगा। प्रतिदिन नए लोगों की प्रस्तुति अलग अलग विषय पर होती है, सुनकर अच्छा लगता है। अच्छी प्रस्तुति के लिए मंजूषा जी को बहुत बहुत बधाई। 4 मई को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, हम लोगों को पसंद आया, उनकी प्रस्तुति भी बहुत शानदार होती है, इसके लिए अंजना दीदी को दिल से धन्यवाद। 5 मई को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप पर आधारित था सुना, बहुत प्यारा लगा, उनकी भी प्रस्तुति बहुत लाजवाब होती है, पेश करने का खूबसूरत अंदाज बहुत प्यारा लगता है, इसके लिए अंजू दीदी को बहुत बहुत
1: आपकी बधाई। अंजना जी तक, अंजू जी तक पहुंच रही है तमाम प्रोग्राम के लिए, और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, खासतौर से मंजूषा जी और
0: सीधी साधी,
1: हाँ, और नैना जी तक भी आपकी बधाई इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है। यूं ही सुनते रहिए और मेल हमें भेजते रहिए।
0: मेल आपको हमें भेजना है हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा
1: और आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अरुण पांडे
0: और सना सलीम को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: ये वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे एक छोटी सी अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति थी अरुण पांडे और सना सलीम की। हम आकाशवाणी

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:35 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपने रेडियो हम सफर नीलू तिवारी के साथ। तो श्रोताओं, सबसे पहले कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जिन कलाकारों के लोकगीत आपको हम सुनवाने वाले हैं, पहले आपको हम उनके नाम बता दें। आज के कलाकार हैं दीनानाथ और छोटेलाल पटेल। इनके गाए लोकगीतों को सुनने के लिए आपको हमें मैसेज करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905519918 पर। सबसे पहले कलाकार के नाम, इसके बाद अपने नाम और अपने एड्रेस लिखें। और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी फरमाइश एक बार ही भेजें, जैसे हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ सके। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले लोकगीत का। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए दीनानाथ के स्वर में देवी गीत। आप सभी श्रोताओं के नाम हम इस लोकगीत के बाद बताएंगे।

अभी आपने सुना दीनानाथ के स्वर में देवी गीत, और इस देवी गीत को सुनना चाहा था हमारे इन श्रोताओं ने। ग्राम पंचायत सिरसला फवार चौक जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमन सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और सचिन चौहान रामसरा वाले और उनके समस्त सोनगरा परिवार। दीनानाथ सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया उत्तर प्रदेश से, इसी लोकगीत को सुना चाहा था। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल यशफ अब्बासी, वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी और उनके परिवार में उज्जवल दास मानिकपुरी और उनके पूरे परिवार के सदस्य। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंग मुड़त और चेतन नाहटा। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। जगमाल सिंह डागला रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनके समस्त डागला परिवार। छोटेलाल पटेल ग्राम चक फुटही असनाव बाजार जिला भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार यादव और सानवी यादव। दीनानाथ के स्वर में जो लोकगीत आपने सुना, इसी लोकगीत को सुनना चाहे हैं हमारे इन श्रोताओं ने। चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर।

0: फरमाइश राम सकल चौधरी की है। दंतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा। राजा तालाब वाराणसी से रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु प्रीत, प्रांजल प्रकृति, ग्राम मेहंदी गंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब से इन्होंने फरमाइश भेजी है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई और बागरी प्रभुलाल बागरी। रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी लोकगीत को सुनना चाहा है हमारे श्रोताओं ने। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा लेकिन एक छोटी सी अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो।
3: 0542227658।
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकरंग कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत छोटेलाल पटेल के स्वर में। इनके स्वर में लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत। श्रोताओं के नाम इस गीत के बाद।

देशभक्ति गीत छोटेलाल पटेल के स्वर में आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा था। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारवी और प्रणव सांवले ने। बड़ापम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजीता बमार कंडे, संजय मारकंडे और बेबी गड्डू किट्टू। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान ने। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासू, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, ये श्रोता है हमारे बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन माही सेन। इसी लोकगीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार और आदर्श सार्थक, अलौकिक और उनके समस्त चंसौलिया परिवार ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल ने। इसी लोकगीत को सुनना चाहा है नायापारा भिरई जिला बालोद उत्तर छत्तीसगढ़ से, क्षमा कीजिएगा, बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर और पप्पू ठाकुर ने। दीनानाथ पटेल के इस लोकगीत को सुनना चाहा है बाबनागर ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर केला।

कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से सुना चाहा था इस लोकगीत को कोमल सेन ने, तोसर सेन और विनायक सेन ने। ग्राम चौहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और कमल साहनी ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। इसी लोकगीत को सुना चाहा है उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह। चौसा गोला बक्सर से इस लोकगीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने, जयराम बिंद, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रदुमन और प्रीतम कुमार ने। किनरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने ये लोकगीत सुनने के लिए फरमाइश भेजी है। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने। सुकुलपुरा वाराणसी से ये श्रोता है हमारे परवेज अहमद। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये श्रोता हमारे हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तहसील वरुण जिला अमरावती महाराष्ट्र से ये हमारे श्रोता हैं मुकेश कासलेकर, राजेश सोनी। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से हमारे श्रोता हैं अनीस राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी लोकगीत को सुना चाहा है मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी ने। दिल्ली बिहारी कॉलोनी सहदरा से हमारे ये श्रोता हैं तुलसी मस्कीन, विना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केसु रिधान खुराना। इसी लोकगीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह, पल्लवी साह, प्रखर साह, कुशल साह, नितिन साह, नीति साह, सुरभि साह, अश्विन साह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी साह ने। दीनानाथ रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसूल कमर राही, बेगम अख्तर, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा फरीन ने। इसी लोकगीत को सुना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्ण धीमान, कृष्ण धीमान, राहुल कोमल, शुभम, प्रियंका, आंचल कुंज, पर्व प्रमीण धीमान और चिराग रजत राजेश धीमान। मैडम क्षमा कीजिएगा, महुआ बनर्जी, अमितेश कुमार तिवारी, ये हैं करनाल करनई बलिया से। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ये हमारे श्रोता हैं जुबैल अली खान, सबिहा जुबैर और अंजुमन खान। नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल जी। श्रोताओं अब क्योंकि वक्त हो चला है अब कार्यक्रम समाप्त करने का और दीजिए अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की। अपनी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी को कार्यक्रम लोक

रंग। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: Good afternoon. This is Akashvani, and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeals to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrae were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: Kolkata mein INS Dhunagiri, INS Sanshodhak aur INS Agrae ko Bhartiya नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ

0: समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: Nalanda Vishwavidyalaya ne शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है. दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है. मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया.
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
0: Caribbean Sagar mein डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है. वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है. वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है. इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना. टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं. भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है.
1: The Prime Minister mentioned Meghalaya's root bridges, saying these root bridges take decades to take shape. He shared that India has now applied to have Meghalaya's root bridges included in the UNESCO World Heritage Site Network. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमरीका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसमें लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही

0: अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंध

0: को सींचा है। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज की बातचीत का विषय है गठिया रोग, सावधानियां और सही इलाज। इस विषय पर बातचीत करेंगी डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय से शिखा श्रीवास्तव।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आरोग्यम, अपनी रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसने लाखों लोगों के जीवन की रफ्तार को धीमा कर दिया है और बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। जी हाँ, आरोग्यम में आज हम जानेंगे गठिया के बारे में। आखिर क्या है ये गठिया, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं, क्या इससे बचाव संभव है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी को, और ये जाने माने चिकित्सक हैं शहर के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले तो नमस्कार, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके इस स्टूडियो में बैठा हूँ। प्राउड फीलिंग आ रही है मुझे, और मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैं कुछ जागरूकता का काम करने के लिए आगे प्रेरित हो रहा हूँ।
1: जी डॉक्टर साहब, फोन आते होंगे श्रोताओं के, इससे पहले हम ये जान लें कि ये आखिर गठिया होता क्या है।
2: जी सबसे पहले
1: सर रोकेंगे, आपको एक फोन आ रहा है।
2: ओके,
1: हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
3: मैं डॉक्टर शिल्पा भूषण बोल रही हूँ।
1: आरोग्यम में आपका स्वागत है। आज डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं और गठिया से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आपकी क्या समस्या है, डॉक्टर साहब से सीधे बात करें।
3: जी
2: सबसे पहले तो नमस्कार, बताइए।
3: हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार जी, बताइए।
3: सर ये मैं जब सुबह सो के उठती हूँ
2: जी,
3: तो बहुत ज्यादा हथेली के जो जितने जॉइंट्स हैं उंगलियों के, बहुत ज्यादा स्टिफनेस टाइप का फील होता है, पेन होता है, लगता है जैसे अब कुछ होगा नहीं। धीरे धीरे फिर वो रिलैक्स हो जाता है।
2: ओके, और ये कब से है आपको?
3: ये लगभग हमको साल भर से हो रहा है।
2: और आपकी एज कितनी होगी अराउंड, अगर आप बताना चाहें?
3: 45 अराउंड 45।
2: ठीक है, देखिए जो एज है आपकी वो भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में है जब गठिया की शुरुआत होती है। बट बहुत बार चीज़ों में और लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है गठिया और जॉइंट पेन को लेकर के, तो उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिस जो अगर पॉजिटिव या इस तरीके की फाइंडिंग्स आती हैं तो फिर हम लोग एक डेफिनेटिव कहते हैं कि नहीं, इनको गठिया है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जिसमें कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है वह है सुबह उठ करके छोटी उंगलियों के और पंजों के, पैरों के, बाकी शरीर के जॉइंट्स में जकड़न। और ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है ये एक गठिया की तरफ इशारा करता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। तो इसलिए प्रॉपर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करानी चाहिए, और प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद में संभवतः हो सकता है कि गठिया हो। और अगर गठिया है तो प्रॉपर इलाज बहुत ज़रूरी है रैदर देन लेट होने से, क्योंकि आगे अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सही इलाज या सही समय पर इलाज शुरू ना होने की वजह से उनके हाथ पैरों में अलग तरीके के डिफॉर्मिटी आने लगती हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको प्रॉपर एक बार ट्रीटमेंट या इलाज शुरू करवाना चाहिए प्रॉपर टेस्ट के साथ में। देखिए जेनेटिक का जहां तक सवाल है, जरूरी नहीं कि हमेशा जेनेटिक हो, बट हाँ जिनके पेरेंट्स में ये हिस्ट्री या फिर फैमिली में है वहां पर डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि माँ को है तो बच्चे को होना ही होना है, या माँ को नहीं है तो बच्चे को नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो कोरिलेशन है, बट फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी आरोग्य में फोन करने के लिए। हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग जानेंगे कि ये गठिया होता क्या है।
2: जी सबसे पहले मैं एक चीज, एक मिथ कहें, कंसेप्ट या जो भी चीज कहें, क्लियर करना चाहूंगा कि लोग आजकल के जमाने में लोग ज्वाइंट पेन को गठिया का नाम दे दे रहे हैं
1: जी,
2: जबकि ऐसा है नहीं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूं, जैसे उम्र बढ़ती है तो बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, बाल झड़ते हैं, उसी तरीके से जॉइंट्स पर भी उम्र का असर आता है
1: जी।
2: उम्र बढ़ने की वजह से अगर जॉइंट्स पे असर आता है तो उसे हम अलग टर्म, अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर गर्दन पे असर आ गया तो उसे हम नाम दे दिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर पे आ गया तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस, और घुटने में या जॉइंट्स पे आ गया तो उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र बढ़ने

0: की वजह से, लेकिन कभी कभार उम्र से पहले ही जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाते हैं।
1: जी।
0: 2-4 साल के बच्चों को दर्द शुरू हो जाता है, 14-15 साल की लड़कियों को, और उम्र से पहले जिस पे एज का फैक्टर नहीं है, ऐसे कंडीशन में ऑटो इम्यून कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसे हम गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि आजकल 4 साल के बच्चे को भी हो जा रहा है, युवाओं में भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और ज्यादातर युवा इस दर्द से परेशान हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है या जोड़ों में दर्द है, गर्दन की समस्या है, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
0: शरीर में एक जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम क्या है, ये हमारी शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये वो प्रणाली है, वो शक्ति है हमारे शरीर की, जो हमारे शरीर को फॉरेन बॉडी हमें अटैक करता है उससे प्रिवेंट करती है। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगे तो इसे ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं, और ये अलग अलग चीज़ों को असर करती हैं, जिसमें कि जॉइंट्स सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आते हैं, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस। यही चीज हमारे बालों को असर कर सकता है, स्किन को असर कर सकता है, इंटेस्टाइन, पेट को असर करता है, मतलब आंखों को असर करता है। तो हमें सही समय पर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, ताकि उन चीजों को हम आराम से आगे बचा सकें।
1: अच्छा, सही समय पर डायग्नोस करने की जो बात हो रही है, तो कैसे हम पहचानें कि ये सामान्य थकान है, कमजोरी है, या ये जो दर्द है ये गठिया का रूप ले रहा है?
0: जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, कि मेन तो पहले समझना जरूरी है कि ये कब ये चीज़ हो रही है और क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है। तो शुरुआत में ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि लोगों को नॉर्मल लगता है ये जोड़ों का दर्द है, नॉर्मल बेसिक थकान या बाकी सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन जैसे जैसे एक टर्म आता है, मॉर्निंग स्टिफनेस, जो हमारी पिछले लिसनर ने भी ये सवाल पूछा था, सुबह में जकड़न हो जाती है।
1: जी।
0: ये जो जकड़न है, ये आमतौर पे एक टाइम लिमिट होता है, आधे घंटे, एक घंटे से कम है या उससे ज़्यादा है। इस टाइम लिमिट के ड्यूरेशन पर भी हम लोग चेंज करते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशन आ रहा है या एज रिलेटेड है। प्रॉपर टेस्ट कराइए, टेस्ट में काफ़ी बार चीज़ें आती हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि टेस्ट में कभी कभार सेरो पॉजिटिव सेरो नेगेटिव केसेस भी आते हैं, बट टेस्ट कराने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये गठिया है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन की कमी है, एज रिलेटेड चेंजेस हैं, या जो भी कंडीशंस हैं। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है इसमें।
1: जब टेस्ट पर बात कर रहे हैं सर, तो आप ये बताएं कि टेस्ट कौन से कराने चाहिए, अगर ऐसी कंडीशन समझ में आ रही है तो?
0: जी देखिए, पहले तो ये चीज़ है कि टेस्ट स्पेसिफिक होते हैं कंडीशन वाइज, कि हमें कौन से टेस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कराने हैं, कौन से टेस्ट हमें एंकलोजिंग में कराने हैं, या अलग अलग प्रकार की चीज़ों में आते हैं। बट सिर्फ टेस्ट ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसमें क्लिनिकल फीचर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि पेशेंट क्या बता रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसके आधार पर टेस्ट डिफाइन किया जाता है। बहुत लोग आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ गया तो कह देते हैं गठिया है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्लिनिकली लग रहे हैं कि वो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया के पेशेंट हैं। उनकी अगर टेस्ट किया जाए तो 80% पेशेंट में रिपोर्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगी, आर्थराइटिस पॉजिटिव आएगी, बट ऐसे कंडीशन में भी अराउंड 20-30% पेशेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इन पेशेंट्स को कहते हैं सेरो नेगेटिव आरए पेशेंट्स। ऐसे मरीज जो गठिया के मरीज तो हैं बट रिपोर्ट नेगेटिव आती है। और दूसरे कंडीशन अपोजिट ये भी है कि अगर मेरे पास 100 मरीज आ रहे हैं जिनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगर एक्चुअल कंडीशन में एग्जामिन किया जाए तो सिर्फ 80% लोगों को ही गठिया होगी, 20% को रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बावजूद गठिया नहीं होती है। तो रिपोर्ट पे ही डिपेंड नहीं करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस कंडीशंस।
1: जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और ये जानने की इच्छा हो रही है कि क्या गठिया सभी को हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ, या हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल इससे प्रभावित होते हैं हम?
0: जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या है ऐसा जो कि हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है ऑटोइम्यून कंडीशन। किसी को आंख में इन्फेक्शन हुआ, या पेट में इन्फेक्शन हुआ, या यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद से जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया, ये सब रिएक्टिव आर्थराइटिस, किसी चीज की वजह से बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर गया, ऑटोइम्यून कंडीशन डेवलप हो गई। इसी तरीके से बहुत बार स्पेसिफिक कारण होते हैं, बट इन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप हेल्दी डाइट, हेल्दी खान पान, प्रॉपर डेली रूटीन और सब कुछ प्रॉपर तरीके से रखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा तो आपको गठिया या आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत कम होंगे।
1: अच्छा, गाँव में अक्सर सुनने में आता है कि गठिया हो गया या बाई का दर्द, तो ये बाई का दर्द क्या होता है, ये किसको कहते हैं?
0: जी, गठिया या गठिया बाई शब्द जो टर्म यूज किया जा रहा है गांव में, ये आमतौर पे यही ऑटोइम्यून कंडीशन ही है जो धीरे धीरे

0: ऐसा रूप ले लिया है जिसमें जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगी। ये वही चीज़ है, गठिया ही अर्थराइटिस ही है, एक डेवलप्ड फॉर्म में, एक एडवांस स्टेज में, जहाँ पर कि जॉइंट्स में डैमेज शुरू हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब, सुनने में आता है, भ्रम है या सच्चाई, ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या खट्टा खाने से गठिया रोग हो जाता है?
0: जी, अगर मैं इसको आगे डिटेल में बताना चाहूँ तो ऐसा नहीं है, खट्टा खाने से गठिया नहीं होता है, बट हर एक स्पेशलिटी के अपने अपने ट्रीटमेंट का अपना पैटर्न होता है। तो सिर्फ गठिया में ये सब चीज़ें खाना नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप आराम से जो मर्जी चाहे खाना खा सकते हैं, बस आपको वेट पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, वज़न बढ़ेगा तो तकलीफ बढ़ेगी।
1: अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है तो इसमें फिजियोथेरेपी, योग या व्यायाम का कितना रोल होता है?
0: जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं एक शब्द में बताना चाहूँ तो इसका जवाब यही होगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, बट हमें ये भी ज़रूरी है समझना कि हमें करना कब है। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, जब ये गठिया का अटैक एक तरीके से आता है, जब जोड़ों में दर्द बढ़ जाते हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करें, दर्द की दवाई खाने के बाद भी थोड़ी देर के लिए सिर्फ आराम है, उसके बाद तकलीफ बढ़ जाती है, जब ऐसे कंडीशंस होते हैं, इस टाइम पे नो एक्सरसाइज, नो मसाज। क्यों? क्योंकि ये हमारे जॉइंट को अभी अटैक किया हुआ है, इसलिए ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज, कोई भी योग प्राणायाम को हम लोग मना करते हैं, बॉडी को आराम देना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए जब तक चीजें कंट्रोल ना हो जाए।
1: क्या बढ़ा हुआ वजन भी आर्थराइटिस का कारण बन सकता है?
0: जी, अगर मैं इसको
1: सर, इस प्रश्न
0: जी
1: का उत्तर जानेंगे इस फोन के बाद।
0: जी
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रही है?
2: हम बलिया से बोल रहे हैं, आशा श्रीवास्तव।
1: अच्छा, बलिया से। आशा जी, आरोग्यम में आपने फोन किया है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज गठिया पर बात हो रही है और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब से आप बात करें और अपनी समस्या बताएं।
0: जी नमस्कार, बताइए जी।
2: जी नमस्कार सर, कह रहे हैं कि हमारे पैर के जो पीछे वाला एड़ी होता है
0: जी,
2: वो हड्डी निकल गया है और चलने में बहुत दर्द करता है।
0: तो ये आपको कब से हो रहा है?
2: 3-4 साल हो गया।
0: और आपकी उम्र और वजन कितना होगा लगभग?
2: वजन तो 60 है, एज 73 है।
0: ओके, तो देखिए, आपकी उम्र थोड़ी सी नॉर्मल से ज्यादा है, 70+ है, तो ऐसे कंडीशन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपना विटामिन डी या न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कराएंगे तो होपफुली वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखेंगी। तो ऐसे कंडीशन में विटामिन्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने से ही काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। और जो आप बता रही हैं हड्डी बढ़ा हुआ है, उसे हम लोग, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, आपको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस हो सकता है। एक बार आप चेक करेंगे तो शायद, होपफुली, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चांसेस ऐसा हो सकता है, तो देखी जाएंगे चीज़ें। बट ऐसे कंडीशन में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और विटामिन्स, यही चीज़ है जो आपको मेन रिस्पॉन्स देगी। इसको गठिया नहीं कहेंगे, बट हाँ गठिया का एक छोटा सा प्रारूप होता है जो एक शॉर्ट कोर्स में ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आरोग्यम में फोन करने के लिए। हाँ सर, हम बात कर रहे थे कि बढ़ता हुआ वजन क्या गठिया का कारण हो सकता है?
0: जी, बढ़ता हुआ वजन गठिया का कारण नहीं होता है, लेकिन गठिया में अगर वजन बढ़ जा रही हैं चीज़ें तो आपकी कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ सकती हैं। तो कहने का मतलब, क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी जॉइंट है, उस जॉइंट पे अगर आपके बॉडी का वेट लोड एक्सेस हो रहा है, तो जॉइंट पे प्रेशर जब बढ़ता है तो जॉइंट डैमेज होता है। और अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि ऑलरेडी आपके जॉइंट्स को डैमेज कर रहा है, लेकिन वजन बढ़ेगा तो हर जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा जो ऑलरेडी घायल है, तो उनका डैमेज और ज्यादा रफ्तार से होगा और प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, वो इसी के शिकार हुए होते हैं।
1: अच्छा, और बहुत ज्यादा ठंड होने पर या बहुत ज्यादा गर्मी से भी क्या असर पड़ता है इस पर?
0: जी, देखा गया है आमतौर पर जब ठंड या गर्मी नहीं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कहेंगे इसको हम लोग, या तो ठंड से गर्म में जा रहे हैं, गर्म से सर्दी में जा रहे हैं, कोई अगर टेम्परेचर जब चेंज होता है तो हमारे बॉडी के जॉइंट्स के आसपास के जो वेसल्स है और जो जॉइंट्स के फ्लूइड होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक बॉडी का नॉर्मल फिनोमिना है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे बॉडी के जॉइंट्स के पास के जो कैप्सूल है उसमें कंस्ट्रिक्शन, स्ट्रेचिंग, इस तरह की चीजें होती हैं, तब वो पेन बढ़ जाता है नॉर्मल कंडीशन में।
1: सर, एक प्रश्न का उत्तर और जानना चाहेंगे कि जब किसी को गठिया या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो वो चूर्ण है, देसी इलाज करते हैं, है ना, तो क्या ये देसी इलाज और ये चूर्ण वगैरह ये सब कारगर होते हैं? एक फोन आ रहा है सर। हेलो। हाँ जी
2: जी मैं बलिया से बोल रही हूँ, शिखा श्रीवास्तव।
1: आरोग्य में आपने फोन किया है।

0: बहुत बहुत स्वागत
1: जी
0: है जी। डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी आज हमारे बीच में हैं। आप बात करें,
1: जी
0: क्या जानना चाहती हैं?
1: हेलो।
2: हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए
1: ये सर कह रहा कि मेरा 17 साल का बेटा है, तो
2: जी।
1: जब सुबह सो के उठता है तो उसके गर्दन में दर्द रहता है और उसी को पकड़े हुए पूरा राइट साइड में सर में दर्द रहता है।
2: और जब सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे करवट बदलना कैसा होता है?
1: ऐसे तो सब नॉर्मल रहता है, बस सर में दर्द उसका पकड़ रहता है, गर्दन से लेके और
2: जी
1: सर में एक साइड में राइट साइड में दर्द रहता है।
2: देखिए, अगर और कितने टाइम से बता रही हैं, कब से है ये?
1: 4-5 महीने से है।
2: 4-5 महीने से है। देखिए, आपके बच्चे की एज 17 साल है और 4-5 महीने से चीजें चल रही हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि या तो सडन हाइट या वेट का बढ़ना भी कभी कभार इसमें कारण होता है, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी को बताता है कि उस तरफ या तो वाइटमिन्स वगैरह की कमियाँ या ऐसी कोई चीज़ें। बट हाँ, ऐसे कंडीशन में जो आपने एज फैक्टर बताया है, एक ये क्रूशियल एज है जिसमें कि कुछ अर्थराइटिस डेवलप होने के, कभी पहले जो कंडीशन था वो था 20 से 30-35 साल की एज में वो ज़्यादा कॉमन होते थे, लेकिन आजकल में थोड़े से ट्रेंड चेंज हुए हैं, जो 14-15 साल के बाद में ही चीज़ों को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अब देखने को मिलती है। तो नॉर्मल में एक बार बेसिक न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करा लीजिए, अगर वो सही है तब तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल उसका 3-4 महीने का कोर्स।
1: आधे घंटे बाद वो नॉर्मल ठीक हो जाता है अपने आप।
2: हाँ, तो ये जो स्टिफनेस जो चीज़ें ठीक हो जा रही हैं, ये जो आप बताया आपने जो करेक्शन वाली चीज़ें हैं आधे घंटे में, तो एक बार आप ब्लड टेस्ट या कोई चीज़ें देख करके ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं। मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एग्जामिन नहीं किया है, बट अर्थराइटिस के चांसेस, क्योंकि लक्षण ऑलमोस्ट इसी टाइप के कभी कभार शुरुआती फेज़ में होता है, जो चीज़ें इग्नोर करते हैं लोग और बाद में चीज़ें डेवलप होती हैं, तो बेटर है कि एक बार इवेल्युएट ज़रूर कराइए इस।
0: धन्यवाद शिखा जी। हाँ
2: अच्छा
0: सर, देसी इलाज के बारे में बताएं।
2: जी, जो आपने सवाल पूछा कि देसी इलाज में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या लोग करते हैं उसके बारे में बताने के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो दवाई क्या खा रहे हैं। उनसे मैं पूछूं कि आपने पहले क्या दवाई खाया, आपको तकलीफ तो 4 साल से है, आपने दवाई क्या खाया है?
0: जी
2: सर हमें पता ही नहीं सर, वो चूरन पुड़िया कुछ इस तरह से मिल जाती थी और खा लेते थे।
0: जी
2: तो आमतौर पर जब देखा गया है, तो मैं कन्फर्म तो नहीं कहूँगा, बट हाँ बहुत बार ऐसी चीज़ों में स्टेरॉयड मिक्स रहता है, हर बार नहीं बट हाँ हो सकता है, जब जब चीज़ों के नाम या कुछ नहीं पता है क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप देखिए कि क्या आपको उन दवाइयाँ खाने से एकदम आराम आ जा रहा है क्या। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़े से हैं कि शायद स्टेरॉयड मिक्स होता है। नॉर्मल कंडीशन में स्टेरॉयड बहुत ही मेडिकल सुपरविजन के तरीके से लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से खा लीजिए।
0: अच्छा, किस कंडीशन में घुटना बदलने की या ऑपरेशन की स्थिति आ जाती है?
2: देखिए, अगर घुटने की स्पेसिफिकली बात की जाए, तो मैंने आपको बताया कि दो कंडीशन में ये घुटने के जॉइंट्स खराब होते हैं, एक तो एज रिलेटेड चेंजेस और दूसरा ऑटोइम्यून कंडीशन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या इस तरह की चीज़ें। अगर एज वाली चीज़ें हैं या रूमेटॉइड, दोनों ही कंडीशन में एज को आप रिवर्स नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एज तो बढ़ रही है, बाकी चीज़ें एज के चेंजेस हो ही रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता है।
0: यदि किसी गर्भवती महिला को इस तरह की समस्या होती है तो वो किस तरह की चिकित्सा लेती है?
2: देखिए, ऐसे हमारे इस सिस्टम में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो जिनको ये कंडीशंस हैं, तो ऐसे कंडीशन में स्पेसिफिकली कुछ मेडिसिंस हैं जो मेडिसिंस हम लोग अवॉइड करते हैं आर्थराइटिस के कंडीशन में, जो प्रेग्नेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दी जाती है।
0: एक फोन आ रहा है सर, ले लेते हैं।
2: जी
0: हेलो।
3: हेलो आरोग्यम।
0: हाँ आरोग्यम में आपने फोन किया है, कौन बोल रहे हैं?
3: हम गुलाब चंद्र मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी, हम टोटली ब्लाइंड हैं।
0: हाँ हाँ बहुत बहुत स्वागत है गुलाब चंद जी। और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, तो आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछें।
2: जी नमस्कार जी, बताइए।
3: मैं जो है जब डोलता हूँ, मतलब चलता हूँ
2: जी,
3: तो मेरा फेफड़ी का जो मतलब ये है आगे वाला जो घुटना है बहुत दर्द करता है,
2: जी। और ये
3: तो
2: कब
3: उसमें
2: से
3: हमें
2: है
3: क्या
2: आपको,
3: करना चाहिए?
2: ये कब से है आपको?
3: कम से कम मान लीजिए कि 4-5 साल से है सर। ठंडी में होता है, गर्मी में भी होता है, कम होता है लेकिन ठंडी में ज्यादा होता है।
2: और आपकी एज क्या है सर?
3: 55।
2: 55। और वजन कितना होगा सर आपका लगभग?
3: लगभग 61 किलो।
2: 61 किलो, मतलब ठीक है, आपका एज और हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी वेट भी कम है, ऐसे कंडीशन में अगर आपको जो प्रॉब्लम हो रही हैं, तो ये दो ही चीज़ें हैं, या तो उम्र के बदलाव जो होने हैं वो आपकी उम्र से पहले आ रहे हैं, ये मोस्टली होता है एज रिलेटेड चेंजेस जो आपको बता रहे हैं, उम्र से पहले अगर चीज़ें हो रही हैं, ये आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर में अभी फिलहाल में हो सकता है वो मसल्स मांसपेशियों में वो ताकत नहीं है और आप अपने आप

0: को अपने काम में झोंके हुए हैं, काम में अपना किए जा रहे हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा करे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोड पड़ रहा है आपके घुटनों पे, तो वो दर्द का कारण बन जा रहा है। और हल्का हल्का दर्द है जो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, कि आपके घुटने में उम्र से पहले उम्र के बदलाव शुरू हो चुके हैं जिसकी वजह से आप दर्द हो रही हैं।
1: लैट्रिन वगैरह बैठते समय बहुत दर्द होता है, उसके समय इसके बाद कम दर्द होगा, लेकिन बैठते उसके समय जो है घुटने में बहुत दर्द होता है।
0: जी बिल्कुल, आपने जो बताया जो आपने कंडीशन, उसी कंडीशन पे मैं बताना चाहूंगा। आपके इस पर्टिकुलर कंडीशन में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और एज रिलेटेड चेंजेस के ज़्यादा चांसेस होने के होते हैं, क्योंकि आप अपना जो भी कर रहे हैं आपको एक्चुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाएंगे कि आप जो खा पी रहे हैं उसमें कितना पौष्टिक आपको शरीर को मिल पा रहा है, क्या हो पा रहा है, क्या करें ना करें। तो आप नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एक्सरसाइज उन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा, ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। आप तो बेटर तो रहेगा आप किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के एक बार इवैल्यूएशन ज़रूर करा लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सर,
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हाँ सर, हम लोग ऑपरेशन की बात कर रहे थे।
0: तो मैं बता रहा था कि अगर समय से पहले, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था समय, अगर सही समय पे चीजों को शुरू कर दिया जाए तो बहुत चांसेस हैं कि 50-70% चांस हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर चीजें वही होती हैं, नजरअंदाज, हल्की फुल्की चीजों को लोग नजरअंदाज करते हैं। एक चीज स्टेटमेंट है, एक दिन तो सभी को अपना काम छोड़ना है एज के हिसाब से। जो समझदार लोग हैं वो नुकसान होने से पहले काम को छोड़ देते हैं और बाकी लोग नुकसान होने के बाद। तो समझदार इंसान बनिए और चीजों को मॉडिफाई कीजिए सही समय रहते।
2: बातचीत के दौरान सर आपने बताया कि आंखों का गठिया हो सकता है और इंटेस्टाइन का गठिया हो सकता है, शरीर के और अंगों का गठिया हो सकता है। तो आमतौर पर जब हमें आंखों में कोई समस्या आती है तो हम लोग आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और सामान्य इलाज की तरफ ध्यान देते हैं, या पेट की समस्या होती है तो पेट के डॉक्टर के पास जाकर सामान्य इलाज करते हैं। तो कैसे ये पता चलेगा कि ये गठिया का रूप ले रहा है?
0: जी बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि एक आपने सुना होगा कि आंख में कंडीशन होती है एंटीरियर यूवीआइटिस, आमतौर पे देखा गया है कि ये एक गठिया का एक प्रारूप है जिसे हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो रीढ़ की हड्डी की गठिया का शब्द है। उसमें अधिकतर एंटीरियर यूवीआइटिस के पेशेंट दिख जाते हैं। पेशेंट्स आंख को लेकर के परेशान होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख वाले डॉक्टर के पास, आंख वाले आई स्पेशलिस्ट उनको देख करके ये बताते हैं कि ये एंटीरियर यूवीआइटिस के सिम्टम्स हैं, तो आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोरूमेटोलॉजिस्ट इनके पास जाकर के एक बार डेफिनेटली आप सलाह लीजिए। वहां पर जाते हैं, सारी आपकी प्रोसीडिंग्स इवैल्यूएशन होता है और फिर अल्टीमेटली रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है।
2: एक फोन आ रहा है। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रही है?
3: हाँ, ममता श्रीवास्तव बोल रहे हैं, आरोग्यम में लगा है।
2: जी कहाँ से बोल रही हैं?
3: जौनपुर से।
2: जौनपुर से ममता श्रीवास्तव जी, आरोग्यम में ही आपने फोन किया है और हमारे बीच में डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हैं, गठिया पर बात हो रही है। हाँ
0: जी, नमस्कार जी, बताइए।
3: गठिया से बहुत परेशान रहते हैं, गठिया है मेरे पैर में, जांच करवाए थे। हाँ। तो वो हमेशा चलने में खटखट की आवाज होती है और कट हमेशा रहती है, बिना दवा का रह ही नहीं पाते हैं।
0: जी मैं आपकी बात समझ गया। और ये आपकी अपने उम्र बारे बताएंगे क्या, आपकी एज कितनी है और वजन कितना होगा लगभग?
3: उम्र मेरी 54।
0: जी, और आपका वजन कितना होगा?
3: वजन वही 72-73 के लगभग में है सर।
0: जी ओके, तो 72 के वजन के हिसाब से आपकी एज और अगर हाइट भी आपकी 5'3" 4'।
3: हाइट मेरी 5 से ऊपर है, 5'5" है।
0: ओके जी, तो आपके हाइट और बाकी चीज़ों के हिसाब से वजन थोड़ा सा ही है, प्लस ज़्यादा प्लस नहीं है, बट इट्स ओके। और जो आप बता रही हैं गठिया और जो खटखट और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये गठिया के लक्षण हो सकते हैं, बट ये सिर्फ घुटनों में नहीं होंगे, बाकी जॉइंट्स में भी असर होता है। कभी कभार मोनो आर्टिकुलर भी चीज़ें होती हैं कि एक जॉइंट ही प्रभावित हुआ है गठिया में, तो ये आपके लक्षण दिख रहे हैं गठिया वाले। तो इसमें तो बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी जो आपने जिस तरीके से बताया, तो आपको निश्चित तौर पे गठिया के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक बार प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कीजिए, सही समय पे बीच बीच में टेस्ट कराते रहना, और सब कुछ सही है तो फिर आगे कंटिन्यू करना है। जी जी बिल्कुल, अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले रही हैं आप गठिया की, तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं कि कोई खाने को स्किप किया जाए। आप सारे खाना आराम से खा सकती हैं अपने सहूलियत के हिसाब से।
2: सर एक फोन और आ रहा है। हेलो।
4: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
4: राधे श्याम चौहान लखिया।
2: अच्छा, राधे श्याम चौहान जी, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है, और डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप बात करें।
0: जी नमस्कार जी, बताइए।
4: हाँ ऐसा है डॉक्टर साहब, कभी कभी जैसे बैठ जाते हैं उस टाइम थोड़ा दिक्कत होता है, दर्द करता है।
0: जी, और कब से है आप?

0: ये
1: 8-9 महीने से।
0: आपकी उम्र कितनी होगी अभी और आपका वजन कितना होगा?
1: वजन है 63।
0: ठीक है, वजन के हिसाब से तो ज्यादा नहीं है, बट आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ये हो सकता है आपकी एज वाली फैक्टर वाली, और सिर्फ घुटने में आपने बताया है तो ये एज फैक्टर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। एक बार प्रॉपर एक्सरे करवाइए, खड़े होकर के स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे कराइए, और उसमें ये पता चलेगा कि आपका जो कार्टिलेज है, जो कच्ची हड्डी जिसे कहते हैं, वो किस हद तक डैमेज है। अगर ज़्यादा डैमेज है तो उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है।
2: एक फोन ले लें सर।
0: जी
2: हेलो।
3: हेलो।
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ मैम, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ,
2: अभिषेक जी कहाँ से?
3: बलिया से।
2: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्यम में। बताइए, डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से बात करें।
0: जी नमस्कार जी, बताइए।
3: नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी माता जी हैं जिनकी उम्र लगभग 60 साल है,
0: जी
3: उनकी कमर में एक साइड दर्द रहता है और झंझनाहट होती है,
0: जी
3: जिसके वजह से रात में वो सो नहीं पाती हैं सही से।
0: तो पूरे पैरों में झंझनाहट होती है या सिर्फ कमर में या थोड़ी बहुत दूर
3: मतलब
0: तक?
3: कमर में भी रहती है और जो पैर है ना वो कभी कल नहीं अकड़ टाइप का आ जाता है, नहीं होता एकदम इतना झंझनाहट से।
0: जी। और ये कब से है माता जी को?
3: लगभग हमको लग रहा है कि 1-2 महीने से।
0: ओके, तो और जो आपने एज बताया, इस एज में कभी कभार पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये सारा कुछ रूमेटोलॉजी के अंदर में ही है, ऑर्थोरूमेटोलॉजी का ही पार्ट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कभी कभार विटामिन डी कैल्शियम इनकी कमी हो जाती है, तो हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें दबाव आने लगता है। दो चार पांच पतली पतली नसें मिलकर के एक मोटी नस बनाती है जिसे हम शियाटिक नर्व कहते हैं, और उसके साथ उसी लाइन पे जो दर्द होता है उसे हम शियाटिका या साइटिका शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसी में शुरुआती के टाइम पे हमें दर्द होता है, जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो झंझनाहट, सूनापन या आगे और सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ बेड रेस्ट है, और शुरुआत के टाइम पे ही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थराइटिस पर यानी गठिया पर हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, और चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: मैं एक लास्ट में जिसे हम कहते हैं टेक होम मैसेज, मतलब आप जाते जाते क्या सलाह लेकर के जाना चाहेंगे, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गठिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जो कि अगर सही समय पे चीज़ें शुरू हो जाएं तो पूरी ज़िंदगी बहुत आराम से बिताई जा सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। आजकल बहुत सारी नई नई टेक्निक्स हैं, रीजेनरेटिव ऑर्थोबायोलॉजिक्स है, मॉलिकुलर थेरेपी है, ओजोन थेरेपी है, और इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसको यूज़ करके हम लोग घुटने के रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या कोई भी सर्जरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये चीज़ तभी संभव है अगर आप सही समय पे चीज़ों को शुरू कर दें। तो यही बस सलाह है, समय का ध्यान दीजिए और समय से नुकसान होने से पहले चीज़ों को संभाल लीजिए।
2: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए और श्रोताओं से गठिया रोग पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि गठिया लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि सही समय पर इसका इलाज करवाएं, थोड़ी सी सावधानी रखें और खान पान और जीवन शैली पर ध्यान दें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसी तरह से और भी रोग के इलाज को लेकर के हम लोग जानकारी साझा करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज की बातचीत का विषय था गठिया रोग, सावधानियां और सही इलाज। इस विषय पर बातचीत कर रही थी डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय से शिखा श्रीवास्तव।

233 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब सोटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपने सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 243.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है आज की संध्याकालीन सभा।

0: सभा के आरंभ में बच्चे सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: बच्चों जय हिंद। हम है तो हम लोग के गौरी दीदी
2: और हम है आप लोगन का लाजो दीदी।
1: तो देखा बच्चा लोग, तो हम लोग से मिले बदे हम लोग फिर से आ गए नहीं हो। और कहल जाला ना कि अब कितना निक लागेला जब तोहन लोग से मिले के समय मिलेला। और तू लोग के भी इंतजार रहत हुई कि दीदी कब यहाँ जा और कुछ जानकारी के बात लेके यहाँ जा काला जो।
2: एकदम दीदी का है ना, देखा पहले तो बच्चा लोगन से मिलेगा खुशी ही अलग होगा कि देखा पहले ही से खुशी हो जाला कि बच्चा लोगन से अब मिले चले के। सब नहीं से हम इंतजार में रही कि कब समय हो और हम बच्चा लोगन से मिले चली।
1: ये लोग

0: के भी इंतजार रहते हो कि लाजो दीदी आई है, तो हमनी के बहुत निक निक के जानकारी लेके आई
1: जरूर
0: है।
1: दीदी, निक
0: और
1: निक का जानकारी तो देहल जाई। लेकिन देखा दीदी, ए समय गर्मी का मौसम चलत हा, और गर्मी के मौसम में मन तो नहीं कराला कुछ करे का, मन कराला बस पंखा में कूलर में बैठल रही, कार्टून देखत रही और कुछ ठंडा ठंडा खात पियत रही।
0: अच्छा, तो मैंने अपना ये चुन्नू मुन्नू के साथे साथे तोहरो ये मन करेला कि हम बैठल रही और कार्टून देखत रही और खाली ठंडे ठंडे में रही।
1: एकदम दीदी, काहे ना जब तक बच्चन के साथे खुला मिला ना तो मजा ना आवला।
0: देखा हो लाजो दीदी का कहे के मतलब और का कहल चाहत है। लेकिन हम ई कहा बच्चा तो हम लोग के कि स्कूल खुले के अब समय होता तो स्कूल से भी देखा होमवर्क मिलेला तो कुछ ई मिल जाला कि मोबाइल से देख के करे के हा हा।
1: एकदम
0: और घरे भी रहत हुआ तो लोग के तो लोग के कार्टून चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए और पंखा चाहिए। तो
1: एकदम
0: ये
1: दीदी,
0: हाँ, तो यही बदे हम कहल चाहते हैं कि देखा ये सब तो जरूरी है, ये सब तो देखे के चाहे, लेकिन साथ साथ में हमने की बिजली का भी बचत करे के चाहे।
1: एकदम दीदी, बिजली का बचत तो करे के चाहिए अब। लेकिन देखा, बिजली का बचत के साथे साथे जब भी बिजली का प्रयोग करे ना, उनमें सावधानी बरते का जरूरत हो, काहे से कि ई खतरनाक साबित हो सकला। तो देखा बच्चा लोगन, जब भी आप नहाए या जब भी हाथ आपका गीला रहे तो कौनो भी तरह का स्विच ऑन ना करें। कभी भी अपना हाथ समय कौनो भी चीज़ का मतलब जो लाइन या बिजली से संबंधित हो ओके न छुएं, और ना ही कौनो तरह का साकेट में हाथ डालें, पेंसिल डालें, ये सब देखा खतरनाक साबित हो सकला, आपके करंट लग सकला।
0: बहुत सही बात कहते हो। आ देखा यही बदे जागरूक करे बदे लोगन के तोहन लोग के हमनी के सरकार हवे जो तरह तरह की योजना भी चलावत रहेला जेकर नाम है अंतर्राष्ट्रीय बिजली सुरक्षा दिवस। एमे देखा लोगन के जागरूक कैल जाला
1: एकदम
0: कि
1: दीदी,
0: बिजली से कैसे बचे के है, नंगा हाथ रहे जब पैर में चप्पल ना रहे तो तू बिजली के ना छुए के चाहे, प्लग ना ऑन करे के चाहे। और देखा तू लोग तो छोट छोट हवा, फट से देखवा कि घर में कोई ना है, रुका हम टीवी चालू कर ली, लेकिन ऐसा गलती कभी भी ना करे के
1: एकदम
0: चाहे।
1: न करे के चाहिए दीदी। और देखा, जो भी लेकिन बच्चन का खिलौना भी कई ठे लाइन बिजली से चले वाला होला, तो देखा उस सब का चार्जिंग भी अपने घर में जो बड़ा लोगन हन, मम्मी हन, पापा हैं या बड़ दीदी भैया लोगन हन, उ लोगन से लगवाएं, खुद से कोशिश ना करें, इस सब से आप लोगन का स्वास्थ्य बिगड़ सकला। और एक साथे साथे जब आप बाहरे भी कहीं खेले जाते हैं तो देखा, अपन सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कहीं पे अगर तार लटकर हो या खंबा हो तो उस सब जगह बिल्कुल भी ना जाएं। आप अपन सड़क पे तार लटकर हो तो आप किनारे से चल जाएं या अपने मम्मी पापा की बता के उस चीज़ के सही करवाएं।
0: हाँ देखा हो लाजो दीदी कितना नीके का जानकारी तो हम लोग के देते ही और जानकारी से जुड़ल बात भी बताओ थे। काहे से कि तू लोग कल का भावी भविष्य हो तो तू लोग का सेहतमंद और सुरक्षित रहल बहुत जरूरी है। लेकिन देखा यही बदे तो हम लोग के एगो निक ही का हमने का वार्ता लेके आये हैं जा कि मोबाइल का लत और बच्चों का भविष्य है। एक वार्ताकार है सुषमा शर्मा, देखे तू लोग सुना।
1: बच्चा लोगन सुने,
2: प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मोबाइल की लत और बच्चों का क्या भविष्य हो सकता है। आज के टाइम में मोबाइल फोन पे बच्चे अत्यधिक प्रयोग करने लगे हैं और ये बच्चे आप लोग के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आप लोग इसे पढ़ाई, मनोरंजन, जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसका उपयोग लाभदायक हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग मोबाइल का उपयोग बहुत अत्यधिक करते हैं तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मोबाइल के ज्यादा प्रयोग से आप लोग को क्या क्या हानिकारक चीजें हो सकती हैं और दुष्प्रभाव, आइए हम लोग इसको जानते हैं। जैसे कि शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, अगर आप लोग मोबाइल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा आप लोग का, होमवर्क और अध्ययन के लिए समय कम बचेगा, जिससे कि आप लोग के शिक्षा में गिरावट होगी। एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी आप लोग की प्रभावित होती है छोटे छोटे बच्चों का मोबाइल यूज करने के कारण। मोबाइल के ज्यादा यूज से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो बच्चों, जो बच्चे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए आजकल के, तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। सोशल मीडिया की तुलना से आत्मविश्वास कम हो सकता है। जैसे कि आजकल जो बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो मोबाइल का प्रयोग ज्यादा यूज करने लगे हैं, जिससे कि उनको बहुत छोटे समय में ही चश्मे वगैरह लगने लगे हैं और चिड़चिड़ापन और बहुत सी चीजें होने लगी हैं। अकेलेपन की भावना विकसित हो सकती है। जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय, आप लोग जो भी बच्चे छोटे बच्चे हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल में व्यतीत करेंगे तो वे अकेलेपन का भी शिकार हो जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य उनके क्या प्रभाव पड़ता है? आंखों में दर्द, सिर दर्द और नींद की समस्या हो सकती है। जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का उपयोग करेंगे उन्हें सर दर्द, सिर दर्द और नींद की समस्या भी

0: हो सकती है। शारीरिक गतिविधियां कम हो सकती हैं और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। गलत मुद्रा पोस्चर के कारण पीठ में दर्द भी हो सकता है। ये है शारीरिक प्रभाव। जो बच्चे ज्यादा मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे, ये चीजें उन्हें शारीरिक तौर पर प्रभावित करेंगी। सामाजिक विकास में बाधा, इसमें हम ये फर्क पड़ेगा बच्चों पे कि जो बच्चे परिवार और मित्र के साथ समय जो देना चाहिए वो मोबाइल में व्यतीत करेंगे। सामाजिक कौशल और व्यवहारिक विकास प्रभावित हो सकता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। मोबाइल के उपयोग के लिए समय सीमा निर्धारित करें। जो भी बच्चे अगर घर में मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, हम उन्हें एक सीमित समय के लिए मोबाइल दें और फिर उस समय के बाद उन्हें मोबाइल का उपयोग ना करने दें। बच्चों को खेल कूद, पुस्तक पढ़ने और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कि बच्चों को आउटडोर गेम खेलना, बाहर भी प्लेग्राउंड में अपने गार्जियन के साथ कहीं घूमना फिरना, इस तरीके की गतिविधियों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता स्वयं भी संतुलित मोबाइल उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि कितना देर मोबाइल यूज करना चाहिए और कितना देर नहीं। पढ़ाई और मनोरंजन के लिए मोबाइल का नियंत्रण उद्देश्यपूर्ण उपयोग करवाएं। सब हुए बच्चों को भविष्य को सुरक्षित बनाने के उपाय कि मोबाइल के दुष्प्रभाव से कैसे उन्हें बचाया जाए। आइए हम निष्कर्ष की बात करते हैं। मोबाइल आज के समय में बहुत ही जरूरी है। मोबाइल कोई समस्या नहीं है, बल्कि उसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग समस्या है। यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन और संतुलित उपयोग की आदत सिखाई जाए तो मोबाइल उनके विकास में सहायक बन सकता है, अन्यथा उनकी लत उनके शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भविष्य को प्रभावित कर सकती है। बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए। बच्चों को मोबाइल का निश्चित समय तय किया जाए। पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाया जाए कि बच्चों को कितना देर मोबाइल चलाना है, कितना देर टीवी देखना है, कितना देर खेल में उन्हें समय व्यतीत करना है। इस तरीके से टाइम का संतुलन बनाने से सही तरीके से चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि मोबाइल को सही और सुरक्षित उपयोग से कैसे वो अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। अगर वो मोबाइल का सही उपयोग कर सकते हैं तो वो अपने पढ़ाई में आगे जा सकते हैं और अन्य कौशल भी सीख सकते हैं। वही मोबाइल का दुरुपयोग करने से वो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। ऑनलाइन जोखिमों और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता किया जाए। अब डिजिटल साक्षरता की बात करते हैं हम बच्चों के बीच में, तो उन्हें बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि मोबाइल का ज्यादा यूज करने से कैसे साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए बच्चों को, जिससे कि उनकी जागरूकता बढ़े और वो मोबाइल का सही तरीके से प्रयोग कर पाए। खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। बच्चों को प्रतिदिन खेल, योग, व्यायाम के लिए प्रेरित जाना चाहिए। जैसा कि आजकल के बच्चे हैं जो घर में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और खेल कूद में कम ध्यान देते हैं, तो अगर वो बाहर जाके खेल कूद में गतिविधि, योग, व्यायाम के लिए प्रेरित करते हैं तो वो स्वस्थ भी रहेंगे और उनके लिए अच्छा भी रहेगा। बाहरी गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर दिए जाएं। पारिवारिक सहभागिता बढ़ाना। परिवार के साथ समय बिताने से की आदत विकसित की जाए। भोजन और पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान मोबाइल का उपयोग ना किया जाए। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, जैसे फैमिली टाइम है, तो आजकल के बच्चे खाते समय भी रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इन गतिविधियों को कम किया जाना चाहिए। रचनात्मक गतिविधियों का प्रोत्साहन, पुस्तक पढ़ना, चित्रकला, संगीत, लेखन और अन्य रचनात्मक कार्यों में बच्ची की रुचि बढ़ाया जाए। जैसे कि बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो कैसे अपने बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं और वहां से अच्छी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, कैसे वो ड्राइंग्स वगैरह कर सकते हैं, कैसे वो संगीत लर्न कर सकते हैं, कैसे वो अपनी लेखन में रुचि बढ़ा सकते हैं और अन्य रचनात्मक कार्यों में बच्चों की रुचि बढ़ाई जानी चाहिए। विद्यालय और अभिभावकों का सहयोग, इसमें दो चीजें बताई गई हैं बच्चों के लिए। पहला ये बात किया गया है, स्कूल में मोबाइल को संतुलित उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ये अवेयर कराया जाना चाहिए उन्हें कि मोबाइल के ज्यादा प्रयोग से क्या हानिकारक चीजें हो सकती हैं और सही उपयोग से वो उसको उपयोग करके कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर उचित निगरानी रखें, तो पेरेंट्स को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने बच्चों को ऑनलाइन जो भी चीजें वो यूज कर रहे हैं उन चीजों पे उनको नजर रखना चाहिए और डिजिटल चीजों का दुरुपयोग ना कर पाए और सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़े।
1: देखा।

0: गौरी दीदी बच्चा लोगन के कितना नीक का वार्ता सुनवैलुआ कि मोबाइल का लत और बच्चन का का भविष्य हो सकला, वार्ताकार रहलिन सुषमा शर्मा। तो लेकिन देखा निके का वार्ता तो हो गल, बात बतवाई भी हो गल, तब बच्चा लोगन खातिर गीत गुनाई कुछ सुनवा दा।
1: एकदम सही कहत हो। और ई लोग भी इंतजार करत हुई है कि दीदी खाली बतियाबे करी है, जानकारी के बातें दी है कि कुछ हमने कहती लेव के आयल है। तो बच्चा लोग तू लोग ही गीत सुना।
0: सुना बच्चा लोगन।

0: देखा बच्चा लोग, जैसे हमने कहा आवे नहीं जा, वैसे ही जाए के समय भी हो जाला। तो अब हमने कहा चला चला तो नहीं जा, बच्चों
1: बच्चों
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद। अभी बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल गोपाल।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:15 हो चुके हैं। युवा साथी सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

0: तो दोस्तों, देर किस बात की, बढ़ते हैं एक ऐतिहासिक बदलाव की कहानी की ओर और शुरुआत करते हैं आज के इस युववाणी कार्यक्रम की, जिसमें आपके साथ हैं मैं स्नेह
1: और मैं जयशालिनी। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: कभी कभी जिंदगी में एक सही फैसला सालों की तस्वीर बदल देता है, और जब वही फैसला किसी देश के भविष्य से जुड़ा हो तो वह इतिहास बन जाता है।
1: बिल्कुल, भारत के इतिहास में भी एक ऐसा दौर आया जब चुनौतियां बड़ी थीं, लेकिन नेतृत्व ने उन्हें अवसर में बदलने का साहस दिखाया।
0: तो आइए दोस्तों, आज की बात में याद करते हैं हम एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक बदलाव की नींव रखने वाले नेताओं में गिना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव की।

0: साथियों, कहते हैं कुछ नेता अपने भाषणों से इतिहास बनाते हैं तो कुछ अपने फैसलों से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनके शांत स्वभाव से के पीछे दूरदर्शी सोच और बड़े बदलावों का साहस छिपा था।
1: बिल्कुल, आज 28 जून को मनाई जाती है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती। उन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख शिल्पकार माना जाता है।
0: इसने क्या तुम जानती हो कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब देश एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था।
1: हाँ, मुझे पता है, वर्ष 1991 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बेहद गंभीर थी। ऐसे कठिन समय में पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व संभाला और आर्थिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
0: इन्हीं सुधारों के तहत तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विककरण की नीतियों को आगे बढ़ाया गया। इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी।
1: यही वजह है कि आज के भारत की आर्थिक प्रगति की चर्चा हो और पीवी नरसिम्हा राव का नाम ना आए, ऐसा शायद ही हो सकता है।
0: लेकिन दोस्तों, उनका व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वे एक विद्वान, साहित्य प्रेमी और बहुभाषाविद भी थे। कहा जाता है कि उन्हें कई भारतीय और विदेशी भाषाओं का ज्ञान था।
1: इतना ही नहीं, वे लेखन में भी रुचि रखते थे। उनका मानना था कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती और ज्ञान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है।
0: दोस्तों, उनका जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और अपने शांत, संतुलित और व्यवहारिक नेतृत्व के लिए जाने गए।
1: उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियां ही सच्चे नेतृत्व की परीक्षा लेती हैं। धैर्य, दूरदृष्टि और सही निर्णय किसी भी चुनौती के अवसर को अवसर में बदल देता है।
0: और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को नमन करते हैं।
1: दोस्तों, आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: दादू आपका तारा मतलब
1: बहुत प्यारा बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
2: पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
0: हाँ बैल मुझे मार मतलब
1: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
3: हम ये कहते हैं आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
0: इसका मतलब
3: इन्हीं से पूछो।
2: समझा पापा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
9: 0542227658।
7: ओ
6: 0542227658।
7: लो अभी फोन लगाता हूँ।
6: 0542227658।
10: और दोस्तों अब पारी है आज के संडे स्पेशल सेगमेंट उभरते कलाकार की, जिसमें आज हम सुनेंगे नित्या सेठ को।
11: बेजान जिंदगी में कोई मनमीत होना चाहिए, मन का मीत ना हो तो साथ संगीत होना चाहिए।
12: बिल्कुल दिव्या, क्या बात कही तुमने। दोस्तों ये संगीत की बात हमारी दिव्या इसलिए कह रही है क्योंकि आकाशवाणी और आपकी युववाणी आपको मौका देती है आपकी कला को उभारने का। और हर रविवार हम कुछ नया लेकर आते हैं, तो इस बार रविवार को हम लेकर आ गए हैं उभरते कलाकार, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी

0: साथी कलाकार जो आप सबके बीच आज अपनी कला का प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले आइए जानते हैं इनका परिचय।
1: मेरा नाम नित्या सेठ है।
0: नित्या, आज आप हमारे स्टूडियो आई हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, तो आप आज हमारे जो श्रोता हैं उनके बीच अपनी आज क्या प्रस्तुति देने वाली हैं?
1: मैं आज भजन की प्रस्तुति दूंगी।
0: बहुत अच्छी बात है, आप भजन की प्रस्तुति देंगी। तो इससे पहले कि आपके बारे में हम बहुत सारी चीजें जानें, इससे पहले एक प्रस्तुति हो जाए हमारे दोस्तों के सामने।

0: क्या बात है नित्या, आपकी ये प्रस्तुति जो थी उस पर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, जो है कि अपनी धुन तो हर कोई गुनगुना ले, असली कलाकार वही है जो दूसरों के सुर में अपना सुर मिला ले। हमारे साथ जो संगतकार थे उनसे आपने क्या सुर में सुर मिलाया है, और आपका जो ये भजन था वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वैसे आपके इस संगीत जर्नी की बात करें तो आप इस क्षेत्र में कैसे आएं?
1: मुझे बचपन से एक गाने का इंटरेस्ट था, तो मैंने मम्मी से बताया तो मम्मी ने मुझे मेरी गुरुमा डॉक्टर सुचरिता गुप्ता मैम के यहाँ एडमिशन कराया म्यूजिक का। मैंने वहीं से अपनी क्लासेस लेने स्टार्ट की और अब मेरा सिक्स ईयर कंप्लीट भी हो चुका है वहाँ पे, तो मुझे 6 साल हो गया सीखते हुए।
0: मतलब आपको गायन के क्षेत्र में 6 साल हो गए हैं और आप 6 साल से इसमें अपना प्रैक्टिस कर रही हैं, और कहीं आपने ऐसे प्रोग्राम किया है बड़े पैमाने पे या कहीं स्टेज शो वगैरह?
1: जी, बनारस और लखनऊ वगैरह मैंने कई सारे प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। अभी पिछले साल मैंने संगीत नाटक एकेडमी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था ठुमरी दादरा में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप संगीत के अलावा भी और कुछ करती हैं?
1: मैं अभी क्लास 12th में हूँ, अभी पढ़ाई कर रही हूँ।
0: तो कौन से सब्जेक्ट से?
1: मेरा स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज है।
0: अच्छा, तो मतलब संगीत में ही आपको आगे जाना है या फिर आप किसी और क्षेत्र में भी जाना प्रेफर कर सकती हैं?
1: नहीं, संगीत तो अभी संगीत में ही फोकस है।
0: जैसा कि नित्या आपने बताया, आप अभी 12th में हैं और इतनी छोटी एज में, मतलब बच्चे अगर अपनी कला को एक रूप देते हैं तो वो आगे जाके बहुत बढ़ती हैं। तो हम जो भी हमारे श्रोता आज सुन रहे हैं उनसे कहेंगे कि आपके अंदर भी कोई ऐसी कला छुपी हुई है जिसको आप बाहर लाना चाहते हैं तो उस पर फोकस करिए, और हमारी नित्या की तरह ही देखिए कि वो कितनी आगे जा रही हैं। 6 साल से उन्होंने अपने गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन नित्या इससे पहले कि हम आपकी और भी बातें जानें, उससे पहले आप एक और प्रदर्शन अपना दिखा दीजिए। आप अब क्या गाने वाली हैं?
1: मेरा दूसरा भजन है, श्याम भजन है, कोई श्याम मनोहर लोरे।
0: तो चलिए आइए इसे सुनते हैं।

0: नित्या, आपने अभी जो प्रस्तुति दी उसको सुन करके मेरे मन में कुछ पंक्तियां आ रही हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इस सफर में सिर्फ मुझे संगीत नहीं जाना।
1: बिल्कुल, ये बात तुमने सही कही दिव्या, और मुझे ऐसा लगता है नित्या आपने इस बात को सही तरीके से लिया है, क्योंकि आपके संगीत की कला को सुनकर हम भी आश्चर्यचकित हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना अच्छा भी प्रदर्शन कर सकता है।
0: वाकई वाकई बहुत ही अच्छा आपने गाया, बहुत ही सुंदर था। और ये बताइए नित्या कि आप आगे 5-6 सालों में संगीत के क्षेत्र में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं?
2: मैं अभी और भी संगीत मतलब और सीखना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरा प्रभाकर का 6th ईयर कंप्लीट हो गया, तो मैं आगे भी और कोर्स करना चाहती हूँ और बड़े बड़े स्टेजेस पे बड़े बड़े क्लासिकल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना चाहती हूँ।
3: श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि हमारी उभरती कलाकार नित्या सेठ की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। और अब बारी है एक गीत की।

0: दोस्तों, अब वक्त हो गया है यू डायरी से आज के नए शब्दों को जानने का। आज का हमारा हिंदी शब्द है पर्यवेक्षण। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति, कार्य, प्रक्रिया या घटना को ध्यानपूर्वक देखना, उसका निरीक्षण करना या उसकी गतिविधियों पर नजर रखना। इसे वाक्य में कुछ इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान कक्ष में शिक्षकों द्वारा सख्त पर्यवेक्षण किया गया।
1: दोस्तों, हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है कोहरेंट, COHERENT। इसका अर्थ होता है सुसंगत, तार्किक, क्रमबद्ध या ऐसा जो स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ या और समझने में आसान हो। एंड इन इंग्लिश इट्स मीनिंग इज लॉजिकल, क्लियर एंड कंसिस्टेंट। एंड इन सेंटेंस वी कैन से इट एज हर प्रेजेंटेशन वॉज क्लियर एंड कोहरेंट, मेकिंग इट ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड।
0: जानकारी और जागरूकता आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है दोस्तों। देश और दुनिया में हर दिन ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा इसने। तभी तो दोस्तों हम लेकर आते हैं विश्व घटना चक्र, ताकि कोई जानकारी या खबर अगर आपसे छूट गई हो तो उसे हम बता दें।
0: दोस्तों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे सामान इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे देशों से आते हैं, और हमारे देश के कई ऐसे उत्पाद हैं जो विदेशों में बेचे जाते हैं।
1: देशों के बीच होने वाले व्यापारिक समझौते न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी प्रदान करते हैं।
0: इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। इस समझौते का

0: मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
1: इस समझौते के लागू होने के बाद वस्त्र यानी टेक्सटाइल, चमड़ा यानी लेदर, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद और जैसे कई भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।
0: यह समझौता भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौतों में से एक माना जा रहा है और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद कर सकता है।
1: इसी के साथ दोस्तों, हाल ही में उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का पहला देश बन गया है जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की सदस्यता प्राप्त की है। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी।
0: उज्बेकिस्तान के शामिल होने से बैंक का प्रभाव मध्य एशिया तक बढ़ेगा और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
1: इसने क्यों ना हमारे दोस्तों के सब्र का इम्तिहान लेना हम बंद करें और उन्हें कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर्स के नाम बताया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, तो आइए फटाफट से आपको कल का पूछा गया सवाल एक बार फिर से बता देते हैं। और हमारा कल का सवाल था कि दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है, और इसका सही जवाब है सऊदी अरब।
1: और आज के हमारे विजेताओं के नाम हैं ग्राम समरौल आजमगढ़ से रवि मौर्य, चंदा चंदौली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश, सूरज कुमार ढाक से ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, उत्तम कुमार बघेल, रुखमणि बघेल, साहिल भारती बघेल, लगन पहाड़ी पंडरिया छत्तीसगढ़ से, इसी के साथ हैं प्रवीण चौहान खरगांव मध्य प्रदेश से और खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा, सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से और नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदेव, शिवा खुशी, जानू मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदे। और इसी के साथ संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवार, छोटू और नारायण रायकवार।
0: चलिए अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी जान लेते हैं दोस्तों। और हमारा आज का सवाल है आपसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है।
1: तो दोस्तों, जल्दी से अपने आंसर लिख भेजिए हमारी इंस्टाग्राम हैंडल पर जो कि है youth वाराणसी,
0: या फिर आप अपने जवाब हमारी ईमेल आईडी youthairvns@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। दोस्तों, अब इन जानकारियों के बाद बारी है इस गीत को सुनने की।

0: तो अब इसी के साथ हम अपने श्रोताओं को रोजगार सूचना भी बता देते हैं। तो दोस्तों, इस बार की रोजगार सूचना आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSC से गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती की यानी केन सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट की। इसके आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।
1: ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 7 जुलाई 2026 से है और इसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 है।
0: कुल पदों की संख्या 1182 है और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट UPSSC.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसने तुमसे एक सवाल पूछूं? अगर दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक मिल जाए लेकिन सीखने की इच्छा ही ना हो तो क्या सफलता मिल पाएगी?
1: शायद नहीं, क्योंकि सीखने की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। शिक्षक रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। इसीलिए कहा भी जाता है कि सेल्फ स्टडी यानी स्व अध्ययन सफलता की सबसे मजबूत नींव है। यह सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना है।
1: और आज के दौर में तो सीखने के साधनों की भी कोई कमी नहीं है। किताबें हो, पुस्तकालय, ऑनलाइन कोर्स, ऑडियो बुक या फिर विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म, ज्ञान हर जगह मौजूद है। जरूरत सिर्फ जिज्ञासा और निरंतरता की है।
0: सेल्फ स्टडी हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती है और यही आदत हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है।
1: एक छोटी सी आदत जैसे रोज 20 या 30 मिनट पढ़ना समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। याद रखिए दोस्तों, रोज की गई छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती हैं।
0: तो आइए आज हम खुद से एक वादा करें, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे और अपने ज्ञान से थोड़ा सा और इजाफा जरूर करेंगे।
1: क्योंकि डिग्रियां आपको एक पहचान दे सकती हैं लेकिन सीखते रहने की आदत आपको जीवन भर आगे बढ़ने की ताकत देती है।
0: और इसी सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: मुस्कुराइए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नई जानकारी और नए उत्साह के साथ। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम प्रमोद कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम पर 135वीं कड़ी में देशवासियों से अपन विचार साझा कैले। प्रधानमंत्री कहलें कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करत भारत समुद्र से लेके आकाश ले अधिक सुरक्षित आ आत्मनिर्भर बनी रहा हो। भारत विमानन क्षेत्र में एगो बढ़हन सफलता हासिल कैले हवे।
2: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिक्र करत प्रधानमंत्री कहने कि बेरे आयोजन में 2500 से बेसी जगह पर आयोजित कई गई। वहां के पश्चिम एशिया में लड़ाई के दौरान उनके अपील पर देशवासियों का समर्थन और सहयोग बदे आभार जतावले।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि

0: में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री देशवासियों से गणेश उत्सव पे गणपति बप्पा के माटी के मूर्ति के प्राथमिकता देने की अपील की है। प्रधानमंत्री जल संरक्षण के बारे में कह लें कि बरखा के पानी के एक एक बूंद बचावे के चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस में 548 करोड़ रुपया के लागत के 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण आज शिलान्यास कर लें। यह मौका पर वहां के लाभार्थियों के मकान के चाबी, स्मार्टफोन आ युवा उद्यमी योजना के तहत चेक बटनी। कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री कहने की बढ़िया सरकार विकास के साथ ही गरीबन का कल्याण, नौजवानों के रोजगार, महिला लोगों के सम्मान और व्यापारियों का सुरक्षा दे लेने। वहां के कहने की सरकार किसानों के आमदनी बढ़ावे बदे लगातार कदम उठा रहा हो। श्री योगी कहने की डबल इंजन के भाजपा सरकार में प्रदेश के 25 करोड़ जनता का विकास शामिल हो।
2: हमारे लिए 75 जनपदों की सभी 353 तहसील और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। हमने तो कहा कि गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी।
1: सिंहवी कहले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपना के पूरा कई सरकार के लक्ष्य हो। यह मौका पर मुख्यमंत्री कई गो विभागन के प्रदर्शनियों का निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 के सपना के साकार कैले में गांवन के खास भूमिका के जिक्र कैले हुए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान कहले कि गांव के विकास में तेजी लावे बदे विकसित भारत ग्रामीण योजना में राज्यन के योगदान समेत 1,51,000 करोड़ रुपया से बेसी के प्रावधान कैल गई हो। प्रदेश के सज्जो जिला में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के शुरुआत हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सज्जो जिला में बूथन पर 5 वर्ष तक के लड़कन के पोलियो के खुराक दिहल जायी। एक बाद 29 जून से 3 जुलाई ले घरे घरे जाके लड़कन के दवाई पियावल जाई। सीतापुर में पल्स पोलियो अभियान का शुरुआत जिला महिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर कैले। देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सदर विधायक सलभ मणि त्रिपाठी लेकिन के पोलियो के दवाई पिया के अभियान का शुरुआत कैले। गोरखपुर के सथही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकन में आज सवेरे तेज बयारी के साथ बरखा से मौसम सुहाना हो गई। ऐसे दिन के तापमान में गिरावट महसूस की गई। और मौसम विभाग 1 से 2 दिन में प्रदेश के कई इलाकन में गरज चमकी के साथ बरखा के अलर्ट जारी कर लिए हो। चेतावनी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या समेत एक लगे के जिले में गरज चमकी के साथ मध्यम से तेज बरखा की संभावना हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे 6:30 पर। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रम के बारे में। अब सुनिए कल यानी 29 जून 2026 यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा उस्ताद जाकिर हुसैन का एकल तबला वादन और शास्त्रीय संगीत के अन्य कार्यक्रमों में सुबह 7:31 पर सुनेगा पंडित डी के दातार का वायलिन वादन और दिन 12:45 पर पद्मा तलवलकर का गायन आप सुनेंगे। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा

गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुगम संगीत में रात्रि 8 बजे सुनिएगा देवेंद्र दास और गौरव मिश्रा का गाया भजन, और दिन 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में रश्मि चौधरी के गाए गीत आप सुनेंगे। किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। अन्य बातों के अलावा सुनिएगा धान की फसल में लगने वाले रोग, इस विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार की बातचीत। अलावा इसके सुनिएगा सुनील कुमार यादव का गाया लोकगीत, और श्रोताओं इन्हीं का गाया लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर भी।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:15 पर। यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना के अलावा आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी। व्हाट्सएप पर आधारित भोजपुरी फिल्म गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे 2:30 पर। मैंने सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन में 1:15 पर। आपके पत्र आपके गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे से। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार का प्रसारण समय होगा सुबह 10 बजे से। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम माधुरिमा का प्रसारण समय होगा सुबह 8:45 पर।

गुड मॉर्निंग बनारस, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे से। स्वास्थ्य चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा संक्रमण जनित रोग लक्षण और इनके चिकित्सा, इस विषय पर डॉक्टर नीलेश कुमार की दी गई जानकारी। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना का प्रसारण समय होगा सुबह 6:10 पर और खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर तिल की खेती, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाजों में सुनिए दिल है तुम्हारा फिल्म का ये प्यारा संगीत। इस गीत को लिखा समीर ने और धुन तैयार किया नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे दिल है तुम्हारा फिल्म का गीत। और अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में छिछोरे फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन तैयार किया प्रीतम ने।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे छिछोरे फिल्म का गीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्। यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशल्स देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिम एशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्र गत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसम्पन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा

0: सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षम न्यगादीत यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्री मोदिना प्रोदीरितं यत् आगामि गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्य रूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्ति निर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।

0: ये उम्मीद बरकरार रहेगी। और आपके साथ साथ हमारे तमाम मॉर्निंग के जो हमारे जो श्रोता हैं, जिनमें कि नई बस्ती से श्वेता जी हैं और अमरनाथ जी हैं और शानू शर्मा जी हैं और बहुत सारे ऐसे श्रोता हमारे हैं जो कि मॉर्निंग में सिर्फ मैसेज करते हैं, वेदिका जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप शाम के वाराणसी वाइब्स में आइए और हम सबसे जुड़िए इस कार्यक्रम को। आप सब श्रोताओं का हमेशा इंतजार रहता है। आप सब ने अपने मन की बातें, अपनी दिल की बातें हमसे रखी, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और आप सुन रहे थे प्रोग्राम वाराणसी वाइब्स विद सीधी सादी मंजुषा ज्योत्सना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर से एक बार कुछ नई बातों के साथ, एक नए आरजे के साथ। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम वाराणसी वाइब्स विद सीधी साधी मंजूषा ज्योत्सना। कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द वीक लेकर हाजिर होंगे हम बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा,
3: कम खर्च में ज्यादा निर्माण।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का।

0: विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी, अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ।
2: FM 100.6 पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वाराणसी केंद्र। श्रोताओं, ये सुनते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द वीक। हमारे आज के मेहमान हैं पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर। इनसे ये खास बातचीत की है आशुतोष ने।

0: आपसे मिलिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने कालाजार जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों को आशा की नई किरण और उम्मीदों की नई रोशनी दी है और जिनकी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर जी की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। ये सम्मान सिर्फ आपका सम्मान नहीं बल्कि हर उस माँ का सम्मान है जिसका बच्चा कालाजार की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और जिसे आपके इस नए प्रयोग से आराम मिला।
1: धन्यवाद। धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब पद्मश्री सम्मान प्राप्त होने की खबर आपको मिली तो वो खबर किसने दी और उस वक्त आप क्या कर रहे थे?
1: करीब सुबह 9 बजे का समय था और 25 जनवरी में ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब का फोन आया शायद
0: जी,
1: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो 9 बजे तो हम लोग अपना काम धंधा शुरू करते हैं
0: जी,
1: तो अच्छा लगा सुन।
0: सर, पद्मश्री सम्मान जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है जिसे प्राप्त करना निश्चित रूप से गौरव का विषय है, तो जब ये सूचना आप लोग को मिली तो परिवार का माहौल कैसा
1: था? बहुत अच्छा था परिवार का माहौल और कुछ एक दो दिनों से आभास हो रहा था हम लोगों को, तो बहुत मतलब अचानक नहीं लेकिन ये लग रहा था कि ऐसी खबर आएगी, तो बहुत सब लोग बहुत खुश हुए। और मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर निशा रानी अग्रवाल।
0: अच्छा।
1: हमारे बच्चे यूएसए में हैं।
0: अच्छा।
1: दोनों दो बेटियां हैं, दोनों यूएसए में हैं। तो सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत हर्षित हुए।
0: सर, ये बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। और अब हम शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों से, कुछ उन दिनों के बारे में बताएं जब आप एक छात्र हुआ करते थे, आपके परिवार में कौन थे, उसका माहौल कैसा था?
1: देखिए, हम एक मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से आते थे। हमारा बहुत ही साधारण परिवार था और हमारे माता पिता, हमारे पिताजी का व्यापार था।
0: अच्छा।
1: लेकिन उनको बहुत शौक था कि पढ़ाएं हम अपने बच्चों को
0: जी,
1: क्योंकि उन्होंने उनको बचपन में, उनके जो भी रिश्तेदार रहे, माँ बाप तो उनके उतने उनके साथ नहीं थे। 10th क्लास उस समय शायद होता था, मैट्रिक जिसको बोलते हैं
0: जी जी जी,
1: उसका फॉर्म नहीं भरने दिया। तो मेरे ख्याल से उनको एक जुनून था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। हम लोग 9 भाई बहन थे, 7 भाई 2 बहनें। जैसा मैंने बताया कि हम लोग का आर्थिक स्थिति में बहुत साधारण सी थी
0: जी,
1: उन सातों में हम 3 डॉक्टर हैं।
0: वाह।
1: एक मैं हूं, एक मेरा भाई नासिक में है, बहुत उसकी भी बहुत अच्छी स्थिति है, और एक मेरा भाई लंदन में है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है
0: जी।
1: तो बाकी भाई भी सब अच्छा कर रहे हैं। तो पढ़ने का हमारे पिताजी को बहुत शौक था पढ़ाने का सबको
0: जी जी।
1: और आपको क्या कहें, मैं ये कहूंगा कि हमारे सर पे सवार रहते थे कि सब लोग पढ़ जाएं किसी तरह से। तो सबको उन्होंने पढ़ाया और फिर हम लोग की प्रतिभा अपने जिसके जिसने जैसी थी वो निखर के आई, तो यही बात।
0: सर, डॉक्टर की पढ़ाई कभी भी आसान नहीं थी और 9 भाई बहनों में पढ़ाना लिखाना और 3-3 डॉक्टर बनाना, ऐसी अदम्य जिजीविषा की जो स्थिति आपके माता पिता की थी, उनको प्रणाम करते हुए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बताएं, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई?
1: मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर में हुआ। अब वो छोटा नहीं रहा हालांकि लेकिन और वहीं पे मेरा जो स्कूलिंग थोड़े अच्छे स्कूल में थे, फिर एक साधारण स्कूल में आ गए 6-7 तक, फिर एक और अच्छे स्कूल में जहाँ कॉम्पिटिटिव था, जिला स्कूल जिसको हम लोग बोलते थे, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया। 9th-10th फिर हमने किसी तीसरे स्कूल से किया
0: जी।
1: तो इसी तरह से चलता रहा। मुजफ्फरपुर में मेरी स्कूलिंग हुई है सारी।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और फिर हम 1972 में हमने यहाँ बीएचयू का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया और बिहार का भी दिया था।
0: अच्छा अच्छा।
1: बिहार में भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो दोनों जगह सिलेक्शन हो गया मेरा। तो हालांकि मेरा तो मन नहीं था यहाँ पढ़ने का, मैं तो वापिस अपना, यहाँ का रिजल्ट पहले आ गया था और बिहार का रिजल्ट
0: बाद में आया।
1: हम तो अपना सामान वान लेके पहुंच गए थे घर वापस
0: जी जी।
1: लेकिन हमारे पिताजी ने कहा तुरंत जाओ तुम भाग के वापस। और मेरे ख्याल से उन्होंने बड़े दूरदर्शी रहे होंगे वो।
0: तो सर, ये डॉक्टर बनने का विचार कब आया, कैसे आया?
1: ये मुझे नहीं आया विचार
0: जी,
1: मेरे पिताजी को आया। उन्होंने, वो तो व्यापारी थे ना, तो उनका देखो ये बिना पूंजी का व्यापार है। आज हमको याद आती है उनकी बहुत ज्यादा, हमारे पिताजी का सबसे बड़ा योगदान है मैं डॉक्टर बनने में।
0: सर, डॉक्टर जब आप करना शुरू किए MBBS की पढ़ाई, तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी याद जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें?
1: याद तो बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपनी धर्मपत्नी यहां मिली।
0: अच्छा, तो थोड़ा सा वो किस्सा हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: नहीं, क्या हम लोग एक ही क्लास में थे, वो भी 72 बैच की थी।
0: अच्छा।
1: और धीरे धीरे बातचीत होकर आत्मीयता बढ़ी और फिर अल्टीमेटली हम लोग की शादी हुई
0: जी
1: 1977 में।
0: सर, कालाजार पर हम लोग आते हैं विषय पे, आपका विशेष कार्य रहा है और उसी के लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो यह कालाजार पर ही मुझे काम करना है, ये कैसे आपके मन में आया? कोई खास घटना हुई या कुछ ऐसा जिसने आपको उद्वेलित किया?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली मुजफ्फरपुर को आप कालाजार की राजधानी कह सकते हैं।
0: अच्छा, तत्कालीन।
1: हाँ, मतलब इतने ज्यादा वहां केसेस थे
0: जी,
1: और उस एरिया में, मतलब नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा भयंकर रूप से ये था। और उसके बाद फिर कुछ केसेस ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, देवरिया, बनारस, गाजीपुर, बलिया, यहां केसेस होते थे। वेस्ट बंगाल में
0: जी,
1: पश्चिमी बंगाल में केसेस होते थे काफी। झारखंड, उस समय बिहार में ही था, झारखंड में बहुत सारे केसेस होते थे। और स्थिति बड़ी दयनीय थी, मतलब कोई पॉजिटिव बात थी ही नहीं
0: जी।
1: और जब मैंने MD 1981 में मेडिसिन में किया, ये BHU से ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और फिर चूंकि, हालांकि मैं अपने दिल में कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, क्योंकि उस जमाने में बड़ा ग्लैमर था कार्डियोलॉजिस्ट का। हर फिजिशियन अपने नाम के आगे लिखना चाहता था फिजिशियन एवं कार्डियोलॉजिस्ट। तो मेरी भी इच्छा यही थी और MD में मेरी थीसिस भी वही थी। लेकिन जय संजोग की बात है कि जैसे ही मैंने MD पास किया, उसके 15 दिन के अंदर ही मुझे यहां उस समय लेक्चरर या प्रवक्ता की नौकरी मिल गई BHU में ही।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, 2 या 3 हफ्ते बाद।
0: अच्छा।
1: तो फिर हमने इनिशियली 2-3 साल कार्डियोलॉजी में कुछ कुछ काम किया, जो मुझे बार बार, जब मैं घर जाता था तो बार बार वो चीजें हमारे जहन में आती थी। क्योंकि देखिए, 1972 में कालाजार का, 1950 के आसपास, 50 के दशक में कालाजार का करीब भारत से खात्मा हो गया था। लेकिन फिर पहला जो दोबारा भी हुआ, जब मतलब समझे 60 और 72 के बीच में।
0: अच्छा अच्छा। दोबारा इसका प्रकोप हुआ।
1: दोबारा प्रकोप हुआ
0: जी।
1: तो 72 में कुछ खबरें आई, उसी साल जिस साल मेरा एडमिशन हुआ था MBBS में
0: जी।
1: तो हमने कोई केस देखा भी नहीं था MBBS में कालाजार का। जब हम यहाँ पे MD करने लगे, तब इक्का दुक्का केसेस आने लगे। लेकिन जब घर जाते थे तो वहां के लोकल अखबारों में बहुत खबरें होती थी और अधिकतर बुरी खबरें होती थी
0: जी।
1: ये मुझे हमेशा कचोटता रहता था कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई
0: जी,
1: एक दो घटनाएं मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक हमने रामनगर

0: कई सरदार जी थे, तो हमारे टीचर जिनके साथ मैं फिर एज ए लेक्चर भी काम करने के लिए जुड़ गया था, ये मैं आपको मिड 80s की बात बता रहा हूँ, मतलब 85-86 के आसपास। अब उनको चार पांच महीने से बुखार था, और फिर मैंने देखा और मुझे लगा कि फिर मैंने डॉक्टर वीपी सिंह से, मेरे जो बॉस थे उस समय, उनसे मैंने कहा कि सर मुझे ये ऐसा लगता है कालाजार हो सकता है इसको। उस समय कालाजार बहुत कम होता था
1: जी,
0: उस समय नहीं था, बिहार में ही ज्यादा था उस समय। फिर मैंने पहचान के लिए जो भी करना होता है स्प्लेनिक, उस समय स्प्लीन पिलही जिसको बोलते हैं
1: जी जी,
0: उसमें से टिश्यू निकाल के सुई द्वारा, वो खतरनाक पद्धति है, अब खत्म हो गई, अब कोई नहीं करता उसको।
1: अच्छा,
0: तो वो कालाजार निकल आया इतने जगह, इतने चार पांच महीनों से। उसके बाद एक और बताता हूं घटना कि हमारे ही दो साल सीनियर
1: जी,
0: यहीं BHU के प्रोफेसर, एक दिन मेरे पास फोन आया कि श्याम सुंदर तुम आजा मुझे देख लो। तो मैं चूंकि मेरे सीनियर थे तो मैं उनके घर गया, उनको देखा, अभी नरिया पे न्यू मेडिकल इनक्लेव में वो रहते थे
1: जी।
0: उन्होंने बताया कि मुझे 6-7 महीने से बुखार है, मैं बॉम्बे घुमाया, फिर दिल्ली में गया, तो उन्होंने कुछ और बताया, तो उनको ये विश्वास हो गया था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। तो फिर मैंने उनको देखा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है कि आपको हो सकता है कालाजार हो, तो मैं आपका स्प्लेनिक एस्पिरेशन करना चाहूंगा, वही पिलही से
1: जी, जी।
0: और उस समय डरावना ये होता था, और मैंने भी यहीं से सीखा था, मुझे मैंने पढ़ पढ़ के सीखा था, क्योंकि सिखाने वाला कोई होता है, किसी ने किया ही नहीं था, तो वो पहली बार ही मुझे करना था। मैं उस स्लाइड्स लेके और फिर अपने हमारे एक और पैथोलॉजी के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक थे, हमारे भी गुरु थे
1: जी,
0: प्रोफेसर ब्रह्मानंद दुबे, अभी भी हैं लखनऊ में हैं वो
1: जी।
0: तो उनको मैंने स्लाइड दिखाई
1: जी,
0: और कुछ बताया नहीं, तो उन्होंने उसको कहा कि हाँ ये है
1: जी।
0: तो उनको फिर ट्रीटमेंट शुरू किया मैंने, और उनको उनका एक स्पेशल रिक्वेस्ट था कि मुझे घर पे आके तुमको लगाना पड़ेगा, तुम ही इंजेक्शन लगाओगे। उस समय इंजेक्शन दिया जाता था
1: जी, जी।
0: 8-10 ml इंजेक्शन रोज, तो एक महीने तक दिया, वो ठीक हो गए। तो ये भी बहुत एक आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक मेरे लिए अवार्ड था
1: जी, जी, जी।
0: कि हमारे एक अपने कलीग जो सोच रहे थे कि अब जिंदा नहीं बचेंगे, उनको नई जिंदगी मिल गई
1: जी।
0: फिर मेरे मन में आया कि मुझे इसी पे काम करना है,
1: वहीं से आपको प्रेरणा मिली। सर कार्यक्रम में आगे चलने के पहले हम एक बार अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कालाजार आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रोता जो इसको नहीं जानते, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण है, थोड़ा उस विषय में भी जानकारी दें।
0: कालाजार एक कीट जनित रोग है, जैसे मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, वैसे कालाजार होता है।
1: अच्छा,
0: उसमें सैंड फ्लाई बोलते हैं, बालू मक्खी
1: जी,
0: बालू मक्खी वो काटती है मरीज को, उससे वो उसके कीटाणु लेती है, उसको कीटाणु को बोलते हैं लिश्मेनिया डोनोवानी, और उसको लेके और फिर स्वस्थ आदमी को वो काटती है, उसमें डाल देती है स्वस्थ आदमी को। इसी तरह से ये फैलता है, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपने लक्षण पूछा
1: जी,
0: तो बुखार आता है, काफी जाड़ा देके बुखार आता है।
1: अच्छा,
0: पिलही बढ़ जाती है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त के जितने अंग होते हैं, सफेद कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन, सब कम हो जाता है। तो ये एक बहुत ही लक्षण होता है कि इसको मतलब आप कह सकते हैं कि 90% कालाजार होगा।
1: अच्छा, मतलब इस तरह की यदि चीजें आपके शरीर में हो रही हैं, आपको लग रहा है, तो आपको इसके लिए सावधान हो जाना
0: चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अच्छी या बुरी जो भी कहिए, मेरे ख्याल से मुझे अच्छी बात नहीं बोलना चाहिए
1: जी,
0: कि ये गांव में ज्यादा होती है।
1: सर ये सैंड फ्लाई होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं।
0: सैंड फ्लाई एक तरह का, आप कहिए, एक तरह का मच्छर होता है।
1: अच्छा,
0: चौथाई जो मच्छर थे
1: जी,
0: जो बाकी जो मच्छर होते हैं फ्लेबोटोमास अर्जेंटिपस इसको बोलते हैं, एक एक चौथाई साइज का होता है, छोटा होता है।
1: अच्छा,
0: झोपड़ियों में या जहां फूस के घर होते
1: जी,
0: हैं ना
1: जी, जी, जी,
0: या कच्चे वो मिट्टी के घर होते हैं, उनमें क्रैक्स हो जाते हैं
1: जी,
0: उन क्रैक्स में जाके वो रहती है और वो काटती रहती है पेशेंट।

0: इतना और फैलाती रहती है रोग को।
1: तो सर अब हम आते हैं आपके एक शोध कार्य पर, आपने बहुत लंबा शोध किया, तो अब आपका शोध क्या हुआ, अपने शोध के बारे में?
0: नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी पहला चीज तो पहले कालाजार का निदान होने में, जैसा मैंने आपसे बताया
1: जी
0: कि बहुत मुश्किल था, पहले ही से लेना पड़ता था, खतरनाक था, जानलेवा भी हो सकता था, 4-5% लोग मर जाते थे सिर्फ जांच में ही, और जांच इसका रिजल्ट आने में भी 2-3 हफ्ते लग जाते थे, उसको कराना भी महंगा भी था उस जमाने में, 300-200-300, आप 1972 की बात सोचिए या 72 के दशक की बात सोचिए, 200-300 रुपए की बहुत कीमत थी उस समय।
1: बिल्कुल।
0: और एक वो गरीबों का रोग है ये, more than 95% से ज्यादा मरीज 2 जून की रोटी नहीं खा पाते हैं, इस रोग के रोगी जो होते हैं उनके परिवार को, तो बहुत गरीबों का ये रोग है, और मैं समझता हूं कि एक बहुत मतलब दयनीय स्थिति थी पहली बात
1: जी।
0: तो उसमें हम लोगों ने 1998 में शोध प्रकाशित किया था लैंसेट पत्रिका में, वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल पत्रिका है, उसमें हम लोगों ने दिखाया कि 10 मिनट में फिंगर प्रिक्स खून, एक बूंद खून से हम उसकी डायग्नोसिस 10 मिनट में कर लेते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये एक बड़ा आयाम बदल गया डायग्नोसिस का। जो उसका
1: 3 हफ्ता लगता था वहां 10 मिनट,
0: 10 मिनट में
1: डायग्नोसिस, बहुत बड़ा परिवर्तन। हाँ,
0: और वो जहां 400-500 रुपया लगता था
1: जी,
0: ये जब जिस आई तो अल्टीमेटली फ्री हो गई, तो उसकी उस समय भी अगर बाजार से खरीदने जाते तो 50 रुपए में 10 मिनट में डायग्नोस हो जाती थी। उसका सबसे बड़ा मतलब फायदा क्या हुआ कि जो 3 हफ्ते तक जो पेशेंट लेके उस रोग को घूम रहा था, वो फैला भी रहा था, तो उसको भी आपने कट ऑफ कर दिया 10 मिनट में डायग्नोस करके, और फिर उसको बता दिया कि तुमको ये रोग है, ये बीमारी, ये इलाज आपको।
1: मतलब सर ये फैलने वाली बीमारी है, छुआछूत की?
0: नहीं, छुआछूत की नहीं है ये।
1: अच्छा।
0: लेकिन वो मच्छर फैला, बालू मक्खी फैलाती है ना इसको, अगर आपको है रोग आप लेके घूम रहे हैं उसको
1: जी, जी।
0: 3 हफ्ते तक तो आप बालू मक्खी को तो आप अलग कर नहीं सकते, वो तो रहेगी, आप काटेगी और फिर दूसरे को काटेगी जिसको नहीं है रोग, ठीक है। तो एक ये चेंज हुआ। मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट चेंज बताऊंगा, बाकी तो वैसे मैंने 40 साल इस पे काम किया है इस बीमारी पे। तो दूसरा जो हुआ कि जो दवा थी उस समय सोडियम एंटीमोनी ग्लूकोनेट, स्टीमानेट भी बोलते थे उसको, इस दवाओं से 1 महीने देना पड़ता था इंजेक्शन, और करीब 8-10% लोग मर जाते थे सिर्फ दवा से।
1: अच्छा।
0: हाँ, दवा से, तो और 1 महीने दवा देनी होती थी, और जब 90 का दशक के आखिरी में करीब करीब सिर्फ 1/3 मरीज से ठीक होते थे, 35-36% क्योर रेट था, तो हम लोग दवा की खोज में जुट गए
1: जी।
0: बहुत जगह सफलताएं मिली, अल्टीमेटली हम लोगों को सफलता मिली 95-96 के मध्य में
1: जी।
0: जैसे मुंह से खाने वाली गोली हम लोगों ने उसको खोजा, और उसको 1 महीना देने से 94% रोगी ठीक हो जाते। तो फिर एक ये बहुत मतलब कहां आप देखें इंजेक्शन लगवाना 1 महीने गांव में, गांव का मरीज, अब क्या था कि आपको गोली लेनी है मुंह से, तो 1 महीने। तो दूसरा ये महत्वपूर्ण अध्याय मेरी जिंदगी का ये है, और उसमें सबसे ज्यादा ये हुआ कि सरकार, जो भारत सरकार, बांग्लादेश की सरकार और नेपाल की सरकार, इन तीनों देशों में काफी था, भारत में सबसे ज्यादा था।
1: अच्छा।
0: तो एक प्रोग्राम बनाया कि कालाजार का उन्मूलन किया जाए
1: जी,
0: उसको बोलते हैं कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम, KEP।
1: अच्छा।
0: तो ये 2005 में शुरू हुआ
1: जी,
0: तो उसमें वही डायग्नोसिस 10 मिनट में
1: जी,
0: और ट्रीटमेंट मुंह से खाने वाला दवाई
1: गोली।
0: हाँ, गोली
1: जी।
0: तो ये चलता रहा, इसी बीच हमारी एक इच्छा थी, और हम करीब करीब समझिए आप 90 के दशक आखिरी हिस्से से लेकर काम कर रहे थे कि हम एक डोज से हम ठीक कर दें पेशेंट को।
1: अच्छा। मतलब जो दवा हमें 1 महीने तक खानी हो रही है
0: जी,
1: वह भी आप चाहते थे कि कुछ ऐसा करें कि एक डोज में ही काम हो जाए एक खुराक में।
0: तो इसमें हम सक्सेसफुल इनिशियली नहीं हुए, फिर 2001 में फिर हमारा एक शोध प्रकाशित हुआ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, वो भी विश्व की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है मेडिसिन की
1: जी,
0: जिसमें हमने दिखाया कि एक पेशेंट को 5 मिलीग्राम डोज की एक दवा आती है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, एक इंजेक्शन से, और वही दवा, उतनी ही दवा 5 मिलीग्राम/किलो 5 दिन में दी हम लोगों ने, और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन 91% पेशेंट फिर भी ठीक हो गए, और लक्ष्य होता है कि 95% से ऊपर ही

0: कम से कम आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी के लिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: और दवा बहुत महंगी भी थी वो।
1: अच्छा।
0: उस जमाने में एक वायल 50 मिलीग्राम की 12,000 रूपये की आती थी, 50 किलो, तो आप समझ लीजिए आप
1: जी,
0: अगर 5 मिलीग्राम भी देना है, 50 किलो का मरीज है
1: जी, जी।
0: तो 60-70 हजार रूपये उसके लग जाएंगे। अच्छा। और फिर 7.5 मिलीग्राम यूज किया हम लोगों ने, 5 के बजाय एक सिंगल डोज, वो भी 4 सेंटर पे हुआ, उसमें भी सफलता नहीं मिली, 90% की सफलता मिली। फिर हमने सोचा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, एक तो इतनी महंगी दवा है, तो फिर हम और मिश्रण करके दवाओं का उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। फिर क्या हुआ, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कंपनी बनाती थी
1: जी
0: इस दवा को, एमबी सोम बोलते थे, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी, वो अमेरिका की कंपनी बनाती थी, तो WHO ने उनके साथ, उनको हमारा ही डाटा दिखा के और उनको मना लिया कि वो 8% पे वो दवा बेचेंगे भारत
1: जी,
0: में
1: जी जी।
0: तो $16 हो गई, $200 से $16 हो गई, तो एक फिर नई आशा की किरण जगी, तो हमने फिर उस पर काम चालू कर दिया।
1: अच्छा।
0: तो 2010 में हमने ये प्रकाशित किया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, अगेन वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जर्नल है मेडिसिन का
1: जी जी।
0: तो उसमें हमने दिखाया कि 10 मिलीग्राम पर किलो एक पेशेंट को एक डोज देने से 95.6% पेशेंट ठीक हो जाता। दुनिया में हम पहले आदमी थे जिसने प्रकाशित किया था, इसको बताया था कि ये सब सफलताएं थी।
1: कुल कितना लंबा समय रहा?
0: आप 1987 से जोड़ लीजिए, आज
1: 87 से,
0: हाँ,
1: करीब 40 वर्ष
0: अगले साल हो जाएंगे
1: जी। तो सर ये अकेले का काम था या टीम वर्क था?
0: नहीं देखिए, कोई काम अकेले नहीं होता है
1: जी,
0: अकेले कोई, हमारे हमेशा हमारे रेजिडेंट्स रहे, हम और हमारे जो वर्कर्स थे वो रहे, और हमने मुजफ्फरपुर में एक सेंटर खोला, मुजफ्फरपुर में
1: जी जी,
0: शुरू में 10 बेड का वो सेंटर था, हम उसमें फ्री सर्च देते थे
1: जी,
0: हमारे परिवार वालों ने और हमारे दोस्तों ने मिलकर एक संस्था बनाई, और आज भी वो चल रहा है सेंटर, आज भी हम इलाज कर रहे हैं। कालाजार तो करीब करीब खत्म हो गया, उन्मूलन हो गया है। 2023 से 24 के बीच में भारत, नेपाल और बांग्लादेश सबसे कालाजार का, वो है कि सर्टिफिकेशन वगैरह वो तो चलता रहता है, उसका भी कार्रवाई।
1: खुशी की बात है, अच्छी बात है कि कालाजार मुक्त भारत अब घोषित किया जा चुका है।
0: हाँ हाँ, हो जाएगा, मतलब घोषित तो सरकार की तरफ से हो गया है।
1: सर यहाँ पर हम अपने श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का कोई एक गीत सुनवा सकते हैं?
0: बिल्कुल सुनाइए।
1: कोई गीत आप बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: अब हमें तो कोई भी देशभक्ति का गीत बजा सकते हैं।
1: ठीक है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रहेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव डालती हैं, लेकिन हम शुरुआती दिनों में उन्हें इग्नोर करते हैं।
1: एक तो व्यायाम, हमारे भारतवर्ष में व्यायाम की बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं है, आम जनता में आप देखें तो व्यायाम अपने आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है
0: जी।
1: और कम से कम मैं तो यही राय दूंगा कि दिन में एक घंटा जरूर व्यायाम करें, और सिर्फ योगा ही ना करें, दौड़ना, साइकिल चलाना, इस तरह के भी व्यायाम करें। आप मान लीजिए 15 मिनट योगा कर रहे हैं तो 45 मिनट चलें, दौड़ें, एक बहुत बड़ी चीज है। फिर आहार विहार, आहार को अपने सुधारें, और जिससे कि आपका आहार अगर खराब होगा तो और आहार जनिक बिना एक तो आहार हो गया, और फिर यह है कि हमेशा जो है शरीर पे ध्यान रखें कि वजन ना बढ़े,
0: वजन न बढ़े, मतलब आहार विहार व्यायाम और वजन पर अगर हम नियंत्रण रखते हैं तो मोस्टली स्वस्थ रहेंगे। सर एक बहुत ट्रेंड आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत तरह के टिप्स हेल्थ को लेकर दिए जा रहे हैं, ये कितने हद तक सही हैं? ज्यादातर लोग उन टिप्स को फॉलो करके सोचते हैं कि हम सही हो जाएंगे, तो क्या ये जो प्रथा है इस विषय में क्या कहेंगे?
1: देखिए कोई भी मीडिया अगर है तो उससे आप लाभ और हानि दोनों उठा सकते हैं
0: जी।
1: मैं नहीं कहूंगा कि सारे जो चीज सोशल मीडिया पे, मेरे पूरा ज्ञान भी नहीं है सोशल मीडिया का, हर चीज सही नहीं होती है। तो आप देख लें, उसको परख लें और तब उसको अपने जीवन में लाएं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक वीडियो कहता है कि खूब पानी पीजिए, दूसरा वीडियो कहता है कि पानी मत पीजिए।
1: ये तो एग्जैक्टली विवेक का इस्तेमाल करें और खोजबीन कर लें
0: जी।
1: बाकी सब चीज सोशल मीडिया से न लें, कुछ अध्ययन भी करें।
0: सर अक्सर हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एक डॉक्टर जो होते हैं काफी व्यस्त शेड्यूल होता है, दिन भर मरीजों से घिरे होते हैं और हमेशा जो भी आता है वो टेंशन में ही आता है, ऐसे में आप लोग अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं?
1: देखिए हम लोग तो, मेरा तो जो मैं जो करता हूँ वो तो मैं मरीजों के साथ मजाक करता हूँ या थोड़ा सा लाइटर वेन में बात करता हूँ, तो उसी में मेरा आनंद आता है, मरीज देखने में बड़ा आनंद आता है। अगर आप बहुत सीरियस नहीं है तो, और बहुत सीखते हैं आप। हाँ, रोज हमेशा एक इस चीज को सोच के देखना, मरीज को इलाज करना। मैं डॉक्टरों के बारे में बता रहा हूँ
0: जी। बिल्कुल सर, क्योंकि डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो इस दृष्टि से भी आपकी जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी। और मैं तो कहता हूँ कि अपने आप को उस कुर्सी पे बैठ के देखो कि हमारे सामने वाला मरीज 5 रुपए खर्च कर सकता है या 5 लाख खर्च कर सकता है।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द वीक। पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर से ये खास बातचीत आपके लिए लेकर आए आशुतोष। गेस्ट ऑफ द वीक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। FM 100.6 पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वाराणसी केंद्र। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस शौर्य गाथा की कड़ी में हम रुख करते हैं सदा सर्वदा विजयी भारत भूमि के एक ऐसे प्रांत की तरफ जहां गुरु गोविंद सिंह की ये वाणी दुश्मनों की धमनियों में रक्त जमा देती थी। ये बुलंद आवाज दुश्मनों के प्रति हुंकार ही नहीं थी, अपितु ये भारत के वीरों की परंपरा और विरासत है। मातृभूमि के रक्षकों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की ये भूमि है पंजाब, जहां गुरु गोविंद सिंह, माता गुजरी और उनके बेटों की वीरता, देशभक्ति और उनकी कुर्बानियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। शेरे पंजाब की ये वो पावन धरा जहां महाराजा रणजीत सिंह, महारानी जिंद कौर जैसे सच्चे देशभक्त हुए, जिन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। शहीद आजम भगत सिंह के नाम की कस्में आज भी खाई जाती हैं। अमर शहीदों की इस धरती में जन्मे श्री सदगुरु राम सिंह, लाला लाजपत रॉय, भाई परमानंद, वीर उधम सिंह, सुखदेव थापर, बलवंत सिंह, बंता सिंह धामिया और भाई वतन सिंह जैसे देशभक्त, जिन्होंने वतन के खातिर अपनी जानें कुर्बान की। पंजाब की बसंती हवाओं में आज भी सुरूर इनका है। हर फूल की मुस्कुराहट इनकी कर्जदार है, जो आज आजाद वतन की फिजाओं में सांस लेती है। फौजी साथियों, आज के शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि की इसी पावन धरा पंजाब के लुधियाना शहर के शिरदिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को।

बेड़ियों में जकड़े भारत की ऐसी ही फिजाओं में बिशन सिंह की उम्र धीरे धीरे परवान चढ़ती रही। माता पिता का प्यार और परिवार का दुलार भरपूर था। स्वतंत्रता के लिए हर तरफ से उठती आवाजें गाहे बगाहे नन्हे बिशन सिंह को भी सुनाई पड़ती और देश के लिए उनकी आंखों में भी सपने पला करते थे। देखते ही देखते उम्र के साथ बिशन सिंह के ये सपने भी जवान हो चले। पढ़ने लिखने के साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी बिशन सिंह अक्सर भाग लिया करते। धीरे धीरे उनके दिल में पलता वतन का प्यार और अपनी मिट्टी से उनका जुड़ाव, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके दिल में धड़कने लगा।

झरने झूमे छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बा

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग है मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब है भारत।

0: केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
5: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
5: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 100

0: तो दो गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में, शहरों में नवाचार है, अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा जिसमें जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कार पूल करके चले, इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया ये वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी अपने आप को जुड़ा महसूस करता है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेतायुग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा जिसका लाभ यहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है।
3: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

0: अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में माँ बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को SPV वैक्सीन लगाई गई और 10 बच्चों को पल्स पोलियो खुराक भी पिलाई गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान मामले में आज पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इससे पहले कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद कल 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत CMO डॉक्टर रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। देवरिया जिले के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,68,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हापुड़, कौशाम्बी और महोबा सहित विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृशक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: BBC.com/football. World football update from the BBC.
6: कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों, उन्हें भला दुश्मन कब मार सकता है।

फौजी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: हाँ, आज तो बड़े बाबू भाई, वाह क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं,
1: देखो चौबे, औकात में रहो।
0: क्या बात है, आज आपके होंठों पर आशिकी नगमा।
1: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
0: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
1: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं।
0: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
1: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
0: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो।
0: भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
1: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाब जादे

0: मुंह से खाते खाते ही पैदा हुए थे।
1: हाँ ये बात तो है।
2: नहीं खजूरी साहब ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू।
1: अच्छा अच्छा आज तो बड़े बाबू की तरफ से है, बधाई हो बड़े बाबू बधाई हो।
0: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई?
1: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
0: हो जाए हाँ, यहाँ मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए। हाँ
2: खजूरी बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
1: चक्कर? हसीना का चक्कर? तो ये बात है। अमा भाई आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
0: ओफो
1: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
0: अरे अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है? यहाँ तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
2: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
0: अरे खजूरी तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला?
1: थोड़ा सा बड़े बाबू लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
0: देखो देखो दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए?
1: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
0: क्यों नहीं आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
2: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं, जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे।
3: सुन लो आकर मेरी बात,
2: देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
0: हाँ, हाँ, जब दर्द होगा तब देखेंगे।
1: अच्छा चोबे ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का?
2: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
1: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
0: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या?
1: नहीं तो?
0: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
1: हाँ हाँ और क्या,
0: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
1: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर?
0: अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
1: जब आप गाना गा रहे थे?
0: गा नहीं गुनगुना रहे थे।
1: हाँ हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ
0: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा था।
1: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
0: ओफो गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
1: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की?
0: ओफो
1: देखिए देखिए परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
0: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
1: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
4: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
1: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
4: आपने मुझे बुलाया साहब?
5: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
4: धन्यवाद साहब।
5: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
4: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
5: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
4: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
5: यू ही फॉर जनरल नॉलेज।
4: साहब बस ये समझ लीजिए पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 48-48 वर्ष।
5: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे।
4: जी आपकी मेहरबानी से।
5: इस उम्र में

0: आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
1: जी मैं कुछ समझा नहीं।
0: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर। माजरा क्या है जरा मुझे भी तो बताइए।
1: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूँ। आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
0: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी, बताओ भी।
1: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मन में उमंगे
0: पतंगे,
1: नहीं साहब उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
0: फिर
1: कुछ नहीं साहब।
0: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
1: साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है। मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने लगी।
0: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
1: हाँ ठीक है।
0: नहीं पैर कुर्सी के नीचे।
1: सॉरी सर, बाबू हूं ना इसी से आदत है।
0: कैरी ऑन।
1: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
0: ओहो बताइए ना
1: किसी परी के साथ उड़ रहा हूँ, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूँ।
0: क्या बातें कर रहे हो?
1: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
0: ओहो आप भी किस मौके पर कहाँ की बात ले बैठे, कहाँ गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
1: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
0: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
1: ओह सॉरी सर।
0: और वो गाना?
1: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अरे उठो भी, क्या सोते हुए लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो? 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
1: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
2: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनू किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
1: तुम तो जानती ही हो मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ।
2: हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
1: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
2: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
1: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस

0: रोल के लिए क्यों कास्ट किया है?
1: गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाली उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

0: कच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

सुमन लगाना फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से है। इसे गाया है पलक मुछाल ने, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा, संगीत अमाल मलिक का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: हमारे दिल्ली केंद्र से ये समाचार संध्या सुनेंगे, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और

0: सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राजनीति के साधन के

0: में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटना स्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले।

0: आकाशवाणी समाचार गुवाहाटी।
1: महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
3: Hum digital public infrastructure mein Bharat ke safal anubhavon ko सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
2: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermini said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
4: A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychelles

0: Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाक़ियात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में ख़वातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अख़वामी मैच में मेज़बान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, नेज जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जहां मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में UPI का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशेल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हर्मिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तईं अपने अहद का एदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की में क़्यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ

0: ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वज़ीरे आज़म मोदी को यह पुरवकार एजाज दिया। वज़ीरे आज़म को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क़यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात, नीज नीलगू मईशत, आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई, समंदरी वसाइल के पायदार बंदोबस्त और इस्माल आईलैंड तरक्की पजीर ममालिक की तरक्याती ख्वाहिशात के तई उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए दिया गया। वज़ीरे आज़म मोदी ने इस एजाज को उन तमाम ममालिक से मंसूब किया जो माहौलियाती तहफ्फुज के लिए अहदबंद हैं, नेज़ आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। बाद में दिन में वज़ीरे आज़म मोदी ने सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म ने कहा कि भारत और सेशेल्स दोनों एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तरक्की मजीद शमूलियाती हो और जहां बैनुल अक़वामी इदारे हम असर हकायक की अक्कासी करते हों। उन्होंने आलम जनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के तई अपने अहद का इरादा किया।
1: सेशेल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत का विजन महासागर के नजरिए में पिन्हा है जो इस बात को तस्लीम करता है कि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे पर मुनहसिर है।
1: वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर आज़म होने की हैसियत से सबके सामने खड़ा होना एक खुसूसी एजाज है। इससे कबल दिन में सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजने के लिए उन्होंने सेशेल्स के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी मशरिकी अफ्रीका के इस जज़ीरा नुमा मुल्क के तीन रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज़ विक्टोरिया पहुँचे हैं। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह समेत बहुत से मरकजी वज़रा ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए वज़ीरे आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने आज कहा कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के दरमियान बातचीत में बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों का अहाता किया गया। विक्टोरिया में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने सेहत, तालीम, सलाहियत साजी, डिजिटल तब्दीली, पायदार तरक्की, समाजी बुनियादी ढांचे, काबिल तजदीद तवानाई, समंदरी तहफ्फुज़ और दिफा के शोबों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत

0: कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुवतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप में अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। और मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अक्वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: भागने का मौका मिलेगा। पहली दो गेंदों में दो रन,

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।
1: आया

está la Garda Horadia. Are Garda Horadia. Beta Garda.

28 जून साल 1971, दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था,

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओं, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहाँ आपको बताते चलिए

कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग प्वाइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनुवेट्स मनु, रांझणा, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर। देखना ये होगा कि ये फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शेफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

0: FM 100.6 पर विविध भारती वाराणसी से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम छाया गीत। प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते ना।

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं, वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

0: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
1: इसका सोल्यूशन
0: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

आशा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैं नहीं।

0: पे मेहनत किया,
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार की आवाज में सुनिए घर फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म का ये गीत। और अब आइए सुने बुढ़ा मिल गया इस फिल्म का गीत। आवाज़ एक बार फिर है किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार किया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

वो कौन थी? इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा

0: 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।